0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि नित सवेरे आकर के आप योग की योग पाठशाला में 30 दिवसीय चल रहे योग शिविर में नित्य प्रतिदिन आसन, प्राणायाम और योग को करते होंगे। आइए दोस्तों, आज हम सभी मिलकर के एक नए आसन, एक नए प्राणायाम के पास चलते हैं। आज पास मैंने इसीलिए बोला क्योंकि कहते हैं ना कि कुआं हमेशा से प्यासे के पास नहीं आता है, प्यासा ही कुआं के पास जाता है। तो हमें हर बार हर एक नए प्राणायाम के पास जाना पड़ेगा क्योंकि उसी से हमारे स्वस्थ जीवन की शुरुआत होगी। तो आइए आज हम शुरू करते हैं एक नए आसन, एक नए प्राणायाम को। लेकिन उस नए प्राणायाम के साथ, जो कि एक नए शब्द की उत्पत्ति हम हर बार से करते आ रहे हैं, वह है आज प्रेरणा। यस, प्रेरणा का अर्थ से ही आप समझ गए होंगे कि प्रेरणा से हमें काफी चीजों की प्रेरणा मिलती है। शुरुआती तौर पर होता ये है कि हम जब देखते हैं कि कभी कोई लेते हैं, जब हम संकल्प लेते हैं, जब कोई हम एक दृढ़ संकल्प लेते हैं या जब हम कुछ सोचते हैं, तो हमें उससे एक प्रेरणा आती है। प्रेरणा का मतलब है कि उस काम को करने के लिए हमको जागरूक होना, हम उसके प्रति जागरूक होते हैं, हम उसके प्रति ललायत होते हैं। यह प्रेरणा हमें अंदर से आती है। यह प्रेरणा जगाने वाला कौन होता है? हमारे अंतरात्मा। मान लीजिए कि हम सवेरे उठते हैं और हम योग आसन की ओर बिल्कुल तल्लीनता से बैठ जाते हैं। ये प्रेरणा देने वाला कौन है? हमारी अंतरात्मा। हम जब सोच लेते हैं कि हमें अब उठ करके सवेरे आसन प्राणायाम करना है, तो ये प्रेरणा देने वाला भी हमारा मालिक है, हमारे भगवान है। तो प्रेरणा का मतलब होता है हम जिस कार्य को बड़ी ही तल्लीनता से करें, वह प्रेरणा रूपी ही कहलाता है। प्रेरणा वह प्रक्रिया है जो लक्ष्य उन्मुख व्यवहारों को आरंभ करती है और साथ ही साथ मार्गदर्शन करती है और उसको बनाए रखने में हमारा सहयोग करती है। उदाहरण के लिए, प्रेरणा वह है जो आपको अतिरिक्त वजन कम करने में मदद करती है या आपको काम पर पदोन्नति पाने के लिए प्रेरित करती है। तो हुआ ना, प्रेरणा से मतलब यही हुआ कि यदि हम किसी भी कार्य को प्रेरणा रूपी करते हैं, तो हम जान जाते हैं कि हमें वह किस प्रकार से प्रेरणादायी बन सकता है। प्रेरणा एक ऐसी प्रेरक शक्ति है जो हमारे काम भावनाओं को जोश भरने का काम करती है। किसी व्यक्ति की सफलता के पीछे मोटिवेशन का

का बहुत बड़ा रोल होता है। यह हमारे अंदर काम करने की लगन को पैदा करती है। यह एक बहुत पावरफुल ताकत है जो हमारी जिंदगी बदल सकती है। तो आइए प्रेरणा कैसे काम करती है हम उस पर भी कुछ वार्तालाप करेंगे। जब हम समझ लेते हैं कि मोटिवेशन कैसे काम करती है और यह कैसे उत्पन्न होती है, तब हम अपनी मंजिल तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं, पहले असली मकसद को हासिल कर सकते हैं और उन सभी व्यक्तियों को भी प्रेरित कर सकते हैं जो सफलता के लिए कड़े संघर्ष कर रहे हैं और डीमोटिवेशन हो चुके हैं। वैसे तो प्रेरणा के कई प्रकार हैं, लेकिन इस समय प्रेरणा के हम दो प्रकारों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। यानी कि मोटिवेशन के दो तरह होते हैं, एक होता है आंतरिक और एक होता है बाहरी, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल। आज हम जिस प्राणायाम के बारे में, जिस आसन के बारे में बताने जा रहे हैं, वह भी वाय रूपी आसन के रूप में है, यानी कि एक्सटर्नल एक्सरसाइज के बारे में हम आपको बताएंगे। तो प्रेरणा यानी मोटिवेशन, मोटिवेशन यानी दो प्रकार से वाय और आंतरिक। तो सबसे पहले हम आंतरिक प्रेरणा के बारे में जानेंगे, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन। एक व्यक्ति ने, जिसने गरीबी से उठकर अपनी मेहनत से करोड़ों का बिजनेस खड़ा किया, अचानक ही किसी कारणवश उसे अपने बिजनेस को बंद करना पड़ा और उसमें उसे बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा। और साथ ही साथ उस समय उसके पास एक व्यक्ति ऐसा आया जिसे वह उसे मोटिवेट करना शुरू कर देता है। डीमोटिवेशन यह हुआ कि उसके साथ वो भी उसी नुकसान की भरपाई के लिए दिन रात बातें करना, ये बोलना कि ये कैसे होगा, अब क्या करोगे, तुम्हारा परिवार, ये वो। लेकिन अगर हम उसे मोटिवेट कर रहे हैं तो ये होगा अंदर से मोटिवेट करना, यानी कि हम उसे समझाने के तौर में उसे मोटिवेशन दे रहे हैं, जैसे कोई बात नहीं, इससे बड़ा भी हो सकता था, या आप अगर आप ठीक हैं तो ऐसे कई बिजनेस आप फिर से लगा सकते हैं, आपका परिवार आपके साथ में है। तो ये हो गई आंतरिक मोटिवेशन यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन। हमारे जीवन में हमें जरूर से एक ऐसे व्यक्ति का साथ करना चाहिए जो आपको मोटिवेट करता है। साथ ही साथ इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरीके से आपको मोटिवेट कर सके। और यदि यह जीवन में हम एक योग के माध्यम से ला दें तो उसमें तो चार चांद लगते ही हैं। तो आइए आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रेरणा वाय आसन। प्रेरणा वाय आसन, वैसे तो अभी हमने आपको प्रेरणा के बारे में बताया कि किस तरीके से वाय आसन के आगे एक शब्द जुड़ा जो कि है प्रेरणा। प्रेरणा एक्सटर्नल मोटिवेशन, यानी कि हम आज बाय और आंतरिक दोनों एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। आंतरिक, जो कि हम हमेशा से देखते आए हैं, एक्सरसाइज प्राणायाम के रूप में करते आए हैं, लेकिन वाय में हम कुछ ऐसे आसनों को आज बताने जा रहे हैं जो कि आप भली भांति उसे जानते हैं, जैसे सौंदर्य आसन, चक्की चलाना, मंडूक आसन, चक्रासन, वज्रासन, वृक्षासन। ये तमाम आसन जो हैं, यह आपको वाय रूप में दिखाते हैं। और आंतरिक, जो कि हम हमेशा से करते आ रहे हैं प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, उज्जयी, उद्गीत, भ्रामरी, भस्त्रिका, ये हमारी एक्सटर्नल एक्सरसाइज कह सकते हैं या हम प्राणायाम भी कह सकते हैं। तो आज हम प्रेरणा वाय आसन करने जा रहे हैं जिसमें कमर से लेकर के पैरों तक के दर्द को किस प्रकार हम ठीक कर सकते हैं, आइए हम सभी मिलकर के साथ में करते हैं। सर्वप्रथम आप किसी साफ सुथरे स्थान पर बैठ जाएं,
योगा मैट है तो योगा मैट पर बैठे, अन्यथा आप कोई साफ सुथरी चद्दर बिछा करके उस पर बैठ सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण की बात यही है कि आपका मन, चित और ध्यान सिर्फ उस योग आसन की ओर लगा रहना चाहिए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएंगे और अपने आप को एकांत करते हुए सीधे प्रभु में ध्यान लगाते हुए 2 से 3 बार ओम का उच्चारण, लंबी गहरी सांस भरते हुए

0: इस तरीके से जब हम लंबी गहरी सांस भर के ओम का उच्चारण करते हैं, उसके बाद हाथों की हथेलियों में घर्षण करके चेहरे व अपने आंखों पे लगाते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं वाय आसन। पैरों को सीधा कर लें, बिल्कुल एल शेप में। अंग्रेजी के एक वर्णमाला से लिया गया शब्द जो कि है एल। एल के आकार में आपको बैठ जाना है। कमर बिल्कुल सीधी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी और पैर दोनों जुड़े हुए सामने होने चाहिए। दोनों हाथों को कोशिश करें कि पैर के अंगूठे तक ले जाएं। हाथों को ऊपर करते हुए अंगूठे को, दोनों अंगूठों को छूना है दोनों हाथों की हथेलियों से। इस प्रकार आपको 1 से 10 बार की गिनती को करते जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद में आपको दोनों हाथों की हथेलियों को नी कप पर रख लेना है, यानी कि घुटने के ऊपर। हथेली घुटने पर आने के बाद में पैर सीधे ही रहेंगे। घुटने पर आने के बाद में अप डाउन की स्थिति, यानी कि एक घुटना उठाएंगे और एक पैर नीचे रहेगा। हल्का सा घुटना उठाएंगे और ऐसे ही बारी बारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी तरीके से दोनों हाथ फिर जमीन पर रख देंगे और पैर अभी सीधे ही रहेंगे। पैर को हम फिर से रिलैक्स कर लेंगे, यानी कि पंजों को चला लेंगे अपने ही सामान्य स्थिति में, ताकि अगर पैर में किसी को झुंझनी आती है या दर्द होता है तो वह स्थिति ना आए। पैर के पंजों को चलाएंगे झटके से और फिर अगले आसन की ओर हम बढ़ेंगे। दोनों हाथों की हथेलियों को कमर पे रख लेंगे और एक पैर को पहले उठाना है हवा में और दूसरा पैर नीचे, फिर दूसरे को उठाना है और पहले पैर को नीचे। आप जितना उठा सकते हैं, जमीन से उठाएंगे ऊपर और फिर नीचे, फिर उठाएंगे फिर नीचे, यानी कि पहला एक पैर, दायां पैर, बायां पैर, फिर दायां पैर, फिर बायां पैर, फिर दायां पैर, फिर बायां पैर। ऐसे आपको बैठ करके हवा में उठाना है और जितना आप ऊपर उठा सकते हैं। सबके बारे में मैं आपको अंत में बताऊंगी कि यह आसन किसके लिए किस तरीके से उपयोगी है। अगला आसन करेंगे, अब हम दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, यानी कि एक पैर आपका मुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे हम दोनों पैर को मोड़ लेते हैं, घुटनों को पीछे मोड़ करके, और हम बैठ जाते हैं पैरों की एड़ियों पर, तो आपको दोनों पैर नहीं मोड़ना है, एक पैर मोड़ना है और एक पैर आपको सीधा रखना है, यानी कि एक एड़ी पर आपको बैठना है कुछ देर के लिए, यानी 30 सेकंड तक आप कर सकते हैं, कोशिश करिए। और उसके बाद फिर पहला दाएं पैर और फिर दूसरा बाएं पैर, फिर बाएं पैर को सीधा कर लेंगे, दाहिने पैर पर बैठेंगे, दाहिने पैर को सीधा कर लेंगे और फिर बाएं पैर पर बैठेंगे। यही प्रक्रिया 30 सेकंड तक चलती रहेगी। इस प्रकार यह वाय आसन कहलाते हैं। वाय आसन बहुत ही आसान तरीके से किया जा सकता है। अब दोनों पैरों के बीच में स्थान कर लेंगे, यानी कि थोड़ी सी जगह कर लेंगे, पैरों को फैला लेंगे। अब आपका दाहिना हाथ बाएं पैर के पंजे को छुएगा और बाएं हाथ दाहिने पैर के पंजे को छूते हुए एक्सरसाइज करेंगे कुछ इस तरह। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये कुछ आसन आपके वाय आसनों में से एक है। आइए अब हम आपको बता दें इसके फायदे। ये सारे वाय आसन आपको इतने ज्यादा लाभकारी होने वाले हैं, जैसे एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों में लाभ होने वाले यह आसन है। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, बाहर जाते हैं और जैसे जैसे इतने महंगे महंगे एक्सरसाइज जिम में जाते हैं और करते हैं, लेकिन हम यह घर बैठे एक घंटा यानी कि आप एक एक एक्सरसाइज 10-10 सेट का बना करके इसको करेंगे तो आपको इसका संपूर्ण लाभ मिलेगा। महत्वपूर्ण की बात यह है कि जिनको रीढ़ की हड्डी में थोड़ी दिक्कत होती है वह यह आसन थोड़ी थोड़ी देर करेंगे, बहुत देर तक नहीं करेंगे। सावधानियां हमने आपको पहले भी बता के रखी हुई है कि गर्भवती महिलाएं इस आसन को सारे आसनों को ना करें और बालिकाएं पीरियड अवस्था में हैं तो भी इस आसन को ना करें। ज्यादा वृद्धावस्था में भी यानी 70+ के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आप योग करने की स्थिति में हैं, यह आसन आपको लाभ तो देगा लेकिन अगर आपके कमर में दर्द है तो आप कहीं किसी दीवार का सहारा लेकर के टेक लगा करके बैठ जाएं, तब आप आसनों को कर सकते हैं। तो ये थे प्रेरणा वाय आसनों का कुछ रूप। हम इसी तरीके से प्रेरणा वाय रूपों को आगे भी बताएंगे यानी कि कल। कुछ ऐसे आसन, कुछ और भी आसन हैं जो कि हैं अभी वाय के रूप में, वो हम आपको कल बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अभी हम वाय आसनों के बाद में भी 10 से 15 मिनट ध्यान योग करने वाले हैं। ध्यान योग को करने के लिए आपको मन चित बिल्कुल एकाग्रता से बैठ जाना है। तो आइए दोस्तों, कल हम फिर मिलेंगे एक नए शब्द के साथ, एक नए आसन के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, करें योग, रहे निरोग। आइए दोस्तों, अब हम अपने अगले अभ्यास की ओर चलते हैं। हमारा अगला अभ्यास जो है वो है उच्चैः प्राणायाम। हमारे मुख्य प्राणायामों में से एक उच्चैः प्राणायाम। उच्चैः प्राणायाम दोस्तों जो मुख्यतः है वो गले के लिए, कंठ के लिए है और आवाज के लिए है। जिनकी आवाज में जैसे थोड़ी सी क्लिमिंग आती रहती है, थोड़ी सी जो क्रैकिंग आती रहती है आवाज में और वो लोग बोल नहीं पाते हैं ठीक से, जो तुतलाते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो तुतलाते हैं या हकलाते हैं, उनके लिए और गले के लिए जिनको गले की प्रॉब्लम होती है हमेशा, जैसे कफ जमा रहता है, सूखी खांसी आती रहती है, उनके लिए यह उच्चैः प्राणायाम जो है यह बहुत ही लाभप्रद है। और क्योंकि यह गले से संबंधित है, आवाज से संबंधित है, तो जब हम यह अभ्यास करेंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि यह अभ्यास हमारा गले और श्वास से और आवाज से ही यह निर्मित है। आइए हम अपना अभ्यास अब शुरू करते हैं। उच्चैः प्राणायाम। उच्चैः प्राणायाम अभ्यास करने से पहले हम पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएंगे दोस्तों, जैसा कि अभ्यास हमारा निरंतर चल ही रहा है। तो अगला अभ्यास जो हमारा है वह उच्चैः प्राणायाम। उच्चैः प्राणायाम, सबसे पहले रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी पद्मासन की स्थिति में, प्रथम उंगली और हमारे अंगूठे की मुद्रिका बनाकर, यह मुद्रिका जब हम बनाएंगे तो यह मुद्राएं जो होती हैं, यह जिनको एसिड प्रॉब्लम होती है उससे यह ठीक होगी। पहली प्रथम उंगली और अंगूठे के नीचे दबा करके बिल्कुल सीधे स्थिति में बैठ जाएंगे, मुख मंडल पर वही प्यारी सी मुस्कान, अपने आप को संपूर्ण रूप से अपने ईश्वर को समर्पित करते हुए, और यह विश्वास करेंगे कि हम जो भी अभ्यास कर रहे हैं उसका हमें संपूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। यदि हम यह सकारात्मक सोच से शुरू करेंगे, कोई भी प्राणायाम हो, कोई भी सूक्ष्म व्यायाम हो या कोई भी एक नित प्रतिदिन करने वाली क्रिया हो, तो हमें उसका लाभ जो है वह संपूर्ण रूप से मिलता है। तो आइए हम अभ्यास को अब शुरू करते हैं। गले को सुकोड़ते हुए एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, गले से आवाज निकलेगी, कुछ समय के लिए हुड्डी को कंठ से लगाएं,
1: गर्दन सीधी करके दाहिनी नौसिका को दाहिने हाथ के अंगूठे से बंद करके बाईं नौसिका से श्वास को बाहर निकाल देंगे। मैं फिर से आपको उज्जयी प्राणायाम किस तरह किया जाता है पहले मैं आपको बता दूं। उज्जयी प्राणायाम गले को सिकोड़ते हुए एक लंबी गहरी श्वास फेफड़ों में भरेंगे, गले से आवाज निकलेगी कुछ इस तरह। एक से चार सेकंड तक हम ऐसे ही श्वास को रोक के रखेंगे। तत्पश्चात कुछ समय के लिए पट्टी को अपने कंठ से लगाएं और फिर हम 2-3 सेकंड के लिए वहीं पर ही रुक जाएंगे। फिर गर्दन को सीधी करके दाहिनी नासिका को दाहिने हाथ के अंगूठे से बंद करके बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकाल देंगे कुछ इस तरह। यानी दोस्तों, आपने ध्यान देना है, हमको श्वास लेनी नहीं है, श्वास को केवल बाहर निकाल देना है। जो हमने श्वास गले से, जब हमने श्वास आवाज निकाली, हमने कुछ देर के लिए हुड्डी को कंठ से लगाया, तो श्वास हमारे अभी अंदर रुकी हुई है। वही सांस श्वास को दाहिने हाथ के अंगूठे से दबा करके श्वास को नासिका से बाहर निकाल देना है। फिर से यह एक बार अभ्यास करेंगे। गले को सिकोड़ते हुए श्वास को फेफड़ों तक भरेंगे, गले से स्वतः ही आवाज।

हुड्डी को कंठ से लगाएंगे, गर्दन को सीधी करके दाहिनी नासिका को दाहिने हाथ के अंगूठे से दबाकर बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालेंगे कुछ इस तरह। इस तरह हमारा यह प्राणायाम पूर्ण हुआ। उसके बाद हाथों की हथेलियों में घर्षण करेंगे, और इसके बाद यह अपने गले पे, अपनी आंखों पे और चेहरे पे लगाते हुए प्राणायाम पूर्ति करेंगे। यह अभ्यास नित प्रतिदिन करने से, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यदि यह प्राणायाम हम निरंतर करते रहेंगे तो गले से संबंधित, कंठ से संबंधित, आवाज से संबंधित, बच्चों को यदि कोई भी दिक्कत है आवाज को लेकर के, कंठ को लेकर के, गले को लेकर के, तो यह अभ्यास निरंतर करने से सारी परेशानियां दूर होती हैं। बच्चों को 2 से 3 मिनट और बड़ों को 10 से 15 मिनट तक यह अभ्यास करना है। उज्जयी प्राणायाम यानी कि मुख्य प्राणायामों में से एक है, और इसी के साथ हम आपको इसके लाभ बता दें। जिनको थायराइड है दोस्तों, आजकल थायराइड तो एक आम सी बीमारी हो गई है, सभी को कहीं ना कहीं पर किसी न किसी को एक घर में थायराइड की बीमारी हम सुनते ही रहते हैं। ट्रांसिल्स जैसे गले की प्रॉब्लम मैंने आपको बताई, खर्राटे, वह सब ठीक होते हैं। आइए सूक्ष्म व्यायाम साथ में कर लेते हैं। दाहिनी व बाईं भुजा को क्रमशः 5 बार उल्टा सीधा घुमाएं। दाहिनी व बाईं भुजा को 5 बार उल्टा सीधा घुमाना है। 1, 2, 3, 4 एवं 5। इसका विपरीत भी कर लेंगे, 5, 4।

ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

के हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816097 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945 583 53 46।

हाँ जी, सो आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। और आज दिन है इत्तेफाक से सैटरडे का, यानी कि वीकेंड का, और तारीख है 19 सितंबर। जाहिर है हर तारीख में अपनी कोई तारीखी होती है, कोई बात होती है जो उसको बाकी तारीखों से अलग बना देती है। बिल्कुल आपकी तरह, जब जो चीज़ आप में है वो कहीं और थोड़ी ना है, जाहिर सी बात है। बट फीलिंग्स कई बार सेम होती है, सिचुएशंस भी लगभग कई बार सेम ही हो जाती है, और कैफियत तो ऑफ कोर्स मिलती जुलती रहती है। फ़िलहाल इसी बातचीत के साथ सीधे हम बढ़ते हैं अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ, और उसके बाद वापस से लेकर आते हैं आपका आज का थॉट ऑफ द डे, यानी सैटरडे मॉर्निंग स्पेशल थॉट ऑफ द डे, जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, अच्छा क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये थॉट्स ही तो होते हैं जो दिन भर हमारे साथ में चलते हैं, ट्रैवल करते हैं, और कभी भी महसूस होने पर अकेला ये फौरन साथ देने आ जाते हैं। मतलब ये साथ होते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं है कि अकेले हैं या कोई ऐसी बात है। फ़िलहाल जब आपको ये लगने लगे कि आपकी जगह भी अब बदलने वाली है या आप कुछ और हो जाने वाले हैं, तो भी सब कुछ बदल जाने के साथ में कुछ ये जो थॉट्स होते हैं यही मन में साथ में रहते हैं। क्यों? क्योंकि शायद इनको ताउम्र आपके साथ रहना होता है। इनको ये मतलब ही नहीं होता है कि अभी आप कहाँ हैं और क्या है, ये तो बस आपके साथ हो लेते हैं, हर फेज़ के लिए तैयार हो जाते हैं, हर जगह के लिए तैयार हो जाते हैं। तो चलिए फ़िलहाल इस खूबसूरत से गाने को सुनते हैं एक साथ आपके मॉर्निंग वाले शो में, वापस से आते हैं और आने के बाद बताते हैं आज का गुड मॉर्निंग गोंडा का सैटरडे मॉर्निंग स्पेशल थॉट क्या है।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
3: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
2: सच में, क्या खास है वहाँ?
3: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
2: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
3: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
2: और फोटोग्राफी वगैरह?
3: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
2: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
3: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613-949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
2: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
4: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
5: सो जिस वादा के साथ ऑफ कोर्स हम गए थे कि आने के बाद आपको बताने वाले कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या है आपके सैटरडे मॉर्निंग स्पेशल का, तो चलिए वक्त आ गया है कि आपको बता दिया जाए कि आज का थॉट ऑफ द डे, आज के मॉर्निंग का आपके लिए क्या है। आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो के मॉर्निंग होस्ट आरजे अदनान की तरफ से बतौर तोहफा कर लीजिए या बतौर ऐसा साथी कह लीजिए जो आपके साथ ही चलने वाला है फिलहाल। तो क्या कुछ हम बताने वाले हैं आज के थॉट के बारे में, आइए चलते हैं सीधे थॉट तक जो आप तक आने के लिए बेसब्री से तैयार है।
6: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Ajay Khan. Ajay Khan.

हाँ जी, तो आज का थॉट ऑफ द डे क्या है? दरअसल आज का थॉट ऑफ द डे कहता है कि जब तक आपका दिल समृद्ध नहीं होता, तब तक आप अमीर नहीं होते। जी हाँ, जब तक आपका दिल जो है, आपका हृदय, वो समृद्ध नहीं होता, तब तक आप अमीर नहीं हो सकते। कहते ना, बड़े दिल वाला है। सो दरअसल ये बड़े दिल वाले ही अमीर होते हैं, और अमीरियत की अपनी अलग अलग परिभाषाएं हैं। जाहिर सी बात है कि हर पैसे वाला अमीर नहीं होता, ये तो आप कई बार खुद ही महसूस भी करते हैं और आपस में कहते भी हैं कि पैसा तो बहुत है लेकिन नीयत नहीं है, या फिर आप इस तरह की कई बातों को समझते हैं। शायद आपने कई बार महसूस भी किया होगा, लेकिन आप कई बार कहते हैं कि बड़ा रॉयल बंदा है। क्या बात है, बंदी बहुत रॉयल है। तो ये जो रॉयल शब्द आता है, ये जो चेहरे पे बताते हुए भाव प्रकट करते हैं आप, ये क्या है? ये उसके समृद्ध दिल को जब आप जान जाते हैं तो आप इस बात को कहते हैं। और यकीन मानिए सच में कि अगर हम जब दिल बड़ा करने लग जाते हैं तो हमारे लिए चीज़ें खुद ब खुद आसान हो जाती हैं। हम अपने लिए अपनी इतनी आसानियों को पैदा कर लेते हैं जिसकी शायद हमने खुद कभी तवक्को नहीं की थी, कोई उम्मीद नहीं की थी। और ये अमीर होना कौन नहीं चाहता? हाँ हाँ, पैसे से मान लीजिए या दिल से मान लीजिए, दिल से बड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि जो दिल से बड़ा हो जाता है फिर उसको अमीर होने से कोई नहीं रोक पाता। ऐसे भी अमीरों को देखा है जिनके इतने चाहने वाले, इतने दिल से मानने वाले,

में ले ले या इज्जत के मायने में ले ले, जैसे भी ले ले, क्योंकि हर तरफ हर तरह से चलने वाला थॉट है। और वैसे भी दौलत को इसलिए हम सेकंड प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि अगर हम बहुत कुछ पाना भी चाहते हैं, बहुत कुछ गेन भी करना चाहते हैं, तो किस लिए? शायद सुकून महसूस कर पाए, कुछ बेहतर महसूस कर पाए, बस इसीलिए तो ना। इतने से के लिए हम बहुत सारा दौलत और बहुत सारा ख़जाना चाहते हैं। अल्टीमेट हमारा गोल यही होता है कि हम खुश रहें, और वो दरअसल चीज़ों में नहीं होता है, वो आपके अंदर ही होता है। यानी जितनी बड़ी दुनिया आप देखते हैं बाहर और कहते हैं हर रोज़ ही कुछ नया मिला और आप तो बिल्कुल अनभिज्ञ थे, अनजान थे, उसी तरह आपके अंदर एक दुनिया है जो इस बाहरी दुनिया से कहीं ज़्यादा बड़ी है। बस कभी जितना बाहर जाने की कोशिश करते हैं उतना ही अंदर उतरने की कोशिश करेंगे तो वो दुनिया भी हमें महसूस होने लगती है और हम अमीर होते चले जाते हैं, जैसा कि आज ये थॉट ऑफ द डे कह रहा है। तो भाई अब आप सोच लीजिए कि आपको अमीर किस तरह से बनना है, और अगर बनना है तो आपको तैयार रहना होगा दिल को बड़ा करने के लिए, दिल को रिच करने के लिए, दिल को समृद्ध करने के लिए। और वो कैसे होगा? बहुत कुछ, बहुत लोग बहुत कुछ आपके साथ करके चले जाते हैं, लेकिन शायद अगर लेके बैठे रहेंगे तो सब कुछ वहीं का वहीं रहेगा। माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए, ज़िंदगी आपकी खुद ब खुद आपके ही लिए आसान हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। फ़िलहाल आपको कैसा लगता है? बिल्कुल इस फीलिंग के साथ अगर आप इस बात को समझ रहे हैं तो आप भी बता सकते हैं कि आपको ये बात सुनने के बाद, इस बात के एहसास होने के बाद आपको खुद कैसा लग रहा है। चलिए कमेंट करिए चैट बॉक्स पर और बताइए, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रहा हूँ। और साथ ही साथ आप सभी को एक बार वापस से हैप्पी मॉर्निंग।

भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। 88 40 35 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: भाई सॉन्ग्स भी सुनेंगे और ऑफ कोर्स फील भी करेंगे। मॉर्निंग वाला शो है और मॉर्निंग वाला टाइम है तो ये तो होना ही है। लेकिन उससे पहले चैट बॉक्स पर आए आपके कुछ मैसेजेस वो ज़रूर पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप हमको सुनते हैं फ्रीक्वेंसी से, रेडियो गार्डन से और साथ ही साथ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन से। और इसी एप्लीकेशन पर चैट का ऑप्शन मिलता है जिस पर जो कुछ आप लिखते हैं वो हम तक सीधे पहुंचता है। तो चलिए देखें कि आज के थॉट को सुनने के बाद आज की मॉर्निंग विशेज में आप लोगों ने क्या कुछ लिख भेजा है।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite, Ajay Khan.

सो राहुल का आया है झुंझुनू राजस्थान से, लिखते हैं गुड मॉर्निंग अदनान सर, आपको थैंक यू सो मच राहुल, आपके प्यार के लिए बहुत शुक्रिया, आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। महेंद्र देपन है फ्रॉम राजस्थान, लिखते हैं गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू महेंद्र, आपका वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। प्रीति शुक्ल जी हैं फ्रॉम बहराइच, सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है, वेलकम है। और इसके अलावा धर्मेंद्र जी हैं, धर्मेंद्र मोहन फ्रॉम आवस विकास, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में धर्मेंद्र जी। एंड हमारी प्रीति जी ने बहराइच से आज के थॉट पर अपना रिएक्शन सेंड किया है और लिखा है हकीकत बयां करता हुआ ऑसम थॉट, बट आज के दौर में अच्छी सीरत पारखी बहुत कम ही है, लेकिन मैं अपने आप को सीरत से धनी मानती हूँ, बहुत अच्छी बात है। और कहते हैं कि लोग भाई अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, हाँ बिल्कुल बनना चाहिए, अगर आपको आपके अंदर कोई चीज़ बेहतर महसूस होती है एटलीस्ट आप अपने को तो खुद आप बताते ही रहिए, है ना, क्या बुराई है उसमें। रेखा कुशवाहा जी आपको भी अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में, आपको भी गुड मॉर्निंग। धर्मेंद्र जी ने लिखा अदनान सर गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है, थैंक यू सो मच, हम आपका भी स्वागत करते हैं धर्मेंद्र जी, आई होप कि आप भी एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग गोंडा शो और साथ ही आपने भी थॉट को ज़रूर सुन लिया होगा। सो फिलहाल आइए बढ़ते हैं अपने इस म्यूज़िक को पूरा सुनने की तरफ, क्योंकि आज भी आपके लिए है आपके सिटी की अपडेट यानी गोंडा अपडेट्स में हम जाएंगे और बताएंगे कि आज भी आपके गोंडा में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।

0: तो भाई आपको लेकर आना था यहाँ गोंडा अपडेट्स तक, और फाइनली आप आ भी गए। तो चलिए आपको आज बताते हैं कि आपकी सिटी अपडेट्स में क्या क्या है और क्या कुछ आपके काम का होने वाला है।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan.

पहली जो अपडेट आ रही है वो छात्रवृत्ति की संशोधित समय सारणी को लेकर आ रही है। दशमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में टेक्निकल वजहों से भुगतान से जो वंचित रह गए थे पात्र स्टूडेंट्स को अब राहत मिलेगी। शासन ने डाटा दुरुस्त कर भुगतान का जो प्रोसेस है पूरा करने के लिए संशोधित समय सारणी जारी की है। सुजिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया है कि शिक्षण संस्थानों को 20 सितंबर तक मास्टर डेटा तैयार करना होगा और कॉलेज लेवल पर वेरिफिकेशन रिजल्ट अपलोड करने का प्रोसेस 21 सितंबर तक पूरा करना होगा। सो NIC 23 सितंबर तक पोर्टल की स्क्रूटनी करेगा और जो भी त्रुटिपूर्ण आवेदन है उसमें संस्थान लेवल से सुधार जो है वो 24 से 26 सितंबर तक पात्र डेटा अग्रसारित करने की प्रक्रिया को 24 से 28 सितंबर तक चलेगी। सो फिलहाल ये अपडेट आ रही है छात्रवृत्ति संशोधित समय सारणी जो जारी की गई है उसको लेकर के। इसके बाद अब चलते हैं अगली अपडेट की तरफ और अगली जो अपडेट आ रही है वो ट्रांसफार्मर हुकने की आ रही है। परसपुर के आटा बकमा गांव में 4 दिन बाद लगाया गया 25 केवीए का ट्रांसफार्मर जो है वो बृहस्पतिवार शाम चार्ज होते ही फूक गया और इससे करीब 550 की आबादी फिर से अंधेरे में डूब गई है। इसके बाद चलते हैं अगली अपडेट की तरफ और अगली जो अपडेट्स आ रही है वो दरअसल मॉक ड्रिल को लेकर के आ रही है। सो जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के निर्देशन में कल यानी शुक्रवार को गोंडा सदर करनैलगंज और मनकापुर तहसील में आपदा से निपटने की तैयारियों की मॉक ड्रिल कराई गई। सो गोंडा सदर में भारत पेट्रोलियम डिपो पर रासायनिक हादसे, मनकापुर के एपिंटर कॉलेज में भूकंप और करनैलगंज में अग्नि सुरक्षा को लेकर के बचाव कार्यों का अभ्यास किया गया। इसके अलावा आपको हम ले चलते हैं अगली अपडेट की तरफ और अगली जो अपडेट आ रही है वो ऑफ कोर्स लक्ष्य की कप्तानी में भारत के जीतने की आ रही है। सो गोंडा के ही होनहार खिलाड़ी लक्ष्य राय चंदानी की पहली कप्तानी में बृहस्पतिवार को इंडिया अंडर 19 क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया टीम को हरा दिया और इस सफलता से ज़िले के लोग जो हैं वो काफ़ी खुश हैं और इनके पिता ने बताया कि अंडर 19 सीरीज़ का पहला मुकाबला निरंजन शाह स्टेडियम खंडेरी राजकोट में हुआ। बारिश की वजह से ये वनडे मुकाबला सिर्फ 20-20 ओवरों का हो गया। ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इंडिया 19 की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 182 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 175 रन ही बना सकी और 7 रनों से मैच हार गई। सो लक्ष्य की कप्तानी में जीत मिलने पर फिलहाल जो है शहर के बहुत सारे लोगों ने इनको मुबारकबाद दी है। इसके अलावा आपको ले चलते हैं अगली अपडेट्स की तरफ और अगली जो अपडेट आ रही है वो आ रही है ताइक्वांडो एसोसिएशन की तरफ से। कल यानी शुक्रवार को शहर के एक विद्यालय में ट्रेनिंग सेंटर में बेल्ट प्रमोशन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें सफल 39 खिलाड़ियों को पदक और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। सो कहीं ना कहीं ये ऑफ कोर्स बढ़ाने को लेकर था कि भाई स्टूडेंट्स में जो है वो खेल का जज्बा कायम रहा है। खेल से जुड़ा आपको बता दें जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से भी प्रांतीय जो खेलकूद प्रतियोगिता चल रही है उससे भी अपडेट आ रही है। सो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चल रही प्रांतीय खेलकूद प्रतियोगिता कल भाला फेंक और एथलेटिक्स की विभिन्न स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। अंडर 19 बालक वर्ग की भाला फेंक में अखिलेंद्र ने पहला स्थान और जबकि बालिका वर्ग में अदिति वर्मा ने अपनी बाजी मारी है। सो इस प्रतियोगिता का शुभारंभ जो है देवी पाटन मंडल की आयुक्त दुर्गा शक्ति नागपाल ने दिया प्रज्वलित करके किया और इन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल चरित्र निर्माण के साथ आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। इन्होंने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इसके अलावा चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली जो अपडेट आ रही है वो ऑफकोर्स प्रशिक्षण को लेकर के आ रही है। ब्लॉक संसाधन केंद्र परसपुर में आज शिक्षकों को FLN प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा रोजगार मेला भी आचार्य नरेंद्र देव किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बभनान में रोजगार मेले का आज सुबह 10 बजे से आयोजन किया जा रहा है। संपूर्ण समाधान दिवस की बात करें तो जिले के तरबगंज तहसील में जिला स्तरीय संपूर्ण समाधान दिवस में अधिकारी जन समस्याओं की सुनवाई करेंगे और ये सुबह 10 बजे से आज ही शुरू होने वाला है। इसके अलावा आपको हम बता दें अगली अपडेट की तरफ।
सो तीन स्टूडेंट्स ने नेट में सफलता पाई है। जी हाँ, सो आपको हम बता दें कि अंग्रेज़ी विभाग के तीन स्टूडेंट्स ने यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट पास किया है और फिलहाल इसमें जो है साक्षी श्रीवास्तव ने 198, मांडवी द्विवेदी ने 200 और मोहम्मद शरीफ ने 180 नंबर्स को प्राप्त किया है। सो महाविद्यालय के प्रभारी ने बताया कि तीनों विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनका आत्मविश्वास और अध्ययन की निरंतरता ही विद्यालय के लक्ष्य तक विद्यार्थियों के पहुंचने का जो रास्ता है वो प्रशस्त करती है। सो आई होप कि भाई आपको ये अपडेट्स मिल गई है और जाहिर है पसंद भी ज़रूर आई होगी, उसमें से काफ़ी कुछ आपके भी काम का ज़रूर रहा होगा। तो चलिए फ़िलहाल अब बढ़ते हैं अगले सॉन्ग की तरफ और साथ ही साथ चूँकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन और अब आ रहा है आपके लिए आपके मॉर्निंग शो में आपका नेक्स्ट सॉन्ग जिसको आप मिल करके एंजॉय करने वाले हैं अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो में विद योर मॉर्निंग जॉक RJ अदनान ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: अब हर शाम महसूस होती है और भी खास, जब होती है गोंडा की हस्तियों से आपकी मुलाकात। हर शाम हम आपसे करवाते हैं उन हस्तियों की मुलाकात जो होते हैं अपने क्षेत्र के खास। सुनना ना भूले प्रोग्राम गोधुली हर शाम 5 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।

मेरे ख्याल से तो अब तक आप तक ये जानकारी पहुंच ही गई होगी कि भाई आखिर भारत की कौन सी ऐसी मूवी है, जी हाँ, भारत की आखिर कौन सी ऐसी मूवी है जो फिलहाल पहुंच गई है कहाँ, ऑस्कर में नॉमिनेट हुई है। तो मुझे लगता है ये काफ़ी इजीली आप बताने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके आंखों के सामने आई होगी, और मुझे ये पता है कि भाई आप भी इससे बाखबर होंगे कि आखिर कौन सी ऐसी मूवी है जिसको फ़िलहाल चूज़ किया गया है, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो चलिए फटाफट से इस सवाल का जवाब दीजिए कि आखिर ऑस्कर 2027 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी के लिए भारत की जो ऑफिशियल एंट्री हुई है वो आखिर कौन सी मूवी की हुई है। जी हाँ, ऑस्कर 2026 चूँकि चल रहा है, ऑस्कर 2027 में ऑफिशियल एंट्री बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी में हुई है, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर इस कैटेगरी में हुई है। और आखिर ये कौन सी मूवी है ये आपको हमको बताना है कमेंट करके। तो मुझे आपके रिस्पॉन्सेस का इंतज़ार, और देखते हैं कि भाई कौन बता पाएगा और किसको ये पता है कि फ़िलहाल भारत की कौन सी ऐसी मूवी है जो जा चुकी है बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी में, ऑफिशियल एंट्री हो गई है ऑस्कर 2027 में। जी हाँ,

0: सो मेरा सवाल बहुत ही सिंपल सा था, मैंने पूछा था भाई कि आखिर कौन सी ऐसी भारत की मूवी है जिसे ऑस्कर 2027 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी में ऑफिशियल एंट्री मिल गई है। तो उस मूवी का नाम बताया है हमारी आशु जी ने, लखनऊ से आई है। क्या बताती हैं और इस मूवी के बारे में हम आपको बताते हैं पूरी जानकारी।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, RJ Khan. RJ Khan.

0: तो आशु जी ने बताया है गोंधल, ऑल राइट। और महेंद्र ने भी कहा है कि सुना है इस फिल्म के बारे में लेकिन मुझे पूरी जानकारी नहीं। चलिए थोड़ी सी जानकारी और बढ़ा देते हैं आपके ज्ञान में। सो महाराष्ट्र की जो सदियों पुरानी परंपरा है ये अब जो है इंटरनेशनल मंच पर कदम रख रही है। सो गोंधल ऑफ कोर्स यही सेलेक्ट हुई है जो महाराष्ट्र के पारंपरिक गोंधल अनुष्ठान और लोक कला पर बेस्ड एक मराठी थ्रिलर फिल्म है। सो ऑस्कर 2027 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में से चुना गया है। और ग्रामीण महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि पर बनी ये फिल्म सुमन नाम की एक महिला की कहानी है जो एक नाखुश शादी में फंसी हुई है। जैसे ही वो इससे बाहर निकलने का रास्ता तलाशती है, प्यार, चाहत, धोखे और फरेब की वजह से उसकी ये कहानी एक रोमांचक थ्रिलर में बदल जाती है। सो गोंधल की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें सदियों पुरानी लोक परंपरा सिर्फ एक पृष्ठभूमि नहीं बल्कि इसका संगीत, इसकी रस्में और पौराणिक कथाएं खुद कहानी का अहम हिस्सा बन जाती है। सो संतोष दवाखर के ज़रिए लिखित और निर्देशित फिल्म में इस किशोर कदम, इशिता देशमुख, योगेश सोहोनी और निषाद भोयर मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे और इसका संगीत दिग्गज संगीतकार इलैया राजा ने किया है। ऑफकोर्स संतोष दवाखर को इस फिल्म के लिए IFFI 2025 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार भी मिल चुका है। सो फिलहाल हम सभी लोगों की तरफ से गोंधल मूवी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई कि ऑस्कर 2027 में ऑफिशियल एंट्री मिल चुकी है गोंधल मूवी को। एंड आई होप कि ये सेलेक्ट भी हो और ये इंटरनेशनल मंच तक पहुँचे और लोग इसके बारे में भी जानें, क्योंकि ऐसी कई सारी मूवीज़ होती हैं ऑस्कर में जो कि किसी न किसी थीम पर बेस्ड होती हैं, कहीं ना कहीं हकीकत को बयां कर रही होती हैं। उनमें से एक है गोंधल, जिसको इस तरह से क्रिएट किया गया है जो कि बताया कि महाराष्ट्र की पुरानी लोक कथाओं से ले करके एक ऐसी महिला की कहानी है जो कि एक नाखुश शादी में फंसी हुई है। हालांकि उसकी ज़िंदगी में जो थ्रिलर आता है वो इस मूवी का रोमांचक हिस्सा बन जाता है। फिलहाल गोंधल आप देख सकते हैं क्योंकि ये 2025 में रिलीज़ हुई थी और फिलहाल 26 चल रहा है, 27 के लिए नॉमिनेट हो चुकी है ऑस्कर के लिए। और हम सब की पूरी पूरी दुआएं हैं, ये अल्तजा है कि भाई ये जो हमारी मूवी है गोंधल ये ज़रूर ऑस्कर में नॉमिनेट हो और नॉमिनेट होने के बाद ये ऑस्कर अवार्ड भी जीत करके आए। सो चलिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा होता है तो हम बहुत खुश होने वाले हैं और गोंधल जैसी मूवी को तो ज़रूर से देखने वाले हैं। फिलहाल आपका क्या ख्याल है गोंधल के बारे में आप भी कमेंट करके हमको बता सकते हैं।
1: स्वादी ओके।
0: और जब ये बताएंगे तो शायद हम लोग ज़्यादा इंस्पायर होंगे देखे जाने के लिए।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

सो महेंद्र लिखते हैं राजस्थान से, अदनान सर जी, मेरी राय में किसी भी भारतीय फिल्म का ऑस्कर की दौड़ तक पहुंचना हमारे लिए गर्व की बात है। गोंधल को लेकर उत्सुकता ज़रूर है क्योंकि भारत से चुना जाना बताता है कि फिल्म में कुछ ख़ास बात ज़रूर रही होगी। अब उम्मीद है कि यह फिल्म अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी अलग पहचान बनाए। यस ऑफकोर्स, हम सभी की दुआएं हैं कि ये ज़रूर अपनी पहचान बनाए और ऑस्कर अवार्ड लेकर के लौटे 2027 से, जो कि बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटेगरी की ये मूवी इंडिया से ऑफिशियल एंट्री हो चुकी है। सो ये आगे तक जाए और ज़रूर अपने उस ऑस्कर में कामयाब हो जिसका इंतज़ार हम सबको बेसब्री से है। फिलहाल वापस से आने के बाद आपको बताने वाले हैं किस तरह से आप भी अपना स्मार्ट खाना चुन सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM में। मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
3: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
4: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
5: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को

खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: सुहाने की बात हमने कहा था कि भाई आप भी स्मार्ट खाने को जान सकते हैं कि व्हाट इज़ स्मार्ट खाना, ये स्मार्ट खाना है कि आखिर और इसको कैसे चूज़ कर सकते हैं। चलिए आज आपको मॉर्निंग वाले शो में आपके अदनान बताते हैं कि आप भी कैसे घर में अपना स्मार्ट खाना चूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट तो हम बहुत बनते हैं, लेकिन दरअसल हम स्मार्ट बनने से हो जाते हैं या स्मार्ट खाने से भी स्मार्ट होते हैं, ये बात आज आपको समझ में आने वाली है कि किस तरह से स्मार्ट खाने को आप चूज़ करने वाले हैं, वो भी घर पर ही।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan.

सो ये जो हम स्मार्ट खाना चुनने वाले हैं, दरअसल इससे नुकसान नहीं होगा, यानी सही चॉइस क्या है ये आज आप जान लेंगे। तो अगर हेल्दी की बात करें और जंक फूड की बात करें, तो आपको बताया कि भाई हेल्दी आपकी हेल्थ के लिए कैसा है और जंक फूड आपके लिए कैसा है। अक्सर हम हो या छोटे बच्चे हों, पसंद काफ़ी आता है चिप्स खाना, बाहर के पैकेट वाले चिप्स होते हैं, जाते हैं हम ख़रीदते हैं और चले आते हैं, ख़ुद भी खाते हैं, घर के बच्चों के खिलाते हैं या बच्चों को पैसा देते हैं और कहते हैं हाँ जाओ जाके चिप्स ले लो। इवन किसी छोटे बच्चे से मिलने भी जाते हैं तो हम चिप्स के पैकेट्स ले जाते हैं, इवन मैं खुद ही भी यही करता हूँ। लेकिन जब बात आती है हेल्दी फूड की, तो अगर आपका चिप्स खाने का मन है पैकेट्स वाला, तो उससे बेहतर होगा भुना मखाना और चना। जी हाँ, इसको एक साथ मिला लेंगे, ये चिप्स का आपका ज़बरदस्त बेहतरीन हेल्दी अल्टरनेट बन जाएगा। यानी जहाँ पे आपको पैकेजिंग वाले चिप्स चाहिए, वहाँ पे भुने मखाने और चने आपके लिए ज़बरदस्त होगा। अब अगर हम डाइजेशन की बात करें, तो 5 से 6 घंटा लगता है जंक फूड वाले पैकेट्स के जो चिप्स हैं वो खा के डाइजेस्ट होने में, यानी हज़म होने में 5 से 6 घंटा, जबकि जो हमने हेल्दी ऑप्शन बताया है भुने मखाने और चने, इसको 1 से 2 ही घंटा लगता है डाइजेस्ट होने में। इसके बाद दूसरा आता है इंस्टेंट नूडल्स। अक्सर देखा होगा कि भाई नूडल्स बनाओ, नूडल्स का बड़ा मन है, बड़ी क्रेविंग हो रही है। सो नूडल्स का एक हेल्दी ऑल्टरनेट होता है मुरमुरा भेल। जी हाँ, आपने खाया भी होगा, इवन कई जगह आपको ठेले पे भी मिला होगा, और कई बार तो आप घर में भी दालमोठ शालमोठ डाल के बना देते होंगे। सो ये मुरमुरा भेल जो है, ये आपके लिए काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है। डाइजेशन की बात करें, तो नूडल्स को जहाँ 4 से 5 घंटे लगते हैं डाइजेस्ट होने में, वहीं हेल्दी मुरमुरा भेल को लगता है 102 घंटा डाइजेस्ट होने में। इसके बाद आती है भाई कोल्ड ड्रिंक की बात, यानी कार्बोनेटेड सोडा। सो जंक फूड में आता है ये जो कार्बोनेटेड सोडा होता है, इसका जो अल्टरनेट होता है वो छाछ या फिर नारियल पानी। अब चाहे छाछ पी लीजिए और चाहे नारियल पानी ले लें, अगर आपको कोल्ड ड्रिंक का मन है। फ़र्क क्या होता है कि ये 3 से 4 घंटे में डाइजेस्ट होती है कोल्ड ड्रिंक, जबकि छाछ या नारियल पानी 30 से 45 मिनट्स में ही डाइजेस्ट हो जाता है और आपके लिए बहुत हेल्दी ऑप्शन होता है। इसके अलावा बात आती है मिल्क चॉकलेट की या ब्राउनी की। अक्सर लोग खाते हैं मीठे में और कहते हैं कि चॉकलेट पसंद है या ब्राउनी पसंद है, उसका हेल्दी ऑप्शन होता है गुड़ मूंगफला तिल की चिक्की। जी हाँ, गुड़ मूंगफली या फिर तिल की चिक्की। सो अगर हम जंक फूड में मिल्क चॉकलेट ब्राउनी की बात करें, तो 4 से 5 घंटा डाइजेस्ट होने में लगता है, जबकि गुड़ मूंगफली और तिल चिक्की में 1.5 से 2 घंटे ही लगते हैं डाइजेस्ट होने में। सो भाई खाना भी वही चुना जाए जो स्वाद भी दे और सेहत भी। क्या ख्याल है आपका? आज आपको पता चल गया कि भाई आपका स्मार्ट खाना क्या है। जाहिर है, तो आप भी कोशिश करिए अपने स्मार्ट खाने की तरफ बढ़िए, और हम तो हैं ही हैं आपको याद दिलाते रहने के लिए।

ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

वैसे अभी हमने स्मार्ट फूड चुनने की बात बताई थी आपको, लेकिन अभी अगर मैं बताऊं कि भाई प्रतापगढ़ का आंवला सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि इंटरनेशनल मंच तक पहुंचने वाला है अपने गुणों के साथ, तो आप क्या आप यकीन करेंगे? डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि फ़िलहाल प्रतापगढ़ का आंवला जो है वो अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान बनाने वाला है। कैसे, ये तो आपको बताना है कि आखिर कैसे। चलिए आते हैं, बताते हैं कि किस तरह से प्रतापगढ़ का जो आंवला है वो अपने अलग अलग रूपों के साथ देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने के लिए अब तैयारी कर चुका है।

0: सो भाई चलिए चलते हैं प्रतापगढ़ के मुरब्बे की तरफ और देखते हैं कि ये मुरब्बा आखिर अपने संग हमको कहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहुँचा रहा और आखिर किन किन रूपों में पहुँचा रहा है ना। वैसे तो आंवले के बड़े ही फ़ायदों के बारे में आपने खुद ही सुना होगा, लेकिन फ़िलहाल कुछ पॉइंट्स और कुछ बिंदु अगर हम बताएंगे तो शायद आप ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे कि आखिर इसकी इतनी डिमांड क्यों हो रही है।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Ajay Khan.

सो प्रतापगढ़ का जो आंवला है अब ये देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अपनी पहचान बनाने जा रहा है। सो 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में होने वाले उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में आंवले से बने जो कैंडी हैं, मुरब्बा है, अचार है, चटनी है, दूसरे प्रोडक्ट्स का स्टॉल लगाया जाएगा। वैसे आपको हम अगर इसके कुछ फैक्ट्स बताएं प्रतापगढ़ के बारे में, तो प्रतापगढ़ में तकरीबन 7083 हेक्टेयर में आंवले के बाग हैं और ज़िले में हर साल 74,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा आंवले का उत्पादन भी होता है। आंवले से करीब 204 तरह के प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। सो शहद में डूबे आंवले को मुरब्बे की खास डिमांड बताई जाती है, ख़ास करके दक्षिण भारत से ये इसके काफ़ी सारे ऑर्डर्स जो हैं वो शहद में डूबे आंवले को लेकर के आते हैं। सो ट्रेड शो में देश विदेश से आने वाले मेहमान जो है प्रतापगढ़ के इस पारंपरिक उत्पादों का टेस्ट भी अब ले सकेंगे, क्योंकि हम सभी को पता है कि भाई आंवला जो है ये विटामिन सी का बहुत बड़ा सोर्स होता है। इसके अलावा बाकी भी न्यूट्रिशन वैल्यू इसका बहुत अच्छा माना जाता है और अगर बैलेंस्ड डाइट का ये हिस्सा हो तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाता है। सो कुछ स्टडीज़ में आंवले में और ब्लड शुगर के बीच जो इसका फ़ायदा है इसकी बात भी सामने आई है, लेकिन इसे डायबिटीज़ की दवा या इलाज का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। यानी उसमें फ़ायदा ज़रूर करता है लेकिन ये कोई विकल्प की तरह नहीं है कि भाई हम इसको डायबिटीज़ की दवा और इसके ट्रीटमेंट की तरह, इलाज की तरह इसको देख सकते हैं। एंड यस ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच इस बात को सुनने के लिए, क्योंकि ये आंवला अब इंटरनेशनल पहचान बनाने वाला है। एंड यस पहचान तो ऑफ कोर्स बन ही गई है, अब इसको पहुँचाना है कहाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। नहीं नहीं आपको नहीं, ये तो खुद ब खुद पहुंच रहा है, बस आपको पहुंचना है प्रतापगढ़ तक या इन उत्पादों तक, ताकि आप भी इसका टेस्ट ले सकें।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: जब आप बच्चों के आसपास धूम्रपान करते हैं तो उन्हें हजारों ऐसे केमिकल से प्रभावित करते हैं जिनसे उनके जीवन को खतरा है। बीड़ी सिगरेट के धुएं में साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई जहरीले तत्व होते हैं जो स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं को जन्म देते हैं, जैसे कानों में दर्दनाक संक्रमण, गंभीर अस्थमा और जानलेवा निमोनिया। बच्चों का जन्म के समय कम वजन बीड़ी सिगरेट के धुएं की वजह से भी होता है और ये अचानक होने वाली शिशु मृत्यु के जोखिम को दुगना कर देता है। इसीलिए आज ही बीड़ी सिगरेट पीना छोड़ें।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।

0: बच्चों की कविताओं को तो आपने बहुत ही याद रखा होगा, बचपन की कई कविताएं आज भी याद आती हैं, और जब कभी ऐसी कोई बाल कविता के आसपास से होकर गुजरते हैं तो न जाने क्यों अपना बचपन याद आ जाता है। फिलहाल आइए कुछ कविताएं जो कि सर्वेश्वर दयाल जी की है, बाल कविताएं, उसको ज़रा हम आप तक पहुंचाते हैं और आप भी ज़रा अपने बचपन को याद तो कर लीजिए।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Ajay Khan.

सच कहूं तो इन कविताओं में एक कशिश होती है, एक जादू होता है जो कि बरबस अपनी तरफ खींचता चला जाता है। अब जैसे सर्वेश्वर दयाल की यही कविता अगर हम आप तक पहुंचाएं, यानी सर्वेश्वर और सक्सेना की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और इनकी बाल कविताएं अगर आप सुनेंगे तो आप भी वैसा ही महसूस करेंगे जो एक बच्चा अपने जहन में महसूस कर रहा होता है उस कविता को पढ़ते हुए। सो कुछ इस तरह लिखते हैं अक्की बक्की। अक्की बक्की करे तरक्की, गेहूं छोड़ के बोए मक्की, मक्की लेकर भागे चक्की, देखो बुढ़िया हक्की बक्की, नक्की झक्की पूरी शक्की। कविताओं की खासियत ही होती है कि बहुत ही चंद लाइनों में इतनी बड़ी बड़ी बात, वो भी इतने राइमिंग वाले वर्ड्स से कह दिया जाता है। एक बार और इस कविता को आप तक हम पहुंचाना चाहेंगे कि अक्की बक्की करे तरक्की, गेहूं छोड़ के बोए मक्की, मक्की लेकर भागे चक्की, देखे बुढ़िया हक्की बक्की, नक्की झक्की पूरी शक्की। इसके अलावा ऊंट पर चूहा, जी हाँ, ऊंट आया पहाड़ के नीचे कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ऐसा कहावत तो अक्सर हम बोला ही करते हैं, लेकिन दरअसल जब ऊंट पर चूहा चढ़ जाता है तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नज़र में फिर क्या होता है। वो लिखते हैं कि चूहा एक ऊंट पर चढ़ झटपट चला बहादुरगढ़, चूहा एक ऊंट पर चढ़ झटपट चला बहादुरगढ़, राह में गहरा ताल पड़ा, चूहे का ननिहाल पड़ा, चूहा खा पी सो गया, ऊंट नहाकर खो गया। ये छोटी छोटी कविताएं तो होती हैं, लेकिन इनमें जो सीख, जो इसके पीछे का सबटेक्स्ट छिपा होता है वो बड़ा ही गहरा होता है, और इसीलिए बच्चों को ऐसी कविताओं को सुनाया भी जाता है। महंगू की टाई। महंगू ने महंगाई में पैसे फूके टाई में, महंगू ने महंगाई में पैसे फूके टाई में, फिर भी ना मिली नौकरी, औंधे पड़े चटाई में, गिटपिट करके हार गए, टाई ले बाजार गए, 10 रुपए की टाई उनकी बिकी नहीं दो पाई में, 10 रुपए की टाई उनकी बिकी नहीं दो पाई में। सो ये महंगू की टाई के बारे में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बताया और हमने आप तक पहुंचा दिया। आई होप कि आपको ऐसी राइमिंग वाली जो कविताएं हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है और कहीं ना कहीं आप भी जुड़ जाते हैं इन्हीं कविताओं में। फिलहाल हमारी प्रीति जी ने कहा भी है, वाह बहुत खूब कविता, थैंक यू सो मच कि आपको मिस्टर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये बाल कविताएं आपको काफ़ी अच्छी लगी। जयप्रकाश मिश्र मौजूद हैं, स्वागत है आपका। और प्रीति जी ने स्वास्थ्यवर्धक जानकारी बोला है, फास्ट फूड के बदले जो हमने स्मार्ट फूड चूज करने की बात कही थी। हमारी गीता श्रीवास्तव जी हैं, गुड मॉर्निंग आरजे सर, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत है। नगेश्वर हैं मध्य प्रदेश से, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। आशु जी लखनऊ से, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड पप्पू हार्डवेयर गोंडा, गुड मॉर्निंग आर्जना, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। ऑफकोर्स लगातार जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आप चैट बॉक्स पर भी आकर के अपनी प्रेजेंस जाहिर कर रहे हैं, और जाहिर कर दिया है हमने भी आपको बाल कविताएं। एंड आई होप कि ये बाल कविताएं आज आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद ज़रूर आई होंगी।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
4: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
3: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
4: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
3: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज, गोंडा।
5: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: सो फिलहाल हमारे पास एक कंटेंट आ गया है, वो प्रीति जी का बहराइच से है और आज के थॉट पर जो उनको समझ बनी उस पर ही उन्होंने कुछ लिख डाला है। हालांकि टाइटल दिया है दिल से धने। चलिए भाई, आज के थॉट पर उनके थॉट में आया ये रचना आप तक हम यूं ही पहुंचा देते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

प्रीति जी लिखती हैं दिल से धनी, संतुष्टि मिलती दिल से धनी व्यक्ति को ही, लेकिन दुनिया न करती कद्र ऐसे दिलेर व्यक्ति की। अंधा दौड़ युग में पूजते सब धनी को ही, क्योंकि जमाना ही है दिखावे का और चापलूसों का। व्यक्तित्व का धनी आजकल मारा फिरे, और झूठे दिखावे वाले व्यक्ति खूब मौज करे। भाग्यशाली है बहुत ही कम सीरत के धनी व्यक्ति, पारखी होती है वही व्यक्ति जो स्वयं के होते हैं दिल से बेहद अमीर, वही पूजते सदा सीरत के धनी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को। थैंक यू सो मच टू यू, बहुत अच्छा लिखा, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति जी फ्रॉम बहराइच, थैंक यू। एंड साथ ही साथ जयप्रकाश मिश्र मौजूद हैं चैट बॉक्स पर, गुड मॉर्निंग टू यू। अंबुज पांडे, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। धर्मेंद्र जी लिखते हैं, जियो निकाल कर बादलों की गोद से कविता मुझे भी पसंद है, इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, पाठ्यक्रम का नाम एक बूंद है। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच कि आपको वो कविताएँ याद आई, बहुत शुक्रिया। और आज का ये प्रोग्राम सैटरडे स्पेशल, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आज अर्ज अदनान आप तक लेकर के आए थे, और अगर आपको पसंद आया है तो जाहिर सी बात है फिर ये आज का शो हमारे लिए काफ़ी मायने रखने वाला है। फिलहाल थैंक यू सो मच टू एवरीवन, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। और अब फिलहाल हमको दीजिए इजाज़त, क्योंकि वक्त हो गया है, घड़ी ने इशारा कर दिया है। प्रोग्राम कैसा लगा ये बता सकते हैं, और कल मिलते हैं संडे स्पेशल शो में।

0: अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में है
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9861 9761 976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।
3: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
4: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
5: तो आइए एनजेपीजी कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में डीएमसी की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
4: यहां होती है बीए, एमए और बीकॉम की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
5: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
4: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली पीजी कॉलेज, गोंडा।
6: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
7: राव की गूंज, राव की गूंज, राव की गूंज।
8: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त समता। गांव के गूंज की अपार सफलता के बाद हम सभी मिलकर एक नया एपिसोड फिर से ला रहे हैं, जिसमें बहुत प्यारे प्यारे गीतों की माला पिरोई गई है और हमारी प्यारी किरण दी की आवाज में है, जिसका साथ देने आ रही हैं खुशबू जी, जिमी जी, समता जी और स्वयं किरण जी। हमारी इस बार के गांव के गूंज का जो एपिसोड का नाम है वो है गोंडा। आइए तो चले हम गोंडा की गलियों का भ्रमण करेंगे सॉन्ग के साथ में।
9: श्वेता, खुशी, जिम्मी, कहाँ हो सब? अरे इतना सन्नाटा क्यों है और सबके चेहरे उतरे हैं, क्या हुआ? लो गर्मा गर्म पकौड़े खाओ, धनिया की चटनी भी है। कोई बात नहीं, हम अकेले ही खा लेते हैं।
10: हम लोग दुखी हैं, इसका मतलब ये थोड़े कि पकौड़े नहीं खाएंगे।
11: जब इतनी गर्मी पड़ती थी तब हम लोग गांव जाते थे, आज इतना प्यारा मौसम हो रहा है तो लगा टेढ़ी नदी में बोटिंग करेंगे तो पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है।
12: अब ना किरण दीदी का गाना सुन पाएंगे, हफ्ते में एक ही दिन तो होता है जब हम फ्री होते हैं। अब बताइए कैसे लोग गीत सुने हम?
9: सब अपने अपने मोबाइल यहीं छोड़ो और चलो मेरे साथ। सब हमारा हाथ पकड़ो और आंखें बंद करो, कोई चैटिंग मत करना, बस चुपचाप चलो।
10: कहाँ ले चल रही है भाई, हम लोग का किडनैप तो नहीं हो जाएगा?
11: बताइए ना किरण दीदी।
12: वहाँ हम सब बारिश में भीगने चल रहे हैं। मजा आ गया, कितनी तेज बारिश हो रही है।
9: देखो देखो, समता छिप रही है, उसे बारिश से डर लगता है। सब पकड़ के ले आओ उसे।

0: आज पहली बार बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में बारिश हो रही है, गाने पर डांस कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है।
1: सच में अनोखा अनुभव है, इतनी तपती गर्मी के बाद ठंडी फुहार, बहुत मजा आ रहा है। किरण दी, एक और लोकगीत हो जाए।

0: चलो पानी रुक गया है, सब लोग कपड़े चेंज कर लो और देखो टेबल पर कितनी सारी चीजें सजा दी है मालती ने खाने के लिए। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है।
1: नमकीन पूड़ी, अदरक तुलसी की चाय, लहसुन का अचार, आम का गलका, मुंह में पानी आ रहा है।
2: अरे मेरी प्लेट क्यों हटा रहे हो तुम लोग?
3: पहले रलिया बैरन पिया का गाना, फिर कोई और सुनाइएगा।

0: या लीजिए गर्मा गर्म पूरी, आज का दिन तो हम कभी नहीं भूलेंगे। अरे मालती, हाथ में तुमने गुदना गुदवाया है क्या?
1: ये तो बहुत पेनफुल होता है मालती, ध्यान रखना, भीगने मत देना हाथ को, इन्फेक्शन हो सकता है।
2: हमें तो देखकर दर्द हो रहा है, मालती को कितना दर्द हुआ होगा, पर बहुत सुंदर लग रहा है।
3: अरे गुदवाई लो हो गुदनवा, गुदवाई लो।

0: हर चीज पर आपके पास लोकगीत होता है, कानों को कितने मीठे लगते हैं।
1: आप लोग हमको गोंडा का बाजार घुमा देंगी? बहादुर की लड़की आई है शादी के बाद पहली बार, उसको मुझे कुछ देना था तो सोचा वहाँ से कुछ खरीद लूं।
2: चलो हम चलते हैं गोंडा के चौक बाजार में, कपड़े की चूड़ी की बहुत सी दुकान है।
0: पर सब ई रिक्शा से चलेंगे, पहले किरण दी गाने के जरिए गोंडा बाजार घुमाएंगी, फिर शॉप पर लेकर चलेंगी।

0: हम लोग बाजार जा रहे हैं मालती, तुम आराम करना और अपने हाथ का ध्यान रखना।
1: खुशबू, गोंडा में दो बाजार हैं, एक रानी बाजार और दूसरा चौक बाजार, दोनों बहुत पुराने हैं।
2: अब तो दुखरनाथ मंदिर से GGIC तक कई ब्रांडेड शॉप खुल गए हैं और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बन गए हैं।
3: लीजिए, ई रिक्शा आ गया, चलो सब लोग वहाँ। 89.6 FM पर गांव की गूंज चल रहा है। समता मैम, आपका फेवरेट लोकगीत।

0: यह रघुनंद मार्केट है, इसके बाद पीपल चौराहा, यहाँ से सब पैदल चलते हैं, तभी बाजार का मजा आएगा।
1: लौटते समय जय माता दी हॉट एंड कूल पॉइंट पर कॉफी पियेंगे, अभी तो पेट बहुत भरा है।
2: जगत, झाबड़ा, सेठ, लक्ष्मी, यह सब बहुत पुरानी शॉप है। चलिए चूड़ी वाली गली में चलते हैं।
3: ये गली तो कितनी पतली और कितनी सकरी है, और इतनी सारी शॉप्स। ये तो लखनऊ के अमीनाबाद से भी पतली गलियां हैं।
0: हाँ, चूड़ी की शॉप, लेस बहुत सुंदर मिलती है यहाँ, शादी का हर सामान मिलता है, और इन शॉप में बर्थडे पार्टी का सामान भी है, और यह शॉप है जहाँ कॉस्मेटिक सामान है।
1: खुशबू, यहाँ तुम्हें सब मिल जाएगा, पूरी गली में ज्ञानस्थली रेडियो सब सुन रहे हैं। हाँ भाई, यह वही किरण दीदी है जिनका गाना आप सभी सुन रहे हैं।

0: चूड़ी वाली गली को घूमने में तो लगता है पूरा दिन चला जाएगा। चलिए, हमारे मतलब भर का सामान हो चुका है,
1: चलिए फिर वापस चलते हैं। सीधे सीधे चलिए, हम लोग फल वाली मंडी के पास निकलेंगे।
2: ये गली चार अलग अलग सड़क पर खुलती है, क्रॉस के शेप में है।
3: यहाँ सारी बुक्स स्टेशनरी की शॉप है, इसके पीछे सब्जी मंडी, चलो ई रिक्शा लो, तुम्हें राधा कुंड घुमा दे।
0: हाँ, याद आया, कृष्णा मैम ने एनएसएस की स्टूडेंट्स को भेजा था इस कुंड की सफाई के लिए।
1: अब तो यह बहुत सुंदर हो गया है, दीपावली पर दिए भी जलते हैं।
2: हेलो, जब यहाँ तक आ ही गए हो तो गांधी पार्क चलते हैं। वहाँ ना एक लेडीज क्लब का प्रोग्राम्स है जिसके लिए बुला भी रहे थे।
3: चलिए चलिए, वहाँ तो बहुत मजा आता है, खूब खाने को मिलेगा, सब नाचेंगे गाएंगे, खूब मस्ती करेंगे।
1: वहाँ महात्मा गांधी की स्टैचू है, वह एरिया की सबसे बड़ी स्टैचू है। क्लियर इंडिया मिशन के चलते इसे बहुत साफ कर दिया गया है।
2: जिम्मी खुशी समता, सबसे मिलो तुम लोग। रोली, तुम इन लोगों का ध्यान रखना। लाओ लाओ लाओ ढोलक, बस दो मुझे दो, इस सुंदर मौसम में धमाल करते हैं। हमसे

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 92 61 9976 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: वेलकम और वार्म वेलकम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा और प्यारा प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञान असली लाइफ, जो कि आपको देता है दिन बना देने वाला मोटिवेशन, इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्मेशन के साथ में एंटरटेनमेंट, बिल्कुल एंटरटेनमेंट। और आज तो हमारे एंटरटेनमेंट का जो कोटा है ना, वो बिल्कुल ही फुल होने वाला है, क्योंकि आज है सैटरडे। और सैटरडे के दिन हम बात करते हैं बॉलीवुड की कुछ पॉजिटिव न्यूज़ को लेकर के, जानते हैं कि किसे क्या अवार्ड्स मिले हैं, किस एक्टर या एक्ट्रेस ने कौन सा अच्छा काम किया है और कौन कौन सी पॉजिटिव न्यूज़ है हमारे पास। तो आज भी बॉलीवुड की गलियों से बहुत सारी खबरें हैं आपके लिए, बहुत सारी न्यूज़ हैं जो हम आप तक पहुंचाएंगे, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि वो कौन कौन सी मूवीज़ हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रखा है अभी तक। और साथ ही साथ, जैसे कि आप सभी को पता है कि सैटरडे से हमने न्यू शुरू किया है कि हम कोई भी दो मूवीज़ के पीछे की कहानी भी आपको बताएंगे और उससे जुड़ी हुई कुछ बातें भी करेंगे। लेकिन इन सब से पहले आप सभी का स्वागत तहे दिल से स्वागत करती है आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका, आप सभी के अपने वाले प्रोग्राम में जिसका कि नाम है ज्ञान असली लाइफ। तो आइए लिसनर्स, चलते हैं और जानते हैं कि बॉलीवुड की गलियों में आखिर चल क्या रहा है और हमें वहाँ से आज के लिए कौन कौन सी खबरें मिल चुकी हैं। सो मैं आपको बता दूं कि आज की सबसे पहली जो न्यूज़ हमारे पास बॉलीवुड से है वो है कुछ पॉजिटिविटी को लेकर के। इस हफ्ते की सबसे बड़ी और पॉजिटिव खबर जो कि बॉलीवुड से है वो ये है कि भारत की तरफ से ऑस्कर 2027 में फिल्म गोधल को इंटरनेट फीचर कैटेगरी फिल्म के रूप में शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। और साथ ही साथ में सेकेंड जो न्यूज़ हमारे पास है वो ये है कि भाई आईफा अवार्ड्स किसे पसंद नहीं, मतलब आईफा अवार्ड जब भी आते हैं तो धूम धमाल धड़ाका मचा देते हैं और सभी को यही लगता है कि बिल्कुल हमें आईफा अवार्ड्स देखने ही देखने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आईफा अवार्ड्स 2027 का जो ऐलान है वो हो चुका है। 18 सितंबर 2026 को बॉलीवुड का सबसे बड़ा उत्सव यानी कि आईफा अवार्ड्स अगले साल 22 और 23 जनवरी को अबू धाबी के यास आइलैंड में होगा, जिसमें कि सलमान खान, करीना कपूर, शाहिद कपूर जैसे सितारे परफॉर्म करेंगे। खास बात यह है कि इस बार पहली बार जो अवार्ड्स हैं वो यूट्यूब पर ग्लोबल लाइव स्ट्रीमिंग भी किया जाएगा। वाओ, मतलब यूट्यूब पे इसका ग्लोबल लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। मतलब आप सोचिए, आईफा अवार्ड्स और वो भी अबू धाबी में, यास आइलैंड में, और वो भी उसमें सलमान खान होंगे, करीना कपूर होंगी, शाहिद कपूर होंगी और उनके जैसे कितने ही बॉलीवुड के हमारे चहेते सितारे उसमें परफॉर्म करेंगे। और सबसे खास और सबसे मेन बात कि यूट्यूब पर इसका लाइव स्ट्रीम भी किया जाएगा। मतलब जो भी लोग, जैसे होता है ना कि कई बार हम बिज़ी होते हैं तो हम टीवी पे नहीं देख पाते, लेकिन अगर यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम होगा तो सभी कहीं भी बैठे हुए हैं उसे देख सकते हैं। वाह, ये तो वाकई में बहुत अच्छी और एनर्जी वाली खबर है भाई। बॉलीवुड की गलियों से आज की ये खबर तो मुझे लग रहा है कि सभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त है। आइए अब बात कर लेते हैं उस मूवी की जिसने इन दिनों धमाल और प्रॉपर धमाल मचा रखा है। लेकिन उससे पहले अरविंद जी आ गए हैं, लिख रहे हैं, हेलो आरजे मैम, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? हेलो अरविंद जी, मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? तो आइए बात करते हैं टॉक्सिक मूवी की। यश स्टार्टो फिल्म टॉक्सिक रिलीज़ के 6 दिनों के अंदर ही उसने 292 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे कि सिनेमा का बिजनेस जो है वो ज़बरदस्त हो रहा है और उसमें ज़बरदस्त उछाल भी आ रही है। भाई ये तो बहुत ही अच्छी वाली न्यूज़ है, मतलब आज तो ऐसे लग रहा है ना कि सब कुछ बेस्ट बेस्ट बेस्ट और बेस्ट ही हो रहा है। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि चीज़ें बेहतर से बेहतरीन की तरफ तब जाती हैं जब हम उन्हें बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं। और जब बात आती है हमारी एंटरटेनमेंट की, तो हम सीधा हमारे बॉलीवुड का रुख करते हैं, फिर चाहे वो मूवीज़ हों, ओटीटी सीरीज़ हो, या फिर आजकल जो शॉर्ट फिल्म्स बनती हैं वो हों, सभी हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ ही ले जाती हैं और उसमें जुड़े होते हैं कुछ अवार्ड्स भी। जैसे कि अभी आपने जाना ऑस्कर के बारे में, आईफा के बारे में, ये सारे ही अवार्ड्स कहीं ना कहीं जब हम अवार्ड शोज देखते हैं ना और उसमें अपने फेवरेट स्टार को परफॉर्म करते हुए देखते हैं, तो अलग ही खुशी, एक अलग ही हमारे अंदर भर जाती है और एनर्जी एनर्जी तो डबल हो जाती है, मतलब लगता है कि वाह। आइए अब बात कर लेते हैं एक और अवार्ड के बारे में है, जो कि है दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024। 16 सितंबर 2026 को भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा और उनके 5 दशक के बेमिसाल योगदान के लिए देश का सबसे सर्वोच्च सम्मान यानी कि दादा साहब फाल्के दिया जाएगा। ये प्रतिष्ठित, बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित और कहीं ना कहीं भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला बेहतरीन जो पुरस्कार है वो अभी जल्दी ही यानी कि 22 सितंबर को होने वाले भव्य समारोह में दिया जाने वाला है। वाओ, मतलब अनंत नाग जी को मिलने वाला है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। मैं आपको बता दूं कि दादा साहब फाल्के और पुरस्कार जो ये मिलता है, ये अवार्ड ये आसानी से नहीं मिलता है, ये भारत में कहीं ना कहीं हमारे योगदान के लिए हमें दिया जाता है, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है और ये तब मिलता है जब आपकी किसी बात की वजह से, किसी काम की वजह से कुछ पॉजिटिव चीज़ें हुई हों। तो भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे बॉलीवुड में से किसी एक सेलिब्रिटी को ये अवार्ड मिलने वाला है। तो आइए लोस्तों ज़मीनी बातों के साथ चलते हैं और एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुन लेते हैं, इन्जॉय कर लेते हैं। आऊँगी इस सॉन्ग के उस पार आप सभी से बातें करने के लिए, क्योंकि अभी तो हमारे पास आप सभी को बताने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है हमारे पास अभी शेयर करने के लिए, बहुत सारी बातें आपसे करेंगे, बहुत कुछ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए प्यारा सा म्यूज़िकल ब्रेक लेते हैं और ये प्यारा सा सॉन्ग सुन लेते हैं, इन्जॉय कर लेते हैं। आप सभी बने रहिए आपके अपने वाले प्रोग्राम में जिसका नाम है ज्ञानासली लाइव और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। स्टे ट्यून्ड।
1: वेलकम वेलकम टू द सक्सेस पार्टी ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड।
2: बैक टू बैक, ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं। पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा और प्यारा वाला प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। और आज भाई हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की न्यूज़ को लेकर के, यानी कि कौन सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल कर रही है, कौन से अवार्ड्स आने वाले हैं। अभी तक हमने ये बात की, अब आइए चलते हैं हमारे नए वाले सेगमेंट की तरफ जो कि है हमारा सैटरडे स्पेशल, यानी कि कुछ फिल्मों के पीछे की कहानी जो हम हर दिन लेकर के आते हैं, उससे जुड़ी हुई कुछ पॉजिटिव बातें बताते हैं आपको और साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स क्या क्या हैं। तो आज भी हम बात करेंगे जिस मूवी के बारे में वो बहुत ज़्यादा पसंद, मतलब मैं ऐसे कहूँ कि बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है, और उसके गानों का क्रेज़ तो आज भी है, आज भी लोग उस गाने को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आइए बात करते हैं फिल्म 1992 में आई थी फिल्म दिल का क्या कसूर। दिव्या भारती और पृथ्वी की ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी जिसे लॉरेंस डिसूजा ने निर्देशित किया था, और ये म्यूज़िकल मेलोड्रामा फिल्म थी। मतलब आज भी मैं आपको बताऊं कि आज भी जब भी ये मूवी टीवी पे आती है तो ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई इसे ना देखे। आज भी जब हम देखते हैं तो हमें उतनी ही कहीं ना कहीं फ्रेश लगती है, उसके सारे इमोशंस जो हम गानों के थ्रू महसूस कर पाते हैं वो कहीं ना कहीं हमें उतने ही फ्रेश लगते हैं कि हाँ हम महसूस कर रहे हैं। और इसी के साथ महेंद्र जी आ गए हैं जो कि हमें राजस्थान से सुनते हैं, लिख रहे हैं शुभ दोपहरिया अंशिका मैम, सादर प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार आपको भी महेंद्र जी, कैसे हैं आप, शुभ दोपहरिया। तो आइए लिसनर्स, बात कर रहे थे हम जिस फिल्म की, वो है दिल का क्या कसूर। दिल का क्या कसूर, आप सभी ने ये मूवी ज़रूर देखी होगी। आइए बताते हैं आपको इससे जुड़ी हुई कुछ पॉजिटिव और अच्छी अच्छी बातें। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि जब भी हमें मैच्योरिटी दिखानी होती है ना, हमें लगता है कि कोई भी चीज़ आपको मैच्योरिटी के साथ करनी है, और किसी के चेहरे पर मासूमियत हो और उसे वो काम सिंसेरिटी अपने फेस पे दिखानी हो, मैच्योर दिखाना हो खुद को, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी मुश्किल काम होता है। लेकिन कहते हैं ना कि चीज़ें जितनी ज़्यादा मुश्किल होती हैं उन्हें करने में उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है, और वो आपको उतना ही ज़्यादा इंस्पायर भी करती है। कुछ ऐसे ही हुआ इस फिल्म की लीड हीरोइन यानी कि दिव्या भारती जी के साथ, कि भाई उन्हें जो अपने आप को दिखाना था वो शांत, थोड़ा सा मैच्योर, थोड़ी सी गंभीर एक लड़की के रोल में दिखाना था जो कि कहीं ना कहीं मैच्योरिटी से सारी बातें करती है, मैच्योर रहती है। आपने देखा होगा कि जब फिल्म की स्टार्टिंग होती है तो वो थोड़ा सा चंचल और थोड़ी सी ऐसी रहती है, मतलब मस्ती करती हैं, लेकिन बीच में जब मिड में फिल्म पहुँचती है तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल शांत और बिल्कुल सीधी समझदार हो जाती हैं। लेकिन जो हमारी दिव्या भारती जी थी उनके फेस पर इतनी ज़्यादा मासूमियत थी कि सिंसियरिटी उनके फेस पर बिल्कुल भी कहीं ना कहीं सूट नहीं कर रही थी, और डायरेक्टर को यही डर था कि कहीं उनकी जो मासूमियत है वो सिंसियर रोल के आड़े ना आ जाए। लेकिन दिव्या भारती जी ने बहुत बहुत बहुत मेहनत की और उस रोल में बाकायदा उन्होंने खुद को निखारा। इसीलिए कहते हैं कि जब आप मेहनत करते हैं ना तो कहीं ना कहीं वो ज़रूर से रंग लाती है, बस हमें दिल से मेहनत करनी चाहिए। दिव्या भारती जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने इस रोल को लेकर के काफ़ी मेहनत की, पॉजिटिव चीज़ों को सोचा और साथ ही साथ में सबका दिल भी जीत लिया। इसीलिए कहते हैं कि पॉजिटिविटी को हमेशा अपने साथ लेकर के चलना चाहिए। आइए अब बात कर लेते हैं कि फिल्म जो थी वो लॉरेंस डिसूजा, और इसमें जो म्यूज़िक दिया था वो म्यूज़िक दिया था नदीम और श्रवण ने, तो ये बहुत ही खूबसूरत था। और फिल्म की जो फिल्म का गाना था दिल जिगर नज़र क्या है, उसने तो मतलब कमाल कमाल कमाल कमाल कर दिया। कहते हैं कि इतिहास रच दिया था इस गाने ने, क्योंकि इस गाने में जो कहते हैं ना कि जो बातें थी, जो चीज़ें थी, वो दिल को बिल्कुल छू जाती हैं, और इसलिए शायद यही कारण है कि ये गाने आज भी बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। इस फिल्म में ने नए कलाकारों को बढ़ावा भी दिया, यानी इस फिल्म के ज़रिए नए अभिनेता पृथ्वी को एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव ब्रेक मिला था। फिल्म के गानों की वजह से पृथ्वी रातों रात यूथ्स के बीच में, युवाओं के बीच में म्यूज़िकल सेंसेशन कहीं ना कहीं बन गए, और उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद भी किया गया। बिल्कुल ये दिल का क्या कसूर जो मूवी थी ये उनकी डेब्यू फिल्म थी, और इस मूवी में जो सबसे मेन चीज़ आती है ना वो ये आती है कि कहीं ना कहीं एक फ़ीमेल को लीड रोल में दिखाया गया,
पूरी कहानी कहीं ना कहीं इस फिल्म में दिव्या भारती जी के इर्द गिर्द ही घूमती है। जैसे कि आपने देखा कि पूरी कहानी शालू की तरफ ही घूमती है, जिसमें उनके किरदार का नाम शालू होता है, और पूरी कहानी उसी की तरफ घूमती है। और लास्ट में फिर इस फिल्म का जो गाना लास्ट वाला है वो भी बहुत पसंद किया जाता है। सो कहीं ना कहीं बहुत ही प्यारी ये मूवी है और बहुत ही प्यारे इसके सॉन्ग्स भी हैं। तो आइए लिसनर्स चलते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुन लेते हैं और इस मिलते हैं आपसे इस म्यूज़िकल ब्रेक के उस पार। तब तक के लिए सुने, इन्जॉय करें और बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम ज्ञानश्री लाइव में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारा सैटरडे बहुत ही प्यारी प्यारी मूवीज़ के साथ। और ब्रेक के उस पार भी आऊँगी मैं कुछ मूवीज़ को लेकर कर और उन्हीं पर बात करेंगे। तो आइए चलिए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। स्टे ट्यून्ड।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं। पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
2: गोंडा शहर की धड़कन का दिल धड़काने लेकर के आपका अपना वाला प्रोग्राम ज्ञान असली लाइव फिर से हाजिर हूँ मैं, यानी आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो अभी तक तो हमने बात की बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में, जो कि थी दिल का क्या कसूर। आइए आप बात कर लेते हैं 90s की मूवी से हट करके कुछ और मूवीज के बारे में। तो अब जिन मूवीज के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो हैं दो बहुत ही अच्छी अच्छी मूवीज। तो सबसे पहले आइए जिसके बारे में बात करते हैं, वो है हमारी मूवी जिसका कि नाम है सुल्तान। भाई सुल्तान मूवी जो है वो आप सभी ने देखी होगी। तो आइए बात करते हैं और बताते हैं आपको सुल्तान के पीछे की कुछ बहुत ही अच्छी सी बातें। तो सबसे पहले अगर बात करें सुल्तान मूवी की, तो अली अब्बास जफर थे इस फिल्म के जो कि निर्देशक और मुख्य इसमें जो भी एक्टर और एक्ट्रेस थे उनमें थे सलमान खान, अनुष्का शर्मा और रणदीप हुड्डा। आइए अब बात करते हैं कि सुल्तान जो है वो सीधे सीधे हरियाणा के एक लड़के सुल्तान अली खान के अहंकार यानी कि ईगो पे बेस्ड कहानी होती है, जो कि जब मेन पिक्चर जो है वो मिड में पहुंचती है, फिल्म पहुंचती है, तो धीरे धीरे उसका जो ईगो होता है वो ख़त्म हो जाता है और वो एक मैच्योर मार्शल आर्ट फाइटर बन के फिर से एक बार कहानी में एंट्री होती है। फिल्म के लिए यशराज फिल्म ने बम्बई के स्टूडियो में ही 300 मजदूरों की मदद से कम 70 दिनों में हूबहू हरियाणा जैसा दिखने वाला एक असली गांव तैयार किया था और इसी के साथ इस फिल्म की शूटिंग भी की गई थी। आइए अब आपको बताते हैं कि इस फिल्म के जो शुरुआती वर्किंग स्टाइल है उसमें इस फिल्म का नाम दंगल रखा गया था, यानी कि पहले फिल्म का नाम सुल्तान रखना है ये कंफर्म नहीं था, लेकिन बाद में जब इसके जो डायरेक्टर थे यानी कि आदित्य चोपड़ा, उनको पता चला कि आमिर खान भी इसी नाम से फिल्म बना रहे हैं, तो उन्होंने बड़ा दिल रखते हुए पॉजिटिविटी के साथ इसका नाम बदल करके सुल्तान रख दिया। तो वही नाम चेंज, कहते हैं ना कि जब नाम से ही पहचान होती है और जब नाम चेंज होता है और जब कोई चीज़ चेंज होती है ना, कुछ नया बनता है, तो वो बहुत बेहतरी के साथ सामने आता है, जैसे कि हुआ फिल्म सुल्तान के साथ। और मैं आपको बता दूं कि फिल्म का एक सीन जहां पे सलमान खान जो हैं वो बाइक पे होते हैं और बच्चों को बैठा कर गाँव में घूमते हैं, वो असल में कोई शूटिंग का सीन नहीं था, बल्कि सलमान खान जो थे वो ब्रेक के दौरान बच्चों को वैसे ही बाइक पर घुमा रहे थे, लेकिन डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने जब वो रियल एक देखा तो उन्हें वो बहुत ही प्यारा और पॉजिटिव लगा और उन्होंने चुपके से बिना सलमान को बताए उसे कैमरे में कैप्चर कर लिया और फाइनली ये फिल्म का हिस्सा भी बन गया। तो ये थी रियल सीन वाली रियल फिल्म शूटिंग, जिसमें कि कोई भी प्लान नहीं था कि ये शूटिंग होगी, लेकिन फिर हुई और बहुत ही अच्छी लगी। सलमान खान ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था जब उन्होंने इस मूवी की शूटिंग की और उन्होंने बहुत सारी कहीं ना कहीं चीज़ों को लिया जो कि वो बहुत मानते हैं कि इस फिल्म से जब उन्होंने किया। और जब उनका वो डायलॉग था कि सुल्तान को अगर कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ सुल्तान, तो उससे उन्होंने एक पॉजिटिव बात ये भी सीखी कि अगर खुद हमें कोई हरा सकता है तो वो हम खुद अपने आप को हरा सकते हैं। इसलिए कभी भी खुद को कभी हारा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए। आप सभी ने देखा कि फिल्म के मिड में जब उनके बेटे की डेथ होती है तो वो अपने आप को खुद हारा हुआ महसूस करने लगते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो फिर से सोचते हैं और पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं तब वो कहीं ना कहीं उन्हें समझ में आता है कि हाँ, मुझे अगर कोई हरा सकता है तो सिर्फ मैं हूँ जो खुद को हरा सकता हूँ। तो इसीलिए कहते हैं कि कभी खुद से हारना नहीं चाहिए, यानी कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि लाइफ ख़त्म हो गई, क्योंकि लाइफ तो हमेशा हमारी शुरू हुई होती है। हर दिन, हर घड़ी, हर पल आप एक नई शुरुआत हमेशा कर सकते हैं। किस्मत को छोड़ो, जब तक तुम खुद से नहीं हारोगे तब तक दुनिया का कोई इंसान तुम्हें हरा नहीं सकता है। इसलिए हमेशा अपनी कामयाबी और अपनी कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर के ही चलना चाहिए। सो आइए बताते हैं कि सुल्तान फिल्म जो है वो हर इंसान को ये सिखाती है कि कभी भी आप कितने भी सक्सेस हो जाएं, लेकिन कभी भी उसको कहीं ना कहीं ईगो की तरह नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ईगो जो होता है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। कभी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए अपनी सक्सेस का। अच्छी बात है कि आप सक्सेसफुल हैं, लेकिन वो सक्सेस जो आपको मिली है वो औरों की मदद करने के लिए मिली है, अपनी गलतियों से आपने सीखा है, इसलिए कभी भी उसे और नेगेटिविटी की तरफ लेकर के नहीं जाना चाहिए, वरना सक्सेस को नेगेटिविटी में बदलते हुए कभी भी देर नहीं लगती है। सो आइए लिसनर्स, इन्हीं के साथ चलते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुन लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। और हमारे पास जो मूवीज़ की लिस्ट है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, अभी एक मूवी हमारे पास और है जिससे कि जुड़ी हुई कहानी और बातें हम आपको बताएंगे, क्योंकि आज है हमारा सैटरडे यानी कि बॉलीवुड वाला डे। तो आज के दिन हम मूवीज़, ओटीटी सीरीज़ कुछ को लेकर के ही बात करते हैं और साथ ही साथ बॉलीवुड की कुछ अवार्ड्स को भी लेकर के। तो आइए फ़िलहाल चलते हैं और एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं, इन्जॉय करते हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में है
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: अरे सुना
3: क्या?
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853546।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद ही मोटिवेशनल एंटरटेनमेंट वाला और साथ ही साथ इन्फॉर्मेशन वाला भी प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञानश्री लाइव, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अनिशिका, और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए अब बात कर लेते हैं उस मूवी की जिसको कि हमने सस्पेंस में किया था कि सुल्तान के बाद हम किस मूवी की बात करने वाले हैं, ये हम आपको अभी नहीं बताएंगे। तो आइए फिल्म बता ही देते हैं, लेकिन उससे पहले काम करते हैं कि फिल्म के डायरेक्टर का नाम हम बता देते हैं, जो कि हैं नितेश तिवारी, और इसमें काम किया था सुशांत सिंह राजपूत, श्रद्धा कपूर और वरुण शर्मा ने, जो कि फिल्म बहुत ही प्यारी सी और कहीं ना कहीं हम सभी को हमारी कॉलेज लाइफ की याद दिला देती है ये मूवी, जो कि है फिल्म छिछोरे। फिल्म छिछोरे जो है वो काफ़ी हद तक कहीं ना कहीं नितेश तिवारी के खुद के कॉलेज के दिनों की यादों पर बेस्ड है। नितेश तिवारी बताते हैं कि वो आईआईटी बॉम्बे में रह चुके थे, वहाँ के स्टूडेंट थे, और फिल्म में दिखाई गई हॉस्टल और जो भी आपसी दुश्मनी होती है, उनके बीच जो भी कंपटीशन होता है, असल में वो उनकी अपनी कॉलेज लाइफ से मोटिवेटेड एक कहानी है। और इसमें जो दोस्ती दिखाई गई है, ये दिखाया गया है कि किस तरीके से जो लूज़र्स होते हैं, जैसे कि उन्हें एक टैग दे दिया जाता है लूज़र, लेकिन फिर भी वो किस तरह से बेहतरीन बन कर के निखरते हैं, वो कहानी दिखाई गई है। असली कहानियों में जो है लूज़र्स वो जीत जाते हैं, यही है कहानी। सो आइए बात करते हैं कि फिल्म के अंत में सुशांत सिंह राजपूत और उनके दोस्त जो होते हैं, मेहनत के बाद भी वो चैम्पियनशिप का जो फाइनल होता है उसे हार जाते हैं। लेकिन बता दें कि कहीं ना कहीं हार जो होती है ना, वो उन्हें इतनी ज़्यादा चुभती नहीं है, क्योंकि उस मूवी में आपने देखा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत कहते हैं कि हमारी कोशिश डिसाइड करती है कि हम लूज़र हैं या नहीं, हमारी जो कोशिश है वही डिसाइड करती है, ना कि रिज़ल्ट डिसाइड करता है। और यही इस मूवी की रियलिटी भी कहीं ना कहीं है कि आप कितनी कोशिश करते हैं, कितने एफर्ट्स करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, वो बेहतर होता है, न कि ये कि आप जीते या नहीं। तो इस फिल्म में भी यही होता है कि न जीतने के बावजूद भी उनका जो लूज़र का टैग होता है वो हट जाता है और उन्हें फाइटर कहा जाता है। तो ये मूवी जो है वो हमें सबसे ज़्यादा यही सिखाती है कि कहीं ना कहीं आपको कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा कोशिश करें, क्योंकि जो लोग कोशिश करते हैं, अपना 100% एफर्ट देते हैं, वो हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर गेन करते हैं। आइए बात कर लेते हैं फिल्म से जुड़ी हुई, कि आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म में वरुण शर्मा के साथ कई सारे किरदार थे, और जो दोस्त थे उनकी बहुत सारी अजीब आदतें भी थी। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं यानी कि नितेश, वो बताते हैं कि उनकी कॉलेज लाइफ में खुद उनके ऐसे दोस्त थे जिनकी जो आदतें थीं वो बहुत ज़्यादा अलग अलग थी, मतलब अगर 5 लोग हैं तो वो बिल्कुल 5 अलग अलग हैबिट्स वाले थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक साथ कहीं ना कहीं हर दिन बिताया और हर दिन को बेहतर किया, और उन्हीं कॉलेज की यादों को, दोस्ती को, प्यार को, और साथ ही साथ में ये भी उन्होंने दिखाने की कोशिश की है कि साथ में कितनी ताकत होती है, यानी कि दोस्त जब साथ हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और स्पेशली ये हमारे यूथ्स के लिए बहुत मोटिवेटिंग है कि कहीं ना कहीं आप हमेशा कोशिश करते रहें, अपने दोस्तों के साथ रहें। और इस मूवी में ये भी दिखाया गया है कि पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि हम खुद को कमरे में बंद कर 24 घंटे सिर्फ पढ़ाई करें, पढ़ाई का मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि आप अपना बेस्ट दें, लेकिन और भी चीज़ों को टाइम देने की पूरी पूरी कोशिश करें। इस मूवी में खुद डायरेक्टर नितेश तिवारी कहते हैं कि उन्होंने इस मूवी से जो सीखा वो यही सीखा कि अगर बहुत सारी तैयारियां करने के बाद भी आप कई बार आपको आपकी मनचाही सक्सेस ना भी मिले, फिर भी कभी भी अपने आप को लूज़र नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने आप को लूज़र समझ लेंगे ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपनी गलतियों से सीखें, बेहतर से बेहतरीन बने, लेकिन कभी भी खुद को लूज़र का एक टैग ना दें, कभी खुद को लूज़र ना समझें कि आपको ये लगे कि अरे मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। एक बार हारने के बाद कभी ये नहीं लगना चाहिए कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, हम उतनी ही मेहनत से उठेंगे और फिर से कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसा कि इस फिल्म में भी कहा गया कि रिज़ल्ट से ज़्यादा कहीं ना कहीं आपकी कोशिशें मायने रखती हैं, और हमेशा उन्हीं पर ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। और अगर आप उन पर ज़्यादा मेहनत करेंगे तो फिर आपको जो भी रिज़ल्ट मिलेगा ना, आपको उससे 100% सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर आप अपने रिज़ल्ट से 100% सेटिस्फाइड हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका रिज़ल्ट भी अच्छा है।
तो आइए लिसनर्स चलते हैं इन्हीं बातों के साथ, एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है उसे सुन लेते हैं और इन्जॉय कर लेते हैं। आऊँगी इस सॉन्ग के उस पार कुछ न्यू और मज़ेदार लेकर के, क्योंकि आज है हमारा एंटरटेनमेंट वाला डे, यानी कि

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 27 11 827।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
6: आप सुन रहे हैं आपका अपना वाला प्रोग्राम ज्ञान असली लाइव, जो कि आपको देता है दिन बना देने वाला, आपका मोटिवेशन, जिंदगी बना देने वाली इंफॉर्मेशन और साथ में एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और आज तो हमारा फुल्ली एंटरटेनमेंट वाला दिन है, क्योंकि वो सैटरडे है। तो अभी तक हमने बहुत सारी फिल्मों के बारे में और उनके पीछे की स्टोरीज को लेकर के बात की। आइए अब बताते हैं कि फिल्में और OTT जो भी फिल्में होती हैं उन्हें देखने का फ़ायदा क्यों होता है। क्योंकि जब भी हम फिल्में देखते हैं या फिर आजकल आप जो शॉर्ट्स फिल्म बन रही हैं वो देखते हैं, तो सभी कहते हैं कि फ़ायदा क्या है। जब भी आप फ़ोन पे कोई भी मूवी देखते हैं तो हमें ये सुनने को मिलता है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, जाकर पढ़ाई कर लो। तो चलिए बताते हैं कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं मूवीज़ को देखने के। तो मूवीज़ देखने का सबसे बड़ा फ़ायदा जो होता है वो ये होता है कि जब आप कोई भी मूवी देखते हैं तो उससे आपकी जो स्ट्रेस होता है ना वो तुरंत से भाग जाता है, यानी कि आपको अच्छा लगता है। इसलिए कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं आप तो आपको हल्की फुल्की कॉमेडी मूवीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। दूसरी चीज़ होती है कि जब भी हम फिल्मों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो बढ़ती है। क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ने का मतलब है कि हम एक ही चीज़ को, एक ही बात को कई तरीके से, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समझ पाते हैं। और साथ ही साथ में ऐसी मूवीज़ जो कि हमें मोटिवेट करती हैं उनसे हमें कमबैक करने का जज्बा भी मिलता है। यानी कि अभी अभी हमने दो ऐसी ही मूवीज़ के बारे में बात की जो थी सुल्तान और छिछोरे। आपने सुल्तान के बारे में सुना कि किस तरीके से उसमें वो फिर से कमबैक करते हैं, और यही छिछोरे के साथ भी होता है कि किस तरीके से उसके बच्चे के साथ कितना कुछ होता है लेकिन फिर भी वो कमबैक करते हैं और अपने उस लूज़र के टैग को हटाकर फाइटर का टैग हासिल करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मूवीज़ देखनी चाहिए, क्योंकि ये हमें मोटिवेट भी करती हैं। हो सकता है कि जो प्रॉब्लम उनकी लाइफ में थी वही आपकी लाइफ में भी हो। जब हम औरों को हमारी प्रॉब्लम को फेस करते हुए देखते हैं तो हमें भी उसे फेस करने का और कमबैक करने का कहीं ना कहीं एक जज्बा मिल जाता है। तीसरी चीज़ होती है कि मेंटल स्ट्रेंथ भी आपको मिलती है। जब भी हम किसी की बायोपिक देखते हैं, किसी की लाइफ जर्नी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एक मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है कि हाँ, अगर वो अपनी लाइफ में इन चीज़ों को हराकर आगे बढ़ सकते हैं तो हम भी बढ़ सकते हैं। इससे हमारा मेंटल सपोर्ट जो होता है वो बढ़ता है और हमारी मेंटल हेल्थ भी स्ट्रॉन्ग होती है, और कहीं ना कहीं इससे हमारी जो कहते हैं ना नॉलेज भी बढ़ती है। जैसे मान लीजिए आपने डिफरेंट डिफरेंट धर्मों से जुड़ी हुई, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से जुड़ी हुई मूवीज़ जब हम देखते हैं तो उससे हमारी उनको लेकर के नॉलेज भी बढ़ती है कि वो इस शहर में ये चीज़ है, अच्छा इसमें इस तरह होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई गुजराती या मराठी या तमिल फिल्म देखी तो कहीं ना कहीं हम उनकी ट्रेडिशंस के बारे में जान पाते हैं कि ओ तमिल फिल्म में ऐसे होता है, हाँ गुजरातियों में ये होता है। तो कहीं ना कहीं हमारी नॉलेज भी बढ़ती है, मेंटल सपोर्ट भी मिलता है, स्ट्रेस भी कम होता है, और साथ ही साथ में हमें हमारी लाइफ में बेहतर से बेहतरीन करने का एक सपोर्ट भी मिलता है। तो सोचिए फिल्म देखने के इतने सारे फ़ायदे होते हैं। इसलिए जब भी मम्मी आपको डांटे ना कि क्यों पिक्चर देख रहे हो, चलो चल के पढ़ाई करो, तो आपको उनसे कहना है अरे मम्मी रुक जाओ थोड़ा भाई, मुझे मूवीज़ देख लेने दो क्योंकि इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप मुझे देखने नहीं दोगे? तो फिर आपकी मम्मी आपको देखने देंगी कि अच्छा चलो इतने सारे फ़ायदे अगर आप मुझे बता रहे हैं तो ठीक है चलो देख लो मूवी, कोई बात नहीं। तो अब से आप देखिए और इंजॉय करिए, लेकिन हाँ अपनी पढ़ाई के लिए भी टाइम ज़रूर निकालिएगा लिसनर्स। और इन्हीं बातों के साथ मुझे आज के लिए दीजिए इजाज़त, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो आपको बाय कहने का हो चुका है। तो आज के लिए चलती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, ज़बरदस्त रहिए। और अब मैं आपसे मिलूंगी आपके अपने वाले प्रोग्राम में जिसका के नाम है ज्ञानसली लाइव, नहीं सुन सहेली, सुन सहेली में मिलती हूँ। बाय।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन
1: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की दूर करेंगे बहुत से भ्रम सीखेंगे सिखाएंगे पैसे भी अपने बचाएंगे बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार रहेंगे रोग मुक्त जीवन रहेगा खुशहाल अब खत्म हुआ इंतजार आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर
2: रेडियो 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन भी जुड़ गया है स्मार्ट के विशेष अभियान सेहत सही लाभ कई के तहत 100 दिन के टीबी उन्मूलन अभियान को समर्थन देने के लिए इसलिए हम भी लेके आए हैं 100 दिन टीबी के अंत की ओर एक कदम हमारी कोशिश है सबसे कमजोर समुदाय तक पहुंचने और उन्हें जागरूक बनाने की सुनते रहिए 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन और बनिए इस बदलाव का हिस्सा टीबी को हराएं जीवन को जिताएं 89.6 FM ये है गोंडा शहर की धड़कन
3: नमस्ते दोस्तों आप सुन रहे हैं सेहत सही लाभ कई मैं हूं आपकी आरजे आकांक्षा आज का एपिसोड उन महिलाओं के लिए खास उपयोगी है जो मातृत्व की तैयारी कर रही हैं या गर्भावस्था के सफर में हैं श्रोताओं एक स्वस्थ माँ ही एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दे सकती है आज हमारे साथ टीकन भाभी हैं जो बताएंगी कि गर्भधारण से पहले और गर्भावस्था के दौरान पोषण कितना जरूरी है साथ ही सही खान पान से हम माँ और बच्चे दोनों का भविष्य कैसे संवार सकते हैं टीकन भाभी सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे शो सेहत सही लाभ कई में
4: धन्यवाद दीदी
3: भाभी आजकल बहुत सी महिलाएं प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रही हैं, लेकिन अक्सर वे नहीं जानती कि गर्भधारण से पहले सही खान पान कितना जरूरी होता है या प्रेगनेंसी से पहले पोषण का क्या रोल होता है
4: नमस्ते दीदी
3: जी नमस्ते
4: आपके श्रोताओं को भी नमस्कार देखिए जब कोई महिला माँ बनने की सोचती है तो उसका शरीर पहले से ही तैयार होना चाहिए मतलब ये कि शरीर में जरूरी विटामिन मिनरल्स और ताकत भी होनी चाहिए ताकि बच्चा स्वस्थ रहे और माँ को भी परेशानी ना हो जैसे फोलिक एसिड गर्भ में बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी के विकास के लिए बहुत जरूरी है आयरन कैल्शियम और प्रोटीन भी चाहिए ताकि शरीर मजबूत हो और हाँ जंक फूड से परहेज करना चाहिए और ताज़ा फल सब्जियाँ दालें वगैरह ज्यादा खानी चाहिए तो प्रेगनेंसी की तैयारी सिर्फ मन से नहीं शरीर से भी करनी पड़ती है
3: टीकन भाभी अब बात करते हैं गर्भावस्था के दौरान वजन बढ़ने की बहुत सी महिलाएं इसको लेकर उलझन में रहती हैं। आप बताइए कि गर्भावस्था में वजन कितना बढ़ना चाहिए
4: दीदी गर्भावस्था में सही तरीके से वजन बढ़ना बहुत जरूरी होता है पूरे 9 महीने में महिला का वजन करीब करीब 10 से 12 किलो तक बढ़ना चाहिए 4th महीने से हर महीने लगभग 1.5 से 2 किलो वजन बढ़ना सामान्य माना जाता है ये वजन बच्चे की ग्रोथ माँ के शरीर की जरूरतों और गर्भ में पानी वगैरह की वजह से बढ़ता है लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि वजन बहुत ज्यादा ना बढ़े या फिर बहुत कम भी ना हो वरना समस्या हो सकती है इसलिए सभी बहनें हर महीने आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर वजन जरूर चेक करवाएं वहाँ सही गाइडेंस भी मिलती है और समय समय पर जांच भी होती है
3: अच्छा तो टीकन भाभी अक्सर सुनने को मिलता है कि प्रेगनेंसी में 2 लोगों का खाना खाना चाहिए लेकिन इसका मतलब क्या होता है गर्भवती महिला को दिन में क्या क्या और कितना खाना चाहिए क्या वाकई 2 बार खाना या 2 लोगों का खाना खाना चाहिए
4: हाँ ये बात सही है कि गर्भवती महिला को पहले से ज्यादा खाना खाना चाहिए लेकिन समझदारी से 2 लोगों का खाना का मतलब 2 गुना खाना नहीं बल्कि 2 गुना पोषण होना चाहिए
3: अच्छा
4: दिन में 3 बार भरपूर भोजन और 2 बार हल्का पौष्टिक नाश्ता जरूरी है। जैसे सुबह के नाश्ते में गुड़, चना, मूंगफली, भुनी हुई लैया, चना और रागी के लड्डू बहुत अच्छे होते हैं। ये चीजें ताकत देती हैं और बच्चे की ग्रोथ में मदद करती हैं। खाने में थोड़ा अतिरिक्त तेल या घी भी होना चाहिए ताकि शरीर को जरूरी ऊर्जा मिल सके। आंगनवाड़ी केंद्र से जो पोषाहार मिलते हैं
3: जी
4: हाँ, उसे जरूर लेना चाहिए और बताई गई मात्रा के अनुसार ही उसका सेवन भी करना चाहिए। ये खास तौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए ही तैयार किया गया होता है। तो कुल मिलाकर खाने में स्वाद भी होना चाहिए और सेहत भी।
3: क्या बात है। टीकन भाभी, गर्भवती महिलाओं में वजन को लेकर अक्सर चिंता रहती है। कुछ का वजन कम हो जाता है तो कुछ का ज्यादा हो जाता है। ऐसे में खाने पीने का ध्यान कैसे रखा जाए?
4: देखिए, हर महिला का शरीर अलग होता है
3: जी
4: हाँ, और उसी हिसाब से उसे पोषण की जरूरत भी होती है। तो अगर किसी महिला का वजन कम है तो उसे दिन में कम से कम 1 बार ऐसा नाश्ता करना चाहिए जिसमें ताकत हो, जैसे तिल के लड्डू, मुरमुरा बेसन का लड्डू, मूंगफली, गुड़पट्टी, लावा, सीरा वगैरह। ये चीजें शरीर को ऊर्जा देती हैं और बच्चे की ग्रोथ में मदद भी करती हैं। अब अगर किसी महिला का वजन पहले से ही ज्यादा है तो उसे थोड़ा हल्का और संतुलित खाना खाना चाहिए।
3: अच्छा।
4: जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, ताजे फल, हल्की दालें और साबुत अनाज में बाजरा और रागी। अगर दूध पीना है तो बिना मलाई वाला पिएं और चीनी का सेवन बहुत कम करें। इससे वजन भी कंट्रोल रहेगा और पोषण भी पूरा मिलेगा।
3: जी डीकन भाभी, अब बात करते हैं उस पोषण की जो गर्भावस्था के दौरान बच्चे के विकास और माँ के वजन को सही तरीके से बढ़ाने में मदद करता है। रोजाना खाने में क्या क्या शामिल करना चाहिए, जरा ये भी बता दें।
4: गर्भावस्था में बच्चे का विकास और माँ की सेहत दोनों इस बात पर निर्भर करते हैं कि वो क्या खा रही है। रोज खाने में प्रोटीन से भरपूर चीजें जरूरी होनी चाहिए, जैसे गाढ़ी दालें, फलियां, सोया, दूध, दही, पनीर, चने, मूंगफली और अंकुरित अनाज। ये सब चीजें शरीर को ताकत देती हैं और बच्चे के अंगों के विकास में भी मदद करती हैं। अगर परिवार मांसाहारी है तो खाने में अंडा या थोड़ा सा मीट भी शामिल किया जा सकता है। इससे प्रोटीन की मात्रा और भी अच्छी हो जाती है। अब बात करें आयरन की, तो बहुत सी महिलाओं को खून की कमी हो जाती है जिससे थकान रहती है और बच्चे भी कमजोर हो सकते हैं। तो इसके लिए विटामिन सी से भरपूर फल जैसे अमरूद, नींबू, संतरा, मौसमी फल खाना चाहिए जो खट्टे हों। साथ ही दालें, फलियां, चना और मूंगफली भी आयरन के अच्छे स्रोत हैं। आयरन की गोली अगर डॉक्टर ने दी है तो उसे सादे पानी के साथ लेना चाहिए, दूध या चाय के साथ नहीं, ताकि उसका असर सही हो। तो कुल मिलाकर खाने में रंग बिरंगे फल, हरी सब्जियां, प्रोटीन और आयरन से भरपूर चीजें होनी चाहिए।
3: बिल्कुल सही कहा आपने भाभी। अक्सर महिलाएं यही सोचती हैं कि रोटी, चावल और दाल यही काफी है, लेकिन आपने पहले भी कहा था कि गर्भवती महिला को अपने आहार में विविधता लानी चाहिए। तो जरा बताइए कि रोज के खाने में क्या क्या चीजें शामिल करना चाहिए।
4: गर्भवती महिला का खाना जितना रंग बिरंगा और पोषक होगा उतना ही अच्छा रहेगा। रोटी, चावल, दाल और मौसमी सब्जियाँ तो जरूरी ही है, लेकिन इनके अलावा भी कुछ चीजें हैं जिन्हें रोज के खाने में शामिल करना जरूरी है। जैसे हरी पत्तेदार सब्जियाँ, जैसे चौलाई, मेथी, पालक शरीर को आयरन और फाइबर देती हैं। फिर पके हुए रंगीन फल जैसे आम, गाजर और कद्दू जैसी सब्जियाँ भी बहुत फायदेमंद होती हैं। दही और मट्ठा भी रोज के खाने में होना चाहिए, ये पाचन को ठीक रखती है और शरीर को ठंडा रखती है। मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी और कोदो भी जरूर खाना चाहिए। ये अनाज ताकत देते हैं और लंबे समय तक पेट भरा रहता है। इन्हें पकने से पहले 5-6 घंटे भिगोकर रखना चाहिए ताकि जल्दी पक जाए और पचने में भी आसानी हो। तो कुल मिलाकर रोज के खाने में कम से कम 5 अलग अलग तरह के खाद्य समूह जरूर शामिल करना चाहिए। इससे माँ को पूरा पोषण मिलेगा और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा।
3: क्या बात है भाई, सारी तरह की सब्जियाँ हो गई और कुछ पीले फल हो गए, दूध हो गया, मोटा अनाज हो गया, मतलब कुल मिला के कई तरीके के भोजन हमें हमारी गर्भवती महिलाओं को देने होते हैं।
4: बिल्कुल
3: टीकन भाभी, बहुत सी महिलाएं नहीं जानती कि फॉलिक एसिड, आयरन और कैल्शियम की गोलियां कब और कैसे लेनी चाहिए। आप जरा समझाइए कि इनका सही तरीका क्या है।
4: देखिए, जब गर्भावस्था की शुरुआत होती है यानी पहले 3 महीने, तब रोजाना 1 फॉलिक एसिड की गोली खाना बहुत जरूरी होता है। ये बच्चे के दिमाग और रीढ़ की हड्डी के विकास में मदद करती है। वहीं 4वें महीने से लेकर डिलीवरी तक रोजाना 1 आयरन की गोली लेनी चाहिए, जिसे हम IFA कहते हैं। ये गोली खाने के बाद नींबू पानी या सादे पानी के साथ भी ले सकते हैं, ताकि शरीर में खून की कमी ना हो। अगर किसी महिला को पहले से एनीमिया है तो उसे दिन में 2 बार IFA की गोली लेनी चाहिए। साथ ही 4वें महीने से कैल्शियम की भी 2 गोलियां लेनी चाहिए, 1 सुबह और 1 शाम को। लेकिन ध्यान रहे, आयरन और कैल्शियम की गोली एक साथ नहीं खानी चाहिए, इसके बीच कम से कम 2 घंटे का अंतर होना चाहिए। आयरन की गोली दूध, चाय या कोल्ड ड्रिंक के साथ नहीं लेनी चाहिए, इससे उसका फायदा नहीं मिलता है। डिलीवरी के बाद भी लगभग 6 महीने तक ये दोनों गोलियां जारी रखना चाहिए, तभी माँ और बच्चा दोनों तंदुरुस्त रहेगा।
3: टीकन भाभी, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी छोटी छोटी बातों की जो गर्भवती महिलाओं की सेहत पर बड़ा असर डालती है, जैसे साफ सफाई, नींद, तनाव और खान पान की आदतें। आप जरा बताइए कि इन बातों का ध्यान कैसे रखा जाए।
4: दीदी
3: जी,
4: ये बातें सुनने में तो छोटी लगती हैं, लेकिन असर बहुत बड़ा होता है। सबसे पहले तो खाना बनाने और खाने से पहले साबुन से हाथ धोना बहुत जरूरी है। साफ बर्तन, ताजा खाना और साफ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, वरना संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। गर्भवती महिला को रात में कम से कम 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए और दिन में भी थोड़ा आराम करना जरूरी है। चाय कॉफी कम पीनी चाहिए और धूम्रपान तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तनाव, चिंता और गुस्से से दूर रहना चाहिए। जितना मन शांत रहेगा उतना ही गर्भ में पल रहा बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। साथ ही एक जरूरी बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, आयोडीन युक्त नमक का ही इस्तेमाल करें, इससे बच्चे का मानसिक विकास सही तरीके से होता है।
3: अच्छा भाभी, बहुत सी महिलाएं सोचती हैं कि बस खान पान ठीक हो जाए तो सब सही रहेगा, लेकिन शरीर की देखभाल और कुछ जरूरी दवाइयों का सही समय पर लेना भी तो बहुत जरूरी होता है।
4: बिल्कुल, गर्भावस्था में सिर्फ पोषण ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की आदतों पर भी खास ध्यान रखना चाहिए। हल्का फुल्का व्यायाम जरूर करें, जैसे टहलना या हल्की स्ट्रेचिंग, इससे शरीर चुस्त रहता है और डिलीवरी भी आसानी से हो जाती है। लेकिन भारी सामान बिल्कुल ना उठाएं, इससे कमर और पेट पर जोर पड़ सकता है। खाना खाने के तुरंत बाद नहीं सोना चाहिए। गर्भावस्था के दूसरे तिमाही में एक अल्बेंडाजोल की गोली जरूर लेनी चाहिए, लेकिन ये स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर की निगरानी में ही लें। जैसे जैसे डिलीवरी का समय नजदीक आता है, वैसे वैसे मानसिक और शारीरिक तैयारी जरूरी हो जाती है। घर वालों से बात करें, जरूरी सामान तैयार रखें और अस्पताल जाने की योजना पहले से बना लें।
3: श्रोताओं, आज का हमारा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई यही समाप्त होता है। हमने जाना कि गर्भावस्था के दौरान सही खान पान, साफ सफाई, आराम और जरूरी दवाइयाँ माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। अब मुझे इजाजत दीजिए, अगली बार फिर मिलेंगे और चर्चा करेंगे माँ और बच्चे की सेहत से जुड़ी और भी जरूरी बातों पर। तब तक स्वस्थ रहिए, पर जाने से पहले अपनी सेहत के शपथ लेकर जाइए।
1: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का, सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे
5: क्योंकि
1: सेहत ही असली धन है सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा सेहत सही तो लाभ कई हम सफर पर निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं। नए स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं। तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य अपने शरीर अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझकिए नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक के विकल्प जानें। गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाए।
6: सरिता उम्र से पहले बड़ी हो गई है। किताबों से ज्यादा किताबों पर लगी धूल उसे नजर आने लगी है। घर की पूरी जिम्मेदारी उसने अपने नाजुक हाथों में ले ली है क्योंकि सरिता की मां को टीबी है। न जाने कितने बच्चों का स्कूल छूट जाता है टीबी की वजह से। टीबी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसे हराया ना जा सके। जरूरत है तो उसे पहचानने की और पूरे इलाज की।

0: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
2: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
1: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए।
2: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
1: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत। आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण पूरा करने के लिए दिसंबर माह को टीकाकरण उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। अपने 5 साल तक के नन्हे मुन्ने बच्चों को 12 खतरनाक बीमारियों से बचाइए और उनके भविष्य को सुरक्षित कीजिए। याद रखिए, 5 साल 7 बार 12 बीमारियों पर वार। यदि छूटे न टीका एक भी बार, टीका लगवाने के लिए आपके आस पड़ोस में ANM बहन जी द्वारा हर बुधवार व शनिवार में आयोजित किए जा रहे टीकाकरण सत्रों में जाए व अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जनहित में जारी।
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
2: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में GMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
1: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
2: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
1: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारीयानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
3: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग 1 चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
0: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 9260-981-976, 9260-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
5: अरे सुना?
6: क्या?
5: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
6: वाओ!
5: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें।
2: तो सुनना ना भूलें, 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु

0: नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता साथ में आरजे अंशिका, यानी मैं हूँ आपकी आरजे समता
1: और मैं हूँ आरजे अंशिका।
0: तो आपका बेहद पसंदीदा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है
2: सुन सहेली।
0: जी हाँ दोस्तों, और आ गए हैं आज, जैसा कि आप सभी को पता होता है कि आज है हमारा कौन सा दिन है, शनिवार, यानी कि सैटरडे। सैटरडे के दिन हम लेकर के आते हैं बहुत सारी मस्ती धमाल को लेकर के, क्योंकि आज के दिन हम केवल करते हैं आपसे ज़्यादा बातें नहीं, ज़्यादा गाने सुनाने का वादा। क्योंकि जब ज़्यादा जिस दिन बातें हो जाती हैं उस दिन आपकी मनपसंद बातें नहीं हो पाती हैं, मतलब आप चाहते हैं कि हमें गाने सुनने हैं और हमें चैट बॉक्स में बातें करनी होती हैं। तो भाई एक दिन कहते हैं ना कि जब हमारी क्लास में मैम लोग नहीं आती है तो हम लोग कितना फ्रीली महसूस करते हैं ना कि आज मैम की छुट्टी है, आज हम जो करेंगे मस्ती करेंगे। और जब हमारी सब्स्टिट्यूट वाली मैम आ जाती हैं और वो ये कहती हैं कि आप लोगों को जो भी काम करना है करो लेकिन आवाज़ मत करना, तो भाई कुछ ऐसा ही दिन आज का दिन होने होता है। सैटरडे के दिन हम अपनी बातें करते हैं बंद, यानी कि हम लोग लेते हैं छुट्टी और आपको
1: दे देते हैं टाइम।
0: ये मुझे नींद क्यों आ रही है?
1: ऐसा कुछ, ऐसे कहते हैं ना माहौल का असर होता है, एनवायरनमेंट का,
0: तो शांति शांत शांत से बैठे रहते हैं ना तो उसमें माहौल का असर कुछ ऐसा हो जाता है। लेकिन मैं कहाँ थी, मैं थी कि आज आपको करनी है फुल टास्क मस्ती, क्योंकि आज है आपका दिन, यानी कि आपका अपना दिन सैटरडे, आपका गेम का दिन, लव राशिफल और भी बहुत कुछ। तो आइए फटाफट विश कर देते हैं एक साथ एक ही फ्रेम में दोपहर में।
1: शुभ दोपहरिया, शुभ दोपहरिया लिसनर्स, और मौसम है जबरदस्त, हम भी हैं बहुत मस्त, क्योंकि आज का दिन ही है जबरदस्त। और दिन जबरदस्त इसलिए है क्योंकि आज है हमारा सैटरडे और आज हम बात करेंगे सबसे पहले पोएट्री के बारे में, जो कि आज होती है प्यार पे।
0: प्यार पे,
1: प्यार पे,
0: प्यार वो एहसास होता है जो भूले ना भुलाए। चलो
1: चलो तो प्यार से शुरुआत कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैम ने कहा कि प्यार वो एहसास है जो भूले नहीं भूलता, तो कुछ आज मेरी जो लाइन है वो भी प्यार पे होने वाली है। दिल तुम्हारी ही तरफ बढ़ता है, दिल तुम्हारी ही तरफ बढ़ता है, कितना भी रोकें, कितना भी रोकें क्या करें ये रुकता नहीं है, कितना भी रोकें क्या करें ये रुकता नहीं है, प्यार वही होता है जो कभी झुकता नहीं है। ना झुकेंगे ना रुकेंगे, ना झुकेंगे ना रुकेंगे, हम तो सनम तुम्हें पाकर ही रहेंगे, तुम चाहे जो भी कर लो, तुम चाहे जो भी कर लो, हम तो हाले दिल बयां करके ही रहेंगे।
0: सिचुएशन का फायदा उठाया?
1: मैंने सिचुएशन का कोई फायदा नहीं उठाया, बिल्कुल नहीं। मैंने कोई सिचुएशन का फायदा नहीं उठाया
0: जी।
1: देखा मैं
0: आगे,
1: अब आगे मैं क्या बोलने वाली थी, हाले दिल तो हम बयां करके ही रहेंगे। तो आइए कुछ ऐसी ही प्यारी प्यारी और बहुत ही मीठी मीठी बातों के साथ करते हैं मीठी मीठी सी शुरुआत, एक मीठी मीठी आवाज के साथ,
0: मीठी मीठी नींद के साथ,
1: मीठी मीठी नींद के साथ।
0: हाँ। जब मीठी मीठी नींद आती है ना तो कितना अच्छा लगता है ना, कि जैसे लेटो और नींद आ जाए तो वो लगता है कि बस हम जन्नत में पहुंच गए यार, और कुछ नहीं चाहिए होता है। और ईश्वर का बहुत शुक्राना करना चाहिए कि जिसको अच्छी से भूख लगे, जिसको अच्छी सी नींद आए, जिसको अच्छे से खाना मिले, जिसको अच्छे से सोना मिले, जिसको अच्छे से कपड़े मिले, उस समय ईश्वर का बहुत बहुत बहुत शुक्राना करना चाहिए। क्यों अंशिका?
1: बिल्कुल,
0: चले
1: चले।
0: तो प्यारी सी पोयम जो कि आज लव बेस पे है, आइए आपको सुना देते हैं। प्यार वो एहसास है जो शब्दों में ना आए, प्यार वो एहसास है जो शब्दों में ना आए, एक अनकहा सा गीत जो धड़कन गुनगुनाए, बिन कहे ही दिल की हर बात जान लेना, खुशियों की छाव में हर गम को भुलाए, एक मोड़ पर दो अजनबी जो पास आ जाएं, एक मोड़ पर दो अजनबी जो पास आ जाएं, जैसे बंजर सी जमीन पर बादल छा जाएं, तेरी मुस्कुराहट में ही अब रब दिखता है, तेरी मुस्कुराहट में ही अब रब दिखता है, तुम जिंदगी में आकर जैसे रूह में समा गए, नहीं है कोई वादा या सिर्फ एक कसम, नहीं है कोई वादा या कोई सिर्फ एक कसम, साथ चलेंगे हमेशा चाहे रास्ते हों बेदम, हाथों में हाथ हो और निगाहों में तेरा चेहरा, मुश्किलें भी हार मानेंगी जब साथ होंगे हम, प्यार नाम है समंदर से गहरे उस विश्वास का, हर सुबह की पहली किरण और सुकून भर

0: रात का, खामोशी में भी जो एक दूसरे को सुन ले, खामोशी में भी जो एक दूसरे को सुन ले, सच्चा प्रेम तो तोहफा है खुदा की सौगात का।
1: वाह, बहुत ही प्यारी और बहुत ही अच्छी सी ये पोएम थी। और बिल्कुल कहते हैं ना, कई बार जब दिल में जो होता है वो लफ्ज़ों में बयां हो जाता है, कुछ वैसा ही था कि बहुत ही प्यारी पोएम, बहुत ही अच्छी। तो आइए अब बढ़ते हैं आज के रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ की तरफ, जो कि प्यार को लेकर की है। जब भी हम किसी से हमें प्यार हो जाता है तो अक्सर पूछा जाता है कि प्यार की परिभाषा क्या है। आपने ये सभी को कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछते सुना होगा कि प्यार की परिभाषा क्या होती है।
2: प्यार क्या है,
1: क्या है प्यार, क्या है प्यार की परिभाषा। तो मुझे ऐसे लगता है कि सभी के लिए कहीं ना कहीं प्यार की परिभाषा अलग होती है, लेकिन एक जो सेट मुझे लगता है परिभाषा प्यार की होनी चाहिए, वो होनी चाहिए रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट के साथ में भरोसा। ये होती है प्यार की एक सेट परिभाषा, कि आप जिससे भी प्यार करते हैं सबसे पहले आपको उसे रिस्पेक्ट देनी होती है, और दूसरे पॉइंट पर उस पर विश्वास करना होता है। जिस भी रिश्ते में ये दो चीज़ें होती हैं वो कभी नहीं टूटता। और रिस्पेक्ट देने का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी की सिर्फ अच्छी चीज़ों को रिस्पेक्ट देंगे। रिस्पेक्ट देने का मतलब होता है कि अगर वो लड़ाई भी कर रहे हैं तो उसकी उस नाराज़गी को भी रिस्पेक्ट करेंगे, उसकी उस लड़ाई को भी रिस्पेक्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट्स को भी रिस्पेक्ट करेंगे।
2: उनकी ख़राब चीज़ों को भी एक्सेप्ट करना, और उनके प्यार से उनकी अच्छी आदतों से तो प्यार होता ही होता है, लेकिन उनकी ख़राब चीज़ों को भी अगर रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप उनसे सच्चा लव करते हैं। एग्जैक्टली, चाहे वो फीमेल के तरफ से हो चाहे वो मेल की तरफ से हो।
1: बिल्कुल, तो वही आज के लिए है कि प्यार बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा होता है। जिनकी लाइफ में नहीं होता है उन्हें इंतज़ार होता है, और जिनकी लाइफ में जिन्हें भी मिल चुका है उन्हें उस सहेज कर रखना चाहिए, क्योंकि जब एक बार कहते हैं ना कि हम खो जाएंगे तो दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, कुछ वैसा ही होता है कि अगर खो जाता है तो आसानी से नहीं मिलता, और जिन्हें मिल जाता है उन्हें संभाल के रखना चाहिए।
2: बिल्कुल, तो इस प्यार भरी पोयम के साथ में और रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ के बाद में आइए चलते हैं इस प्यार से एक गीत को सुनते हैं, और गीत के बाद आएंगे सीधे सीधे कुछ लव ओटीटी सीरियल्स के बारे में बात करेंगे, एंड आज बहुत कुछ है, यानी कि लव राशिफल और आपका प्यार भरा गेम जो कि हम हमेशा से लेके आते हैं, लेकिन हम इस ब्रेक के बाद आएंगे सीधे चैट बॉक्स की ओर।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
7: गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
8: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में आज अंशिका और फटाफट शुरू करते हैं आपके OTT सीरियल्स को।
9: तो आइए सबसे पहले आज बात कर लेते हैं कुछ शोज के बारे में जो कि OTT पर भी आने वाले हैं और एप्स पर भी। सो इस हफ्ते हमें एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज मिलने वाला है क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हो रही है न्यू शोज।
8: ओके,
9: जो कि हॉटस्टार पे सबसे पहले आने वाला है, जो कि कहानी है नूर जहां की
8: कहानी।
9: यस मैम।
8: ओके,
9: क्योंकि नाम ही है शो का नूर जहां। और मैं आपको बता दूं कि इस सेट को जो रेडी किया गया है उसमें 700 से ज्यादा लोग लगे हैं इसे रेडी करने के लिए, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा, यानी कि बताया जा रहा है कि कम से कम 4-6 महीने की पूरी कड़ी मेहनत के बाद इस सेट को रेडी किया गया है
8: जी।
9: जो कि पूरा नूरजहां के टाइम का, मतलब वही सब आपको इसमें दिखाया जाएगा और बहुत ही प्यारी और हिस्ट्री से जुड़ी हुई ये लव स्टोरी होने वाली है। सो बहुत ही अच्छी होने वाली है। हॉटस्टार ऐप पे आप इसे देख सकते हैं। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट शो की, जो कि वूट ऐप पे आने वाला है, जिसका नाम है शहनाई।
8: ओके,
9: शहनाई
8: क्या है भाई, मतलब कभी नूरजहां तो कभी शहनाई, कुछ बढ़िया है ना
9: यूनिवर्स।
8: सब कुछ ठीक है
9: मैम, क्योंकि अगर कुछ ठीक नहीं होगा तो वो सबसे पहले आपको ही पता चलेगा। तो आइए बात करते हैं शो को लेकर के कि शहनाई एक म्यूजिकल ड्रामा होने वाली है और साथ ही साथ में ये दिखाने वाली है परिवार की सिचुएशंस को, यानी कि दो ऐसे परिवार जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं वो कैसे मिलते हैं और फिर कैसे दो लोगों की शादी कहीं ना कहीं होती है। सो इसमें अरेंज मैरिज को दिखाया गया है कि जब अरेंज मैरिज होती है और वो भी तो डिफरेंट बिल्कुल परिवारों में होती है, दो अलग अलग थिंकिंग के, तो वो कैसी होती है और क्या होता है, ये बहुत ही प्यारी।
8: तो ये तो देखने वाला है शहनाई।
9: बिल्कुल मैम।
8: और किस पे आ रहा है?
9: वूट ऐप पे।
8: ओके,
9: और अब आते हैं कॉमेडी पे, क्योंकि अभी तक हमने काफी बातें कर ली सिंसेरिटी वाली, अब थोड़ी कॉमेडी कर लेते हैं। तो इस कॉमेडी शो का नाम बड़ा प्यारा है।
8: हाँ।
9: सासू जी तूने ये क्या किया।
8: ओह माय गॉड,
9: बहुत प्यारा नाम। तो ये कॉमेडी इसलिए होने वाली है क्योंकि ये इस साल Z5 ऐप पे आने वाला है और ये आपको सास बहू के खट्टे मीठे और प्यारे से रिश्ते के बारे में बताएगा और साथ ही साथ ये भी बताएगा कि किस तरीके से, और जहाँ ये रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है वहीं थोड़ा सा नाजुक भी होता है और दोनों को संभालना चाहिए, यानी कि सास को भी और बहू को भी। सो ये थी कुछ लेकर के अपडेट्स अभी सीरियल्स को लेकर के। अभी हमारे पास कुछ OTT सीरीज हैं जो कि हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज सैटरडे है तो मुझे से कभी कभी मैं होता है ना खाने की क्रेविंग होती है। वैसे आज मुझे एक क्रेविंग और हो रही है,
8: गाना सुनने की।
9: गाना सुनने
8: मुझे पता था, वो तुम्हारा मूड ही मुझे बता रहे हैं आज कभी शहनाई तो कभी नूर जहां तो कभी शादी तो पता नहीं क्या क्या, तो वो मुझे लगा थोड़ा सा मेरा फील हुआ अंदर से मुझे कि तुम आज गाना सुनने की तुम्हें क्रेविंग हो रही है। पता है हम लोगों को रात में, आजकल ही हम लोग बात कर रहे थे ट्विंकल और हम लोग को रात में ना 12 बजने के बाद में हम लोग को कुछ मीठा खाने की क्रेविंग बहुत होती है। आई थिंक सभी को होती है,
9: सभी को होता
8: है ना, तो मन करता है कि यार कुछ मीठा मिल जाए तो मजा आ जाए, है ना। तो ऐसे ही आज इनको गाना सुनने की क्रेविंग
9: हो रही है, तो आइए क्रेविंग को शांत कर लेते हैं, क्योंकि क्रेविंग कभी नहीं होनी चाहिए, चाहे खाने की हो चाहे गाने की हो, दोनों नहीं होनी चाहिए। तो आइए सुन लेते हैं इस प्यारे से सॉन्ग को, और इस प्यारे से सॉन्ग के बाद में हम आएंगे और सीधे चलेंगे हमारे चैट बॉक्स में।
8: ओके,
9: स्टे ट्यून्ड।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584। 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है आज अंशिका, यानी मैं हूँ आपकी आज समता,
2: मैं हूँ आज अंशिका।
1: तो फटाफट शुरू करते हैं आज के बचे कुछ कुछ OTT सीरियल्स के बारे में, लेकिन उसके पहले अंशिका मैं चाहती हूँ कि हम लोग चैट बॉक्स में चलें।
2: जी मैम, तो सबसे पहले मैं चैट बॉक्स में देख रही हूँ, आ चुकी है हरिश्चंद्र सविता जी। आ चुके हैं हरिश्चंद्र सविता जी, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आपको भी। और इसी के साथ नागेश्वर जी आ गए हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, नमस्कार,
1: नमस्कार आपको भी।
2: और लिख रहे हैं लेकिन यहाँ तो सब उल्टा है, जिस दिन मैम नहीं आती हैं तो स्कूल में अच्छा नहीं लगता।
1: ओह माय गुडनेस, थैंक यू सो मच। यानी ये हमारे सबसे फेवरेट बच्चों में से एक है, जब मैम नहीं आती है तो वो बच्चे उदास हो जाते हैं।
2: और उसके बाद में नागेश्वर जी लिख रहे हैं राइट, तो उन्हें हमारी कोई बात अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ महेंद्र जी जो कि हमें राजस्थान से सुनते हैं, सॉन्ग्स के लिए लिख रहे हैं, उन्हें भी सॉन्ग्स अच्छे लगे। आशु जी आ गई हैं जो कि लिख रही हैं शुभ दोपहरिया दोनों आरजेस को।
1: जी,
2: और इसी के साथ नागेश्वर जी लिख रहे हैं सासू जी तूने ये क्या किया, सासू जी देख रहे हो आपकी बहू कितनी समझदार हो गई है, कितनी प्यारी बातें करती है।
1: जी
2: ओके, थैंक यू। और प्रीति जी लिख रही हैं गुड आफ्टरनून आरजेस, गुड आफ्टरनून आपको भी,
1: गुड आफ्टरनून प्रीति जी।
2: और इसी के साथ अरविंद जी आ गए हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून आरजे मैम, गुड आफ्टरनून आपको भी। और अगेन अगेन अगेन अगेन
1: आशु जी मुझे दिख रही हैं।
2: जी मैम, आशु जी ने फिर लिखा है गुड आफ्टरनून नागेश्वर जी को लिखा है उन्होंने।
1: ओके,
2: और अरविंद जी लिख रहे हैं उसने जाते हुए कहा था कि हम कभी नहीं मिलेंगे, और आज वर्षों बाद मिले तो दोनों की आंखें खामोश।
1: ओह माय गॉड,
2: ओह माय गॉड। तो आप लोग भी शायरी करने लगे हैं, शायराना, यही होता है, असर होता है, जैसे हम कहते नहीं है मैम कि सोहबत का असर हो गया है, वैसा होता है,
1: असर हो रहा है। एक गाना है बहुत ही प्यारा सा, दिलों पे असर हो रहा है, कुछ ऐसा गाना है,
2: दिलों पे असर हो रहा है, असर तो हो रहा है।
1: चले चले चले अपना काम करें। हाँ।
2: काम करते हैं
1: जी,
2: काम ये है मैम, मस्ती भी नहीं करने देती है। चलिए कोई बात नहीं, तो आज आपको जो बची कुची कहते हैं ना, कि जो बची कुची चीजें हमारे पास हैं, लेकिन बची कुची नहीं है, बिल्कुल रिफ्रेश है। आपने कभी सुना होगा कि जब भी हम काला कोट ऐसी कोई बात करते हैं तो काले कोट से क्या याद आता है?
1: काले कोट से वकील याद आते हैं, काले कोट से भूत याद आते हैं, और काले कोट से बस काला कोट उसी में यूज करते हैं।
2: मैम दोनों जगह जो पहुंची है उसमें से एक जगह जो थी वो बिल्कुल करेक्ट पहुंची,
1: वकील
2: नहीं भूत।
1: ओके,
2: तो आज हमारी जो ये सबसे पहली सीरीज है वो है कालकूट सीजन 2। अगर आपने कालकूट सीजन 1 देखी होगी तो आपको ये देखने में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ये है थ्रिलर सीरीज।
1: ओके,
2: जो इसी हफ्ते इसका सीजन जो है न्यू सीजन वो रिलीज हुआ है जियो सिनेमा पे, आप इसको जरूर देखिए, क्योंकि ये सस्पेंस से भरा हुआ है। पहले मर्डर होता है और फिर पता चलता है कि मर्डरर कौन है। लेकिन जब तक ये पता चलता है कि मर्डरर कौन है तब तक इतनों पे शक हो चुकता है, अच्छा ये मर्डरर है, अच्छा ये मर्डरर है,
1: होता है होता है होता है, जब तक सच्चाई नहीं पता चलती है ना तब तक ऐसा होता है।
2: और फिर क्लियर में जिसका नाम आता है वो देख के सबकी मतलब सट्टे पिट्टी गुम हो जाती है, क्योंकि कोई भी नहीं सोचता है कि वो हो सकता है। तो बहुत मजा आने वाला है, आप जरूर इसको देखें। आइए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, जो है द नाइट मैनेजर। द नाइट मैनेजर पार्ट 3 के साथ डिज्नी हॉटस्टार पे आ चुका है, जो कि अनिल कपूर और आदित्य रॉय कपूर की ब्लॉकबस्टर सीरीज है। और इसका बहुत ही बड़ा रोमांचक चैप्टर जो है वो इसी हफ्ते रिलीज हुआ है अपने नए सीजन के साथ।
1: ओके,
2: तो इसमें भी यही है कि अगर आपने 2 और 1 देखी होगी तो आपको 3 देखने में बहुत मजा आएगा। लेकिन अगर आपने 2 और 1 नहीं भी देखी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि 3 जब आप देखेंगे तो वो पूरे उसकी कहते हैं ना समरी है, बहुत मजा आएगा आपको। आइए अब बात कर लेते हैं जो कि सोनी लिव पे रिलीज होने वाली है नई सीरीज, जिसका नाम है स्कैम।
1: ओके,
2: ये फ्रेंचाइजी है जो कि हंसल मेहता की बहुत ही बड़ी वेब सीरीज है, और इसी हफ्ते इसने सोनी लिव पर रिलीज हुई है।
1: ओके,
2: ये रियल लाइफ बेस्ड है, रियल लाइफ में ये दिखाती है कि जो भी और कहीं ना कहीं चीजें हमें फेस करनी पड़ती हैं, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन किस तरीके से हमारे रिश्ते उस पर डिपेंड होते हैं। तो बहुत ही प्यारी है, आप इन्हें जरूर देखिएगा और इंजॉय करिएगा। आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा इनसे और बहुत कुछ एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। तो ये थी कुछ सीरीज हमारे पास आज के लिए और अभी के लिए।
1: अरविंद जी लिख रहे हैं संगत का असर है आरजे मैम।
2: ये तो अच्छी बात है कि आपका संग मतलब
1: नहीं, हमारा असर है उनके ऊपर,
2: हमारा असर है
1: जब हम लोग शायरी शायरी करते हैं ना वो वाला,
2: तो बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि कहते हैं ना कि जब एक दूसरे का असर हो जाता है तो अच्छी बात होती है।
1: एंड आरजे संता जी नमस्ते, एंड अंशिका जी शुभ दोपहरिया, सुन सहेली प्रोग्राम में आपका स्वागत है। एंड धर्मेंद्र जी हमें आपका स्वागत करना है, आपका भी स्वागत है।
2: स्वागत स्वागत स्वागत। और इसी स्वागत के साथ मुझे लग रहा है कि एक और सुन लेना चाहिए।
1: क्या सॉन्ग? गाना फिर से
2: मैं एक सॉन्ग, क्योंकि देखिए एक दिन क्या होता है ना कि एक दिन हमें मिलता है सिर्फ, जिस दिन हम सॉन्ग सुन सकते हैं और सुना सकते हैं। और ऐसा हमारे लिसनर्स को भी लग रहा होगा, लेकिन अब वो हमसे कह तो नहीं सकते, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपकी दिल की बात समझते हैं।
1: चलो कोई नहीं, आज सुना देते हैं क्योंकि मंडे से फिर हमें अपने सिलेबस पे आना है। तो आज सैटरडे है तो सैटरडे के दिन मस्ती कर लेते हैं। एंड अब मैं लौटूंगी सीधे सीधे लव राशिफल की ओर, एंड आपका फेवरेट गेम शो। तो भाई बस हम एक ही गाना सुनाएंगे अंशिका की, वो भी जिद है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं। एक गाने के दरमियान हम आ जाएंगे आपके लव राशि फल को सुनाने के लिए, इसलिए आप बने रहे हमारे साथ 89.6 FM पे। मैं हूँ आपकी आरजे समता
2: और मैं हूँ आरजे अंशिका।
1: स्टे ट्यून्ड।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में आरजे अंशिका। तो चलिए चलिए चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं अभी हमारी लव राशिफल को लेकर के, क्योंकि लव राशिफल हमारा स्टार्ट कर देते हैं एंड गेम भी हमारा स्टार्ट हो गया है।
6: बिल्कुल, तो आइए लव राशिफल में सबसे पहले चलते हैं मेष राशि वालों की तरफ और बताते हैं कि आज उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। सो मेष राशि वालों के लिए है कि आज पार्टनर के साथ आपका रिश्ता एक नए और परिपक्व मोड़ पर पहुंच सकता है। यदि आप किसी गंभीर रिश्ते में हैं, तो आज साथी के लिए कोई प्रयास या उपहार ले सकते हैं, जिससे आपका आपसी लगाव और प्यार बढ़ेगा। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। और आइए अब बढ़ते हैं वृष राशि वालों की तरफ। आज आपका मूड बहुत ज्यादा भावुक और रोमांटिक रहने वाला है। आप पार्टनर के साथ अपने भविष्य की योजनाओं पर किसी नए पहलू को लेकर सकारात्मक चर्चा कर सकते हैं, जिससे आपका आपसी तालमेल बेहतर होगा। क्या बात है यार, सभी राशियों में आपसी तालमेल बेहतर हो रहा है,
5: बहुत ही प्यारा।
6: पुराने मतभेद सुलझाने के लिए एक अच्छा दिन खुद चुने। अच्छा है, वेरी गुड। आइए अब चलते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। प्रेम संबंधों के लिहाज से आज का दिन खुशियां लेकर आया है। जीवन साथी या लव पार्टनर का पूरा प्यार और सपोर्ट आपको मिलने वाला है। ओके, ठीक है। किसी छोटी पार्टी या डिनर डेट पर जा सकते हैं।
5: किसका किसका किसका?
6: मिथुन राशि वालों।
5: ओह माय गॉड, मुझे तो बड़ा इंतजार रहता है कि काश ये कब मेरे में निकलेगा।
6: वैसे मैम ने मेरे मन की बात कह दी।
5: हाँ।
6: मैं भी यही कहने वाली थी कि मेरी राशि में कब निकलेगा।
5: वही तो,
6: मुझे भी कोई। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि वालों के लिए है कि आज आप कुछ चिंता में पड़ सकते हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, इसलिए थोड़ा सा टाइम निकालें और थोड़ी सी संजीदगी से सोचें, यानी कि गंभीरता से सोचें। पार्टनर की बातों को धैर्य से सुने और अपनी बातें उसे प्यार से समझाने की कोशिश करें। तो ये थी हमारी चार राशियों का लव राशिफल, जो कि थोड़ा सा अच्छा और थोड़ा सा, कहते हैं ना रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं, कभी खट्टे कभी मीठ।
5: कोई बात नहीं, अगर हम सुख दुख को अपना साथी मानते हैं ना, तो कभी खट्टी और मीठी दोनों बातों को भी एंजॉय करना चाहिए। तो पहला गाना किसका है अंशिका?
6: पहला गाना प्रीति जी का।
5: तो आइए प्रीति जी का पहला गाना सुनते हैं और उसके बाद हम चैट बॉक्स में ही आपको देंगे नेक्स्ट वर्ड। तो आपकी आंखें बनी रहेंगी चैट बॉक्स में और हमारे हाथ लगेंगे गाने को लगाने में। तो बस हम यू गए यू आए, स्टे ट्यून।
7: डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स

0: बिल्कुल नाम गुम जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। बहुत भी प्यारा सा सॉन्ग जो था प्रीति जी का। आइए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सॉन्ग की तरफ।
1: ओके, और उसके बाद में आऊंगी लव राशिफल की बची हुई चार राशियों को लेकर के। बची तो अभी आठ है, लेकिन मैं बोलूंगी चार, लेकिन करना पड़ेगा थोड़ा सा उसके लिए इंतजार।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: यस एग्जैक्टली, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं इस प्यारे से गाने के साथ में राशिफल को। तो भाई नेक्स्ट राशि हमारी आती है सिंह राशि वालों के लिए है। देखते हैं क्या कि अपनी लव लाइफ में आज शांति और सुकून का माहौल बना रहेगा। रिश्तों में उत्सव जैसा माहौल रहेगा और आप पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने जाएंगे। कन्या राशि वालों के लिए कि आज आप अपने प्रेम संबंध को अगले पड़ाव यानी शादी परिवार से मिलवाने वाला कुछ ऐसा काम गंभीरता से लेने वाले हैं। वेरी नाइस। तुला राशि वालों के लिए कि शुक्र की कृपा से आपके व्यक्तित्व में आज गजब का आकर्षण रहने वाला है। हालांकि काम की व्यस्तता के कारण पार्टनर के साथ आमने सामने का समय बिताने का मौका आपको मिलने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए है कि आज आपका प्रेम और पारिवारिक जीवन पूरी तरह से सामंजस्यपूर्ण रहने वाला है। शुक्र के प्रभाव से पार्टनर के प्रति आपका आकर्षण और बढ़ने वाला है। तो भाई ओवर थिंकिंग से बचें वृश्चिक राशि वालों। नेक्स्ट राशि हमारी आती है धनु राशि वालों के लिए है कि आपके सितारे आज प्रेम जीवन में स्थिरता और मजबूती का संकेत दे रहे हैं। चंद्रमा का आपकी ही राशि में होना आज आपको पार्टनर के साथ सीधी बात करने में प्रेरणा देगा। नेक्स्ट बताऊंगी मकर राशि और लेकिन उसके पहले चैट बॉक्स में आपने दिया है वर्ड की नहीं दिया अंशिका
1: धर्मेंद्र जी का,
0: फिर से बोलिए।
1: वर्ड दे दिया है मैंने और सॉन्ग जो है वो आ चुका है धर्मेंद्र।
0: धर्मेंद्र जी का गाना आ चुका है लेकिन उसके पहले ये तीन राशियों को और बता देते हैं ताकि आपके पास 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ गेम। मकर राशि वालों के लिए है कि यदि कुछ पिछले कुछ दिनों से आपकी लव लाइफ में कोई तनाव या बाधा चल रही हो तो आज बड़ी राहत मिल सकती है आपको। पार्टनर के साथ रिश्तों में सहजता आएगी। नेक्स्ट राशि यानी माय फेवरेट राशि कुंभ राशि। आज आपकी लव लाइफ में नई और ताजा ऊर्जा का संचार होगा। आप अपने रिश्ते को एक नई दिशा के लिए थोड़े दृढ़ नजर आ रहे हैं। ओके सिंगल जातकों को आज कोई खूबसूरत और आकर्षक प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है।
1: ओह माय गॉड।
0: नेक्स्ट है मीन राशि। लास्ट बट नॉट लीस्ट आज प्रेम जीवन में थोड़े धैर्य और समझदारी की जरूरत रहने वाली है। किसी बात पर विवाद करने के बजाय पार्टनर के नजरिए को भी समझने की कोशिश करें। बातचीत को सहज रखेंगे तो दिन का अंत

0: ये म्यूजिक आज भी जब चलती है कहीं पे तो पैर थिरकने लगते हैं और मन में गुदगुदी सी होने लगती है, क्योंकि कुछ मूवीज जो हैं बनाई गई थी वो उस मूवीज की जो चाल थी और ढाल थी और जो कमाल था वो मूवी आज भी हमारे दिलों में घर करती है, जिसमें हम आपके हैं कौन जो सबसे अच्छी मूवी, मतलब लगता है कि यार आज भी अगर आती है ना तो लगता है कि पूरी स्टार्ट टू एंड हम लोग देखें, क्यों अंशिका?
1: बिल्कुल मैम, पुरानी मूवीज की बात ही अलग होती है, मतलब अगर आपको पुरानी मूवीज मिल गई ना तो आपका दिन बन गया।
0: जिसमें हम आपके हैं कौन आती है, फूल और कांटे आती है, मैंने प्यार किया एंड हम साथ साथ हैं, राम तेरी गंगा मैली, तो मतलब ऐसी मूवीज ना ब्लॉकबस्टर मूवीज नहीं है, इसको ब्लॉकबस्टर छोटा नाम लगता है, ऐसी मूवीज को तो ना लगता है कि जैसे गोल्ड होता है ना, कि जो गोल्ड कभी भी आप ले के रख दो तो उसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती है, आप जब निकालोगे तब आपके लिए वो महंगा ही साबित होगा, सेम ऐसी होती है ये मूवीज। तो ऐसी मूवीज के साथ आज हम लेते हैं आपसे टाटा बाय बाय करेंगे और फिर मिलेंगे मंडे ऐसे ही 90s के सॉन्ग्स के साथ, क्योंकि हमारा ही एक स्पेशल शो ऐसा होता है जहां पर हम आपको सुनाते हैं 90s के सुपर से भी ऊपर हिट वाले सॉन्ग्स का कलेक्शन। तो हम लेके आते हैं फिर से आपके लिए मंडे, संडे का करें इंतजार और हमें दे थोड़ा सा ब्रेक। मिलेंगे मंडे सेम प्लेस सेम टाइम पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय
1: बाय दोस्तों।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838288386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब?
3: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
6: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
7: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
6: सच में? क्या खास है वहाँ?
7: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
6: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
7: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
6: और फोटोग्राफी वगैरह?
7: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
6: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
7: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
6: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

कहते हैं कि कुछ बातें जो हम जुबां से कह नहीं पाते उसे एक गाना कह जाता है। कुछ अल्फाज, कुछ जज्बात जिनको हम लफ्ज़ों में बयां नहीं कर पाते उन्हें एक संगीत कह जाता है। कभी कोई पुराना गाना बीते हुए दिनों में ले जाता है तो कभी कोई नया ट्रैक आज के दिन की बेहद खूबसूरत खूबसूरती बना देता है। और इसीलिए ये सिर्फ शो नहीं है, ये है आपके अपने फरमाइशों का कार्यक्रम कॉलर ट्यून गोंडा। हेलो, हाय, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आप सब सुन रहे हैं आपका अपना कॉलर ट्यून गोंडा विद राजुनति, और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM रेडियो ज्ञानस्थली गोंडा का अपना पहला FM, और आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी राजुनति मौजूद हैं। And of course, वक्त हो चला है आपके फरमाइशों का, फरमाइशों के सिलसिले को शुरू करने का। तो अपनी अपनी फरमाइशें हम तक भेज दीजिए। भेजना कैसे है? आपको करना है कॉल 6393316429 पर, आई रिपीट 6393316429। इस पर बस आपको करना है कॉल, अपनी फरमाइशें बतानी है, अपना नाम बताना है, अपने शहर का नाम बताना है, और हम तक आपकी फरमाइश, आपका डिमांडेड गाना प्लस कुछ आपके डेडिकेटेड मैसेजेस जो आप बताना चाहते हैं किसी और को कुछ खास सुनाना चाहते हैं, हम तक पहुंच जाएगा और हम उसे कर देंगे प्ले। तो फिलहाल आइए चलते हैं, ट्यून करते हैं पहला गाना जो कि है एक नेपाली सॉन्ग। हमारे देवी प्रसाद जी की फरमाइश पर एंजॉय करते रहिए और हम मिलेंगे अगले गाने को लेकर के, अगली फरमाइशों को लेकर के। आपकी फरमाइशों का मुझे है इंतजार, तो भैया देर मत कीजिए क्योंकि आज है आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा 3 से 4।

ये फरमाइश थी हमारे देवी प्रसाद जी की, नेपाली गाना था। और हमें पता है भाई, संगीत का कोई बॉर्डर नहीं होता, कोई भी ऐसी जगह नहीं हो सकती जहां पर संगीत आकर कह दे कि इसके आगे तो मुझे जाना ही नहीं है। तो हम बॉर्डर पार से सुन रहे थे, बहुत ही प्यारा सा गाना था, बहुत ही इंजॉय किया है आपने। और इससे पहले कि हम आपकी अगली फरमाइश को प्ले करें, आइए चलते हैं, इंजॉय करते हैं, आपके मैसेजेस को पढ़ लेते हैं, तभी तो इंजॉय करेंगे। आपका अपना कॉलर ट्यून गुंडा, तो जिनकी मैसेजेस नहीं आए हैं जरा वो अपनी हाजिरी लगाएं, और जिनकी फरमाइश नहीं आई है वो अपना फोन उठाएं, नंबर घुमाएं 6393316429 लगाएं और अपनी फरमाइशें हम तक भेज दें। एंड हमारे साथ चैट बॉक्स में जुड़ गए हैं पप्पू जी, लिखा है नाइस सॉन्ग, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गुंडा में। जुगल किशोर वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं फ्रॉम मध्य प्रदेश, और आपका स्वागत करते हैं। फिल्म है कभी कभी, गाना है तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। फिलहाल आपको ये गाना फरमाइश करनी पड़ेगी कॉल करके, और आई थिंक आपकी कॉल आ भी चुकी है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। गुड आफ्टरनून लिखा है हमारे पप्पू जी ने, गुड आफ्टरनून टू यू, नमस्ते आरजी मैम, नमस्ते, कैसे हैं आप जुगल जी, आपका भी इस्तकबाल करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। आरजी सॉन्ग थोड़ा कम काटा करो, अन जी मैं समझ गई आपकी बात, और सॉन्ग वैसे कम ही कटते हैं लेकिन वक्त को मद्देनजर कभी कभी रखना पड़ता है। इसके बाद है हमारे पास बाबू अंसारी जी का मैसेज फ्रॉम बाराबंकी, लिखा है आशुनती मैम जी कैसी हैं आप, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। आज ही हमने अभी तो शुरू ही किया है और आपको पहले से ही अगर मेरी एंट्री पर ही इतना पसंद आ गया तो बहुत बहुत शुक्रिया इस मोहब्बत के लिए, आपका वेलकम करते हैं हम कॉलर ट्यून गोंडा में। रोशनी रावत हमारे साथ जुड़ गई फ्रॉम उन्नाव, और लिख रही हैं गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड डियर उन्नती मैम जी, आप कैसी हैं, आप आए बाहर आए मैं खुश, और मेरे स्टूडियो में रोशनी आई, और इसी के साथ आपका भी वेलकम करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं। मोहम्मद मसीफ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून डियर आरजी मैम, कैसन हैं आप, मैं बढ़िया हूं, आप बताइए आप कैसे हैं, गुड आफ्टरनून टू यू, आपका भी इस्तकबाल करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। महेंद्र दीपन फ्रॉम राजस्थान लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, नमस्ते आरजी मैम जी, गुड आफ्टरनून टू यू, नमस्ते, कैसे हैं आप, आपका भी वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। धर्मेंद्र मोहन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो लिख रहे हैं आरजी उन्नति जी नमस्ते, माय सॉन्ग दुनिया किस्मत और खुदा दुश्मन हो जाए तो क्या, भैया कुछ भी दुश्मन नहीं बनाना है, किसी को भी दुश्मन नहीं बनाना है। आपका गाना बहुत प्यारा है, हम आपको प्ले करेंगे, लेकिन अगर आपने कॉल किया होगा तो, और मुझे पक्का पता है कि आपकी कॉल हमारे पास आ चुकी है। फिलहाल आगे चलते हैं, ट्यून करते हैं अगला गाना। अब आपने तो फोन उठाया नहीं, घंटी बजाई नहीं, तो कोई बात नहीं, अमित कुमार जी की फरमाइश में सुन लीजिए, दिल का टेलीफोन है बजता रिंग रिंग रा रिंग, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे ड्रीम गर्ल से आयुष्मान खुराना पर फिल्माया गया गाना जुनीता गांधी की आवाज में और नक्श अजीज की आवाज में। एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए थोड़ा सा रिंग रारा रिंग आप भी कर लें 6393316429 पर।

हाँ जी, तो आप इंजॉय कर रहे थे हमारे अमित कुमार जी की फरमाइश, और आई होप आपने भी रिंग ररा रिंग कर लिया होगा 6393316429 पर, क्योंकि ये चल रहा है आपका अपना कॉलर ट्यून गोंडा विद राजनीति, और आप सुन रहे हैं गोंडा का अपना पहला एफएम रेडियो ज्ञानसली 10.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। और हमारे साथ जुड़ गई हैं चैट बॉक्स में नाजिया अंसारी जी, जो लिख रही है वेरी गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसी हैं आप? आपने थोड़ी सी देर की लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने को ट्यून करने के लिए। सभी हजी का गाना है और वो सुनना चाहती हैं कबीरा फ्रॉम ये जवानी है दीवानी। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे कॉल ट्यून गोंडा। रणबीर कपूर दीपिका पादुकोण पे फिल्माया गया गाना, म्यूजिक है प्रीतम का और ऑफ कोर्स लिरिक लिखे हैं हमारे अमिताभ भट्टाचार्य ने। तो एंजॉय करते रहिए, हम मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

अंजी और आप सुन रहे थे सबिया जी की फरमाइश कबीरा ये जवानी है दीवानी तोची रहना और रेखा भारद्वाज की आवाज में आपने सुना अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे बोलो प्रीतम का म्यूजिक एंड इसी के साथ चैट बॉक्स में जुड़ गए हैं हमारे के गुप्ता फ्रॉम तिरंगा कॉम्प्लेक्स और लिख रहे हैं देखो देखो हम भी आ गए अजी हमने देख लिया आपको इवन आज चश्मा लगाकर हम आपको देख रहे हैं इतना अच्छे से हम आपको देख रहे हैं एंड इसी के साथ नागेश्वर धाकड़ भी हमारे साथ जुड़ गए हैं आपका भी स्वागत करते हैं कॉलोची गुनगुना में और आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर अगली फरमाइश हमारे पास आई है जूही जी की और वो सुनना चाह रही है चोरी चोरी दिल दे दिया था क्यों भैया चोरी चोरी क्यों दिया था सबके सामने क्यों नहीं दिया था फिलहाल एंजॉय करते रहिए उदित नारायण अलका जी की आवाज में आनंद राज आनंद का सॉन्ग है और ऑफकोर्स आनंद बख्शी के लिखे हुए बोल है मिलते हैं इस गाने के उस पार लेकर आपकी अगली फरमाइश को अगली फरमाइश होने वाली है बाराबंकी से बाबू अंसारी जी की

आप सुन रहे थे उदित नारायण और अलका जी की आवाज में हमारी जूही जी की फरमाइश चोरी चोरी दिल दे दिया एक हिंदुस्तानी फिल्म से। एंड अंबर जी हमसे लिख रहे हैं कि मैं भी जुड़ा हूँ काफी देर से, आपका भी स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। एंड के जी की तरफ से आया कि भैया हमको भी किसी 90s के गाने में लटका दीजिएगा, बजा दीजिएगा। ऑफकोर्स मैं आपको 90s का सॉन्ग दे दूंगी, डेडिकेट कर दूंगी। एंड राजेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए। नमस्ते मैम, नमस्ते, कैसे हैं आप? आपका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। वेरी नाइस सॉन्ग लिखा है मोहम्मद मुसीफ ने और क्रेडिट जाता है हमारी जूही जी को। इसके बाद आपके पास बहुत सारे स्टार्स हैं जो आपने हमें भेज दिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैट बॉक्स में तारे लगाने के लिए। चांद तो लगा नहीं। गुलफशा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। मुस्तफ़ा जी फ्रॉम सऊदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू। गुलफशा जी ने लिखा है वेरी गुड आफ्टरनून मैम जी, गुड आफ्टरनून टू यू। ओके, मोहम्मद चांद जी हथियागढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। मिस्टर चांद बाबू और राजू टेलर्स एंजॉय, थैंक यू सो मच, आपका भी स्वागत करते हैं हम कॉलर ट्यून गोंडा में। एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। थोड़ा सा नशा आपको चढ़ाते हैं क्योंकि अरिजीत सिंह की आवाज में आप एंजॉय करने जा रहे हैं। नशे सी चढ़ गई बेफिक्र फिल्म से, आप एंजॉय करते रहिए। हम मिलेंगे इस गाने के उस पर, रणवीर सिंह और वाणी कपूर पे फिल्माया गया गाना।

और आप सुन रहे थे बाबू अंसारी जी की फरमाइश जो आई थी हमारे पास बाराबंकी से, अरिजीत सिंह की आवाज में विशाल एंड शेखर का म्यूजिक था, जयदीप सहानी के लिखे हुए बोल। और आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। और गुलफशा जी, आपका गाना बाजी बाजी जरूर बाजी, इंतजार कीजिए, थोड़ा सा सब्र का फल यहाँ पर जो होता है वो आपके गाने होते हैं, तो थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा मोहब्बत और इंजॉय करते रहिए। कॉल ट्यून गोंडा विद राजू नती, पेश करते हैं आपके लिए हमारी अगली फरमाइश जो कि हमारे निशा जी की है। स्टे ट्यून्ड।

बरसात फिल्म से आप सुन रहे हैं सोनू निगम और अलका जी की आवाज में करते हैं हम तुमसे प्यार। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। एंड ओके, अपने अपने गाने की डेडिकेशन आ चुका है कि हमने किस किस को डेडिकेट किया है, बताते हैं आपकी बारी आने दीजिए, फिर बताते हैं। लेकिन उससे पहले एंजॉय करेंगे आवाज विकास से आया हुआ गाना धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश पर, दुनिया किस्मत और खुदा गुमराह। फिल्म से आप सुन रहे हैं हमारे धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश कॉल ट्यून गोंडा में। मिलते हैं अगले गाने को लेकर के, अगली फरमाइश, अगले डिमांडेड सॉन्ग पर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

और आप सुन रहे हैं धर्मेंद्र मोहन जी की फरमाइश दुनिया किस्मत और खुदा। गुमराह फिल्म से आपने एंजॉय किया है एंड हमारे साथ जुड़ गए हैं जावेद अंसारी जी जो लिख रहे हैं हाय मैम हाय कैसे हैं आप, लाइक एवरी डे आई एम लिसनिंग टू योर प्रोग्राम टुडे एज वेल, थैंक यू सो मच। और आपका भी स्वागत करते हैं इस्तकबाल करते कॉलर ट्यून गोंडा में। हमको भी कोई गाना सुना दीजिएगा 90s का हिट का है नहीं भैया, जरूर सुनाएंगे लेकिन इंतजार करना पड़ेगा थोड़ा सा। और आइए पेश करते हैं आपके लिए, वैसे आपका इंतजार खत्म करते हैं और हम आपके लिए पेश करते हैं जो हमारी अगली फरमाइश है उसको डेडिकेट करते हुए। ये गाना डेडिकेट है हमारे ऑफकोर्स के गुप्ता जी को एंड मुस्तफा जी को फ्रॉम सऊदी से जो हमें सुन रहे हैं। और गाने की फरमाइश आई है हमारे साक्षी जी की तरफ से, अलका जी की आवाज में आप सुनते रहिए दैया दैया दैया रे। ऐश्वर्या राय पर फिल्माया गया बहुत ही जबरदस्त और अपने टाइम का सबसे ज्यादा हिट गाना।

और आप सुन रहे थे हमारे साक्षी जी की फरमाइश को दैया दैया दैया रे, और ये गाना डेडिकेट था हमारे मुस्तफा जी और के गुप्ता जी को। अरविंद जी हमारे साथ जुड़ गए, हाय मैम, हाय, कैसे हैं आप? महेंद्र जी का नाइस सॉन्ग और डेडिकेट है, ऑफकोर्स इसका क्रेडिट भी जाता है हमारे साक्षी जी को। अरविंद जी ने लिखा है, मैं सूरज के साथ रहकर भी नहीं भूला अदब, लोग जुगनुओं के साथ पाकर मगरूर हो गए। क्या बात है जनाब, बहुत ही प्यारा लिखा है आपने, वेरी हिट सॉन्ग। जी हाँ मुसीब जी, आपने एकदम सही फरमाया है। एंड इसी के साथ आइए चलते हैं अगले गाने को ट्यून कर लेते हैं। अगला सॉन्ग जो हमारे पास आया है वो आया है मोहम्मद मुसीब जी का ही, तो देखते हैं भैया मोहम्मद मुसीब जी ने हमें क्या फरमाइश भेज दी है। एंजॉय करते हैं और हम मिलेंगे अगले गाने पर, जो कि हमारे जुगल किशोर जी का होने वाला है फ्रॉम MP यानी कि मध्य प्रदेश से। इसके बाद है रईस साहब, रोशनी रावत जी और गुलक्षा जी। क्या बात, दोनों बहनें और दोनों आसपास ही हैं आज तो फरमाइश के नाम पर, तो एंजॉय करते रहिए। कॉल ट्यून गुंडा, मिलते हैं इस गाने के उस पर अगली फरमाइश को लेकर के। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

और आप सुन रहे थे मोहम्मद मुसीब जी की फरमाइश। आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग जो हमारे पास है वो है जुगल जी का, और ऑफ कोर्स वो सुनना चाहते हैं बेहद ही खूबसूरत, बेहद ही प्यारा सा नगमा, और गाने का नाम है तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती नजारे हम क्या देखें। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले गाने पर जो कि आपकी एनर्जी को बनाएगा बहुत ज्यादा तेज, कर देगा हाई बीट, एनर्जेटिक आपको, बिकॉज अगला फरमाइश जो है वो हमारे रईस साहब का है।

आप सुन रहे थे जुगल किशोर जी की फरमाइश, और आइए पेश करते हैं अगले गाने को, वो भी हमारे मिका बाजी की आवाज में। रईस साहब की फरमाइश आ चुकी है, आप सुनने जा रहे हैं किक फिल्म से जुम्मे की रात है। बिलाल आज तो सैटरडे है, इंजॉय करते रहिए कॉलर ट्यून गुंडा।

और भैया मुझे लगता है ना कि वक्त होता जा रहा है, तो क्या ख्याल है अपनी स्पीड बढ़ाई जाए? जी हाँ, चलिए अपने अपनी सीट बेल्ट लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ से होने वाले हैं हमारे प्रोग्राम की स्पीड डबल और हम चलेंगे हमारी अगली फरमाइश को ट्यून करने के लिए, जो कि हमारी रोशनी रावत जी का है। इससे पहले कि वो जाकर घोड़े बेच के सो जाए, वैसे मुझे समझ में नहीं आया कि जब हम सोते हैं तो घोड़े क्यों बेचते हैं? गधा भी बेचा जा सकता था, कुत्ता भी बेचा जा सकता था, लेकिन घोड़े ही क्यों बेचे गए? फिलहाल ये आप सोच के बताइएगा जरा कि घोड़े क्यों बेचने हैं। और इससे पहले कि वो सो जाए, आइए हम उनकी कहानी को पेश कर देते हैं। नदिया चले चले रे धारा, सुनते रहिए। मन्ना डे की आवाज है, राजेश खन्ना पर फिल्माया गया गाना है और साथ ही है इसमें शर्मिला टैगोर। नदिया चले

0: मैं जब भी यहाँ आता हूँ आकर घंटों बैठा रहता हूँ और देखता रहता हूँ इस नदी के बहते हुए पानी को, ये चौड़ा पहाड़।
1: और आप सुन रहे थे हमारे रोशनी रावत जी की फरमाइश को, और ये गाना डेडिकेट था भैया कुछ लोगों के लिए, और उनमें से कौन कौन है आइए उनका नाम बता देते हैं। पहला नाम लिखा गया था मेरा सॉन्ग डेडिकेटेड उन्नति मैम जी, गुलाब शाह दीदी को, अनु पांडे को, महेंद्र भैया को, बाबू अंसारी भाई को और सभी लोगों को। ये भैया डेडिकेटेड गाना था आप सभी लोगों के लिए, जो आई थिंक आपने इंजॉय कर लिया होगा। और आइए चलते हैं अगले गाने की तरफ। अगला सॉन्ग हमारी गुलाब शाह जी का है, तो भैया गुलाब शाह जी थोड़ा सा शर्माइए क्योंकि हम आपकी फरमाइश को प्ले करने जा रहे हैं और मुझे पता है आप शर्मा चुकी हैं मेरी बात सुनकर के। एंड ये गाना भी डेडिकेटेड है बहुत सारे लोगों के लिए, जिसमें से नागेश्वर हैं, रोशनी दीदी हैं, महेंद्र जी हैं, अरविंद जी हैं, अनु पांडे जी हैं और ऑफकोर्स मैं भी शामिल हूँ, निकी और पूछ। आइए गाने को प्ले कर देते हैं और हम मिलेंगे इस गाने के उस पार। गाने का नाम है तेरे प्यार में दिल दीवाना। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अलका जी और उदित नारायण की आवाज़ है कुली नंबर 1 से 1995 में इस गाने को और फिल्म को रिलीज किया गया था।

ये फरमाइश थी हमारे गुलाब शाह जी की। एंड इसके बाद लिखा है हमारे अरविंद जी ने, वैसे कल पूरी रात मैं तोता तोता कर रहा था, पर करना तो सिर्फ गेम में था ना, आपने रात भर क्यों किया है। और लिखा है कि उन्नति मैम भी तोता तोता बोल रही थी। नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, मैं तोता बोला ही नहीं था, मैं तो आराम से खा पी कर सो रही थी। और अगेन कहीं यही कहूँगी कि घोड़े बेच के सो रही थी। घोड़ा क्यों बेचा जाता है? क्योंकि घोड़ा शांत होता है और गधे से कुत्ते से उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा होती है, वो घास खाता है। और ये सारे लॉजिकल आंसर मुझे मिल चुके हैं मेरे चैट बॉक्स के अंदर। एंड अंबर जी की तरफ से बहुत सारे डांसिंग इमोजीज आ गए हैं, आप ऐसे ही एंजॉय करते रहिए। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले गाने की तरफ अब, क्योंकि महेंद्र जी का गाना बजाना है हमको सबसे लास्ट में, तो हम ट्यून कर लेंगे महाराष्ट्र से आए हमारे रमेश जी की फरमाइश। गाना है इस दीवाने लड़के को कोई समझाए। भैया आइए समझा देते हैं थोड़ा सा, आमिर खान की फिल्म है, आमिर खान के ऊपर फिल्माया गया गाना है। सोनाली बिंद्रे की फरमाइश है, मतलब कह सकते हैं कि सोनाली बिंद्रे जो है वो यहाँ पर यही फरमाइश कर रही है कि इस लड़के को कोई समझा ले। वैसे तो फरमाइश हमारी महाराष्ट्र से रमेश जी की है, तो सुनते रहिए।

और ये फरमाइश थी हमारे रमेश जी की, बहुत ही प्यारा सा गाना आपने इंजॉय किया है। और आइए चलते हैं हमारे अगले गाने को पेश करते हैं, चांद बाबू जी की फरमाइश है। और इसके बाद हम मिलेंगे लेकर के हमारे राजेश जी की, सुरेश जी की, अरविंद जी की, अंबर गोयल जी की, नरेश प्रजापति जी की और हमारे महेंद्र जी की। भैया वक्त हमको अक्सर चैलेंज करता रहता है और हम वक्त को चैलेंज करते रहते हैं, देखते हैं कौन जीतने वाला है आज के वाले कार्यक्रम में।

और वक्त को मद्देनजर रखते हुए आइए बढ़ते हैं अपने अगले गाने की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास है राजेश जी की और वो सुनना चाह रहे हैं दिल जंगली कबूतर। उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में इंजॉय करते रहिए और हम मिलेंगे अगली फरमाइश पर जो कि हमारे सुरेश जी की है। फ्रॉम चौक बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। स्टे ट्यून्ड।

और आइए पेश करते हैं आपसे अपनी अगली फरमाइश, जो कि हमारे पास आई है चौक से सुरेश कुमार जी की, और वो सुनना चाहते हैं बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। और इस गाने को हम बचपन में पता नहीं किस किस नाम से गाया करते थे। फिलहाल एंजॉय करते रहिए आप क्वालिटी उनगोना। हम मिलेंगे अगली फरमाइश पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

एंड ये फरमाइश थी हमारे सुरेश जी की फ्रॉम चौक, और आइए एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश की, जो कि हमारे पास आई है अरविंद जी की तरफ से। नाकाबंदी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे कॉल अच्छी। उनको नाम मिलते हैं अगली फरमाइश को लेकर के, जो कि हमारे अंबर गोयल जी की है, नरेश प्रजापति की है एंड महेंद्र जी की है फ्रॉम राजस्थान।

एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं और हम चलेंगे सीधे गोवा वाले बीच पे, क्योंकि हमारे अंबर जी की फरमाइश है गोंडा से गोवा तक का सफर आप तय करने वाले हैं बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर। एंजॉय करते रहिए और अपनी अपनी सीट बेल्ट बांधे रहिए क्योंकि अगली दो फरमाइशें अभी आपका इंतजार कर रही हैं। एंड लगातार चैट बॉक्स में मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने बोला डेडिकेटेड नेम। भैया हमारे पास डेडिकेटेड नेम आया ही नहीं तो बोलते कहाँ से। फिलहाल अगर आपने डेडिकेट किया है तो नागेश्वर धाकड़ जी को, धर्मेंद्र मोहन जी को, महेंद्र जी को और आरजे को, यानी कि मुझको ही किया होगा, बाकी लिसनर्स को भी किया है। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कॉलर ट्यून कोंडा।

बेहद ही प्यारी फरमाइश थी हमारे नरेश प्रजापति जी की। और हमारे पास दो फरमाइशें और आ चुकी हैं, लेकिन अब वक्त हमारे पास नहीं है, तो आपसे माफी चाहेंगे। प्रीति जी एंड एक और लिसनर जिनका नाम हम तक नहीं आया है, गाने का नाम था तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, माफी चाहेंगे आपसे कि आज आपकी फरमाइश को हम पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कल आप अपनी फरमाइश जरूर से कीजिएगा, कल हम पूरा करेंगे आपकी फरमाइश को। लेकिन लेकिन लेकिन क्योंकि आपकी फरमाइश प्ले नहीं हो सकती, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गाना नहीं सुनाया जा सकता। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे थे कॉलर ट्यून गोंडा और हम प्ले कर रहे हैं हमारे महेंद्र जी की आखिरी फरमाइश, क्योंकि घड़ी ने इशारा कर दिया वक्त है विदा लेने का। अरविंद जी, मैं आपकी बात समझ गई हूँ और मैं अपनी टीम से ज़रूर बात करूंगी, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और आई होप आज का शो आपने इंजॉय किया होगा। प्रीति जी, ये गाना आपको भी डेडिकेटेड है, हमारी दूसरी लिसनर जिन्होंने कॉल तो किया था लेकिन अपना नाम नहीं बताया या फिर नाम सुनने में कोई दिक्कत हो गई है, इसके लिए माफी चाहेंगे। आपको भी डेडिकेटेड है, लगातार जो हमारे साथ पिछले एक घंटे से जुड़े हैं, ये गाना उन सभी के लिए डेडिकेटेड है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं गोंडा का अपना पहला FM रेडियो 89.6 FM और अपनी आज जुनती को दीजिए इजाजत, वक्त है आपसे विदा लेने का, ख्याल रखिएगा।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
4: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9816-9976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे रेडियो 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आपका होस्ट एंड दोस्त आरजी अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में, आपका अपना फेवरेट वाला शाम का शो गोधूली, जिसमें हम गोंडा की प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज से आपकी मुलाकात कराते हैं, यानी वो लोग जो अपनी फील्ड के उस्ताद होते हैं, महारथी होते हैं, उनको हम बुलाते हैं, उनकी जिंदगी से जुड़े हुए पहलुओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उनके काम के बारे में, उनके कार्यक्षेत्र के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और आज फिलहाल जो हमारे बीच में पर्सनालिटी मौजूद हैं, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, उनको काफी ज्यादा गोंडा के लोग जानते हैं, यानी आप पहले से ही रूबरू हैं, और आज उनको हम अपने स्टूडियो में लेकर के आए हैं। जी हाँ, आज हम आपकी बात कराने वाले हैं मिस्टर प्रदीप मिश्रा से, जो कि रिपोर्टर है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं अपने इस शो में जिसका नाम है गोधूली।
3: थैंक यू
2: सो मच। और जैसा कि हमने बताया कि भाई आपके बारे में लोग पहले से ही जानते हैं, लेकिन शायद अब हम जो आपसे क्वेश्चंस करने वाले हैं ये बातें नहीं जानते, तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि अपने बारे में एक संक्षिप्त सा परिचय दे दें। आप बता दें कि आपकी पैदाइश कब और कहां हुई, आपका बचपना कैसा रहा, आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में।
3: पैदाइश हमारी गोंडा में ही है, और यहाँ से 6 किलोमीटर दूर हमारा गांव है पंडरी के पार। उसके बाद हमने एक मॉन्टेसरी स्कूल था, वहीं पढ़ते थे। पढ़ने के बाद फिर हमने GIC में एडमिशन कराया, तो फिर 7 साल यहीं GIC में हमने पढ़ाई करी है, 12th तक की पढ़ाई। फिर LBS में हमने BSc किया है, और उसके बाद तैयारी करने चले गए थे हम CPMT की। फिर हमारा एम्बिशन जो था डॉक्टर बनने का था, तो हमने तैयारी की और अच्छी, मतलब उसमें नंबर आए भी, लेकिन 1-2 नंबर से हम पीछे रह गए, जिस कारण से नहीं हो पाया। और फिर हमने अपना एम्बिशन फिर चेंज किया, जब वो नहीं, आदमी करियर में ऊपर नहीं बढ़ पाता है, तो उसको खास तौर पर जब बड़े एम्बिशन तय कर लेता है कि नहीं मैं लक्ष्य बड़ा कर लूँगा, तो अगर नहीं कर पाता है तो जल्दी से डाउनफॉल नहीं आता है। लेकिन हमने अपने आप को रोका, हमने अपने आप को नीचे ला करके फिर हमने सोचा कि अब क्या किया सकता है। तो फिर हमने मीडिया का सेक्टर बाई प्रोफेशनल सिस्टम से जुड़ने का कोशिश किया, तो हमने इसकी पढ़ाई करी, हमने मास कम्युनिकेशन में MA डिग्री कोर्स किया इसका, और उसके बाद मैं आया हूँ।
2: ओके, तो इस पे तो अभी हम और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वापस से थोड़ा सा आते हैं और जानने की ये कोशिश करते हैं कि आपने पढ़ाई की बात की, और आपने कहा कि CPMT की तैयारी के लिए आप गए, 1-2 नंबर से महज रुक भी गया। मैं सबसे पहले तो इस बात को जानने की कोशिश करूंगा कि आप पढ़ाई लिखाई में बचपन से कैसे थे, एवरेज थे या टॉपर थे, कैसे थे आप?
3: एवरेज से थोड़ा सा अधिक था,
2: एवरेज से थोड़ा सा अधिक था,
3: इसलिए सोचता था कि मैं हो जाऊंगा, और हो भी जाता क्योंकि इसमें सीटें कम होती हैं। अभी तो सरकार ने भी कोशिश करी हुई है, सरकार लेकर के आई है तमाम मेडिकल कॉलेज, अगर सीटें होती तो मेरा हो गया होता, ऐसा मैं मान के चलता हूँ कि हो जाता पक्का। लेकिन ये है कि अभी जहाँ हूँ मैं इससे संतुष्ट हूँ, अभी तो ठीक है।
2: बेशक बेशक। अपनी फैमिली के बारे में बताया, माता पिता के बारे में, और कितने भाई बहन है आप लोग?
3: दो भाई हम हैं और एक मेरी बहन है। मेरी बहन बड़ी है जो अभी बेंगलुरु में है, और जो मेरे भाई हैं वो गांव पर ही, उनका अपना डेयरी का काम है
2: जी।
3: और वो हमसे बड़े हैं, सब दोनों लोग हमसे बड़े थे और मैं छोटा था, इसलिए ज्यादा दुलार में रहा।
2: ओके।
3: और ज्यादा मौका भी मिला हमें करियर में काम करने का,
2: राइट।
3: तो हमने जो फील्ड चुनी या कर पाया हूँ उसमें परिवार वालों का बड़ा योगदान है, क्योंकि ये पत्रकारिता है जिसमें मैं आया, ये बहुत ज्यादा समय, बहुत ज्यादा पैसा खा जाती है, और ये मौका ही हमें परिवार वालों के दुलार के कारण मिल पाया है। हर आदमी की बस की बात नहीं कि ईमानदारी पूर्वक पत्रकारिता कर पाए।
2: ओके, बिल्कुल। तो ये बात आपने सही कहा कि बहुत समय चाहिए होता है, बड़ा ही इसमें कह सकते हैं कि सब्र चाहिए होता है, और ये बिना फैमिली सपोर्ट के इजीली कर पाना मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल, मैं इस बात को समझता हूँ। आपने बातचीत की थी एम्बिशन की, तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने सीपीएमटी की बात की कि आप तैयारी के लिए गए। कोई भी चीज जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, स्पेशली जब टीन एजर होता है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को देख करके उसको इंस्पिरेशन मिलती है
3: जी। बिल्कुल।
2: आपको कहां से डॉक्टर बनने की इंस्पिरेशन मिली?
3: जी बिल्कुल, हमारे पिताजी भी स्वास्थ्य विभाग में ही थे, वो आईओ थे, प्रतिरक्षण अधिकारी होते हैं
2: जी,
3: वो एक ब्लॉक में एक ही ऑफिसर होते हैं। तो एक तो वो था, दूसरा ये है कि हमारे मौसी के लड़के लोग हैं, हमारे बड़े भाई लोग हैं, ये सब डॉक्टर हैं, यहीं पर हैं, गायत्री हॉस्पिटल है उनका
2: जी।
3: तो ऐसे ही उन लोगों से जुड़े हुए कम से कम दर्जन भर डॉक्टर हैं जो हमारे रिश्तेदार हैं। तो एक तो वो वजह थी जिसमें जाने के, बायोलॉजी लेने की ही वजह वही थी।
2: ओके ओके।
3: कि फिर हमने बायो से उसी पढ़ाई करी और फिर आगे बढ़े थे, वहीं से हम इंस्पायर हुए थे कि हमें डॉक्टर बनना है। अच्छा भी लगता था क्योंकि आसपास से ही आदमी इंस्पायर होता है। ये
2: बेशक, ये तो आपने सही कहा कि अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से ही इंसान इंस्पायर होता है। पर अच्छा मुझे लग ये रहा है कि इतने सारे डॉक्टर्स के बीच में एक आप अलग पोस्ट के साथ निकलते हैं, भाई कुछ अलगपन भी हुआ। खैर, जो भी होता है डेस्टिनी एक अच्छी ही जगह लेकर के जाती, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन एक बात तो बड़ी दिलचस्प है कि आप सीपीएमटी की तैयारी के लिए गए और कुछ नंबरों की वजह से चूंकि नहीं हो पाया तो आपने अपने एम्बिशन को चेंज किया। दूसरा, ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि करूंगा तो पत्रकारिता ही करूंगा, ये ख्याल कहाँ से आया?
3: बिल्कुल, जब मैं बचपन में छोटा था तो मुझे याद है कि अम्मा पूछा करती थी हमारी
2: जी,
3: कहती थी कि क्या बनोगे, तो हम बोलते थे कि नहीं हमें डॉक्टर बनना है। उन्होंने कहा कि नहीं, फिर उनसे अम्मा से मैं बोलता था कि नहीं इससे बड़ा कोई होता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं डीएम होता है, तो हमने कहा डीएम बनना है। फिर अम्मा से मैं पूछता था कि फिर डीएम के बाद क्या बनना है
2: जी,
3: तो वो कहते थे कि नेता होते हैं, तो मैं कहता था नेता बनना है। तो ऐसे करके सबसे बड़ा जो होता
2: जी
3: वो मैं बनना चाहता था, मुझे अच्छे से याद है। मैं 4-5 साल का था
2: जी,
3: तो जो पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा आदमी निकल के आता था तो वो बनना चाहता था। खैर, पत्रकारिता को मैं पूरे सिस्टम में सबसे अपमान के चलता हूँ, क्योंकि ईमानदारी का बहुत पावन, बहुत पवित्र मिशन लेकर चलता है। तो आज मैं जो बचपन में सोचता था मैं वहाँ हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ कि मैं अगर पत्रकार रहते हुए कोई भी इंसान किसी भी व्यक्ति से सवाल कर सकता है।
2: राइट, बिल्कुल सही आपकी बात लगी प्रदीप जी। क्योंकि देखिए, आपने कहा कि नेता अगर हम मान के चले कि देश चलाते हैं, लेकिन उनका भी एक एरिया होता है, उनके भी एक लिमिटेड अधिकार होते हैं। लेकिन एक पत्रकार, वो किसी भी संस्था का हो, किसी भी जगह का हो, किसी भी धर्म जात का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इंसानियत को लेकर के, बल्कि पूरे समाज को, सिर्फ एक भारत ही नहीं, मतलब अगर आप यहाँ भी कुछ ऐसा काम करते हैं तो मैसेज पूरे वर्ल्ड में जा सकता है और जाता भी है। कई कई जगह की न्यूज़ हम लोग को मिलती है, वो पूरे वर्ल्ड भर में घूमती है, वायरल होती है, हम लोग देखते हैं। तो मुझे लगता है पत्रकार बहुत बड़ा है। और मेन चीज तो ये कि पत्रकार का जो उनकी जो बातचीत होती है, आमना सामना होता है, वो सभी से होता है, फिर चाहे वो नेता हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, आर्टिस्ट हो, मतलब आप लोगों की बातचीत तो सबसे होती ही होती है। सो ऑफकोर्स आपने बहुत ही अच्छा जो प्रोफेशन है कह सकते हैं कि भाई चूज किया। तो ये तो आपने बताया, आप थोड़ा सा विस्तार से बताया कि पत्रकारिता की पढ़ाई आपने कहां से की, उस दौरान आपकी जर्नी में आपको क्या ऐसा नहीं लगा कि हाँ इसी एम्बिशन पे हमको आगे बढ़ना चाहिए, या कहीं बीच में आपको भटकाव भी आया कि नहीं कुछ और भी किया जा सकता है, कैसा क्या रहा सफरनामा?
3: बिल्कुल, जब पत्रकारिता की हमने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की हमने एमए डिग्री कोर्स किया, तो करने के लिए मैं गया था अवध यूनिवर्सिटी से हमने किया हुआ है, और वहां पर हमारे साथ और भी साथी 40 लोग थे जो साथ में कर रहे थे पत्रकारिता। तो वो कोर्स करने के दौरान ही पता चला कि ये बड़ा आने वाले समय में प्रोफेशनल तो है ये काम, लेकिन आने वाले समय में मुफलिसी ले आएगा।
2: अच्छा मुफलिस से लिया आएगा, ये कैसे पता चला?
3: ये वही के अपने साथी थे, अपने साथी अभी फिलहाल वहीं पर हैं, दूरदर्शन केंद्र में हैं, देश दीपक मिश्रा जी, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आगे चल के संकट आएगा। तो ये बहुत शोचनीय विषय हो गया कि हम तो जिस मिशन को लेकर के आए थे अब वो मिशन आगे चल के डंप हो जाने वाला है। तो अब फिर से सोचने की कोई गुंजाइश न देख करके हमने सोचा कि इसमें सर्वस्व न्यौछार करते हुए आगे बढ़ना है। फिर हमने इसको सोच लिया कि इसको करना ही करना है, इसमें मतलब पीछे नहीं हटना है
2: जी।
3: तो फिर पीछे नहीं हटे, वो अलग बात है कि जो उन्होंने कहा था वो आई, उन्होंने कहा था मुफलिसी आई तो आई।
2: अच्छा आपने ये फील भी किया, मतलब ऐसा है?
3: हाँ, हुआ बिल्कुल है। मीडिया में रह करके खासतौर पर प्रिंट वगैरह में रह करके बड़ी दिक्कत यही है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आदमी के पास अगर ईमानदारी पूर्वक पत्रकारिता कर रहा है तो कई मौके ऐसे आएंगे उसे भूखे पेट काम करना पड़ेगा।
2: ओके,
3: ये बहुत सच बात है जो कह देना भी जरूरी है। लेकिन ये है कि जिसके बदले में जो आदमी को जो अंतर्मन की जो खुशी आती है वो खुशी भी महसूस कर सकता है आदमी जो अगर ईमानदारी पूर्वक पत्रकारिता किया हुआ है। तो खैर, तो काम करते हुए हमें अभी कोई वो नहीं है कि नहीं हम गलत जगह आए हुए हैं, गलत क्षेत्र है, काम ठीक है, करना चाहिए, लेकिन उसी प्रण के साथ करना चाहिए जिस प्रण को लेकर के पहले दिन से आदमी चला था। तो जब मैंने पत्रकारिता की वहां से कोर्स शुरू किया हुआ था उस टाइम में, तो वो 2 साल का था, 2 साल हमारा बीत गया, एमए डिग्री कोर्स था वो बीत गया। उसके बाद हमने लखनऊ दूरदर्शन केंद्र में काम शुरू किया, अप्रेंटिस का काम होता है
2: जी जी जी,
3: वहाँ 3 महीने का अप्रेंटिस का काम था। तो 3 महीने हमने वहाँ पर काम किया, एक बार किया फिर बढ़वा लिया 1 साल, वो 1 महीना फिर 1 महीना ऐसा कर बढ़वा करके 3 महीने काम किया। तो जो काम किया हमने आवाम की आवाज़ जो अपने एपी मिश्रा जी हैं उनके साथ काम किया, अच्छा अनुभव था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुभव था, अच्छा अनुभव था। और अगर हमारे तमाम साथी हैं जो तमाम जगह पर बड़े बड़े संस्थानों में हैं, हम भी जाना चाहते तो वहाँ चले जाते, लेकिन फिर मन में आया कि हमें गोंडा में सेवा करनी है, अपने जिले में सेवा करनी है, अपने परिवार को सेवा देनी है, परिवार भी रहे और समाज भी रहे, वो दोनों चीज़ें कहाँ हो सकती थी। तो मेरा बर्थ प्लेस यही है, तो मैं चला आया वापस और मैंने यहाँ काम शुरू किया। तो फिर वर्ष 2006 से अब तक एक ही अखबार में अनवरत में बना हुआ हूँ। 17 साल का बड़ा सा करियर है जिसमें हमने बहुत तमाम चीजें से देखी जो किया गया।
2: जी बेशक, 17 साल एक किसी भी जॉब को दे देना बहुत बड़ी बात है, 17 साल का अनुभव एक बहुत बड़ा अनुभव है।
3: हाँ, तो ये एक चीज और है कि जैसे मुफलिसी वाला जब दौर आया
2: जी,
3: तो हमने फिर सोचा कि दूसरी चीज कोई और डिग्री देखते हैं करते हैं।
2: ओके,
3: हाँ उस दौरान हमने फिर बीएड किया, टीएटी पास किया, तो दूसरी तरफ भी हमने ट्राई करने की कोशिश की। तो हमने 3 करियर लेकर के चले, जैसे एमबीबीएस वाला नहीं हो पाया था एक ये, और एक बीएड टीटी, ये सब हमने किया 2010 में।
2: ओके, मैं आपसे बातचीत के दौरान ही ये बोलना चाहूंगा कि आपके जवाब में ही ईमानदारी साफ झलक रही है। जैसे कि आपने कहा कि भाई ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करना बहुत बड़ी बात है, आपने बिल्कुल सहजता और सरलता के साथ ये उत्तर दिया कि आप में भी मतलब थोड़ा सा जहन में आया था, क्योंकि जनरली आता ही है जब आप करियर बना रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें माइंड में चल रही होती है, क्योंकि अभी आपने एक चीज का पूरी तरह से अनुभव नहीं लिया होता है, या जब डाउनफॉल आता है तो आपको लगता है कि शायद कुछ और चीजें हैं जो मुझे यहां से निकाल सकती है, और हर इंसान कोशिश भी करता है और क्यों ना करे। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज लगी कि आपने अपने एम्बिशन को छोड़ा नहीं, उसको करते करते आज 17 साल दे दिए, यानी एक पूरा जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा दे दिया। आज लोगों के बीच में आप लोकप्रिय हैं, न जाने कितनों की आपने आवाज उठाई है।
0: Now you're listening, ज्ञान असली 89.6 FM, आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन पर, आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आरजे नदी मौजूद हैं आप सभी के साथ, और शो चल रहा है आपका गौधली। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। हर रोज हमारे साथ गौधली में अलग अलग सेक्टर के, अलग अलग क्षेत्र के, हमारे बीच में कुछ बेहद ही खास मेहमान, कुछ बेहद ही खास पर्सनैलिटीज आती हैं जो अपने कार्य क्षेत्र के बारे में, अपने बारे में हमें बताती हैं, जिनसे हमें बहुत सारी बातें जानने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं, और ये हमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड करते हैं। आज इसी कड़ी में हमारे बीच में एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, तो आइए उनका स्वागत करते हैं। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकाल के आने के लिए। तो मैम कैसी हैं आप?
4: मैम बहुत अच्छी, और आप कैसे हैं?
0: मैं भी ठीक हूँ। और हम आपको बता दें बिना किसी सस्पेंस को क्रिएट किए कि हमारे बीच मौजूद हैं नगर पालिका परिषद से जेई निशा त्रिपाठी जी, आपका स्वागत करते हैं मैम। मैम तो आपको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है?
4: मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ऐसा समझा कि मुझे जो है यहाँ अपनी बात रखने का और धन्यवाद करने का मौका मिला मुझे। मैम तो हम आपसे चाहेंगे प्लीज आप अपना इंट्रो दे दें ताकि हमारे लिसनर्स आपको और भी अच्छे से जान सके।
5: मैम मेरा नाम निशा त्रिपाठी, मैं नगर पालिका परिषद गोंडा में जेई सिविल के पद पर तैनात हूँ लगभग 2 सालों से।
4: गोंडा में आप 2 सालों से हैं और आपकी पोस्टिंग कब से हुई है?
5: मैम मेरी पोस्टिंग अक्टूबर 2024 से अभी तक है।
4: गोंडा में आप 2024 से हैं और इससे पहले भी आप कहीं पे काम कर रही
5: थी? जी इससे पहले मैं जनवरी 2020 से सितंबर 2024 तक बिहार राज्य के मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट में पंचायती राज डिपार्टमेंट में मैं जेई रही हूँ।
4: ओ वाओ ब्यूटीफुल। मैम आप 2020 से काम कर रही है, वो दौर जब कोविड चल रहा था और हम सब उस वक्त बहुत परेशान,
5: जस्ट उसी टाइम की मेरी ज्वाइनिंग भी थी।
4: आपका तो एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा होगा वो लॉकडाउन और वो सब लोग जब घर के अंदर थे, ट्रैफिक बंद।
5: जी जी बिल्कुल, जस्ट उसी टाइम मेरे पास एक और अनुभव था कि इस कोविड के बीच नया सफर कैसे शुरू करें, जस्ट मेरी ज्वाइनिंग।
4: बिल्कुल, क्योंकि ऑलमोस्ट हम सबका सफर थम चुका था, एक ठहराव आ चुका था, ना कोई घर के बाहर जा रहा है, रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके, स्कूल्स हो चुके हैं। बट एक चीज हमने देखी है कि जब भी इंडिया में ऐसी कोई महामारी आती है तो इंडिया का कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल पर होता है।
5: जी बिल्कुल,
4: जहां हर इंसान परेशान था कि आगे क्या होगा, हम लोग यहाँ पे अचार रख रहे थे।
5: जी जी
4: जी हाँ। तो मैम मैं आपसे चाहूंगी कि आप अपनी एजुकेशन के बारे में कुछ बताएं।
5: मैम मेरी बेसिक एजुकेशन तो हमारे मतलब जहाँ मेरा निवास है अयोध्या, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में मैंने 12th तक पढ़ाई की है। देन मैंने फिर 3 साल की सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज मैंने राजकीय पॉलिटेक्निक बहराइच से अपनी पूरी की। देन 2 साल मैंने प्रयागराज में तैयारी की इंजीनियरिंग की, जेई जूनियर इंजीनियर सिविल। फिर 2020 जनवरी में मेरा सिलेक्शन हो गया पंचायती राज डिपार्टमेंट में जेई के पद पे। फिर मैंने वहाँ 5 साल सेवा दी, फिर वहाँ पे यहाँ यूपी गवर्नमेंट में आई वैकेंसी, फिर मैंने यहाँ दिया एग्जाम, फिर यहाँ क्वालिफाई हो गया, तो मैंने वहाँ रिजाइन करके फिर यहाँ ज्वाइन कर लिया और अभी तक मैं यहीं हूँ।
4: ओके, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका बचपन अयोध्या में गुजरा था, गोंडा में गुजरा था या बिहार में गुजरा था?
5: नहीं मैम, मेरा बचपन जो है पूरा का पूरा हमारे अयोध्या या फैजाबाद जो कहें आप, मेरा वहीं गुजरा है, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा बचपना सब कुछ।
4: ओके, तो यानी कि आप अयोध्या छोड़कर बिहार गई, वहाँ आपने एक अच्छा एक्सपीरियंस लिया, देन आप वापस अपने शहर आ गए।
5: बिल्कुल मैम बिल्कुल, दो राज्यों का।
4: बिल्कुल, और ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि हमारे पास दो राज्यों का। वैसे आपने कोई डिफरेंस नोटिस किया है कि यूपी और बिहार में क्या फर्क है? यू तो हम यूपी बिहार को साथ साथ में नाम लेते हैं हमेशा।
5: हाँ बिल्कुल, डिफरेंस है, दो अलग चीजें हैं तो डिफरेंस होना लाजमी है। हाँ लेकिन ये कह सकती हूँ कि पहले जैसी चीजें कहीं भी नहीं रह गई हैं, सारी चीजें बहुत एडवांस हो चुकी हैं, जिन्हें हम देखते हैं वो वैसी नहीं है, करीब से उन्हें देखा जाए तो बात कुछ और है।
4: ओके, और ये बात मैम बिहार की है कि यूपी
5: कहीं की भी कह सकती हैं, आप दूर से देखें तो सुनी सुनाई बात करेंगे, लेकिन अगर हम पास से देखें तो ये हमें रियलिटी फील होगी कि ऐसा नहीं है।
4: बिल्कुल, दूर से देखते हैं तो रेत भी चमक के नजर आती है और पास जाकर देखते हैं तो हकीकत कुछ और होती है,
5: चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो वहाँ का कोई कल्चर शिक्षा हो, कुछ भी हो।
4: ओके, तो मैम आप मुझे ये बताइए कि सिविल इंजीनियर बनने के लिए आपने कौन कौन से सब्जेक्ट लिए हुए थे?
5: ऐसे तो हमारे यहाँ सब्जेक्ट होते हैं लगभग 14-15, यानी आप जो एक जनरल नॉन टेक्निकल स्टूडेंट होता है उसे रीजनिंग, मैथ्स और ये जीएस, लेकिन हमें तो ये पढ़ना ही पढ़ना है, इसके बाद मुझे हमें 14 और 15 सब्जेक्ट और पढ़ने होते हैं।
4: ओह माय गॉड,
5: जिसमें से आपका यही बेसिक, जैसे आपकी मिट्टी जिसे सॉयल कहते हैं, सॉयल की एक मिट्टी की हमारी अपनी अलग बुक होती है, एक ये रेनफोर्समेंट जिसे सरिया बोलते हैं इसकी हमारी अलग बुक होती है, कंक्रीट जिसे हम आमतौर पे गिट्टी बोलते हैं इसकी अलग होती है, मतलब जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं सिविल इंजीनियरिंग के उन सब की एक एक अपनी बुक होती है, तो हमारे ऐसे 14-15 मतलब सिविल इंजीनियरिंग के सारे स्ट्रक्चर्स।
4: ओह माय गॉड, और हम सिर्फ बस एक नजरिया देखकर बता देते हैं कि अच्छा है कि नहीं, और आप उसको डिटेल्स में पढ़ते हैं जाकर। अच्छा मैम, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 12th में होते हैं और वो सोचते हैं कि हमें सिविल इंजीनियरिंग करनी है, तो आप उनके लिए बता सकती है वो किस तरह से इस पोस्ट पर आ सकते हैं, किस तरह से इस जॉब को ले सकते हैं, ड्रीम पूरे कर सकते हैं?
5: मैम देखिए, पहले तो क्या है ड्रीम पूरा करने के लिए कि जो चीज आपने चुना है उस पे आप तो पहले दृढ़ रहिए, क्योंकि जब हम शुरुआत में पे चलते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो हम सोचते हैं कि अब हम थोड़ा सा रेस्ट कर लें या दूसरे पे चले जाएं, तो पहली बात तो मतलब दृढ़ रहना और हमें सब्र करना है कि हम लगातार उस पर चलें जब तक हमें मंजिल ना मिल जाए। कभी कभी एक दो नंबरों से भी हमें लगता है कि, लेकिन इसमें सबसे पहले लगातार बना रहना बहुत जरूरी है। जो मैंने
4: अपना पर्सनल फील किया है। और चाहे आप 2 ही घंटे रोज 3 ही घंटे पढ़ें, लेकिन आप स्किप ना करें चीजों को।
6: मतलब लगातार प्रैक्टिस जरूरी है। अगर आप छोड़ते हैं तो वो चीजें पीछे हट जाती हैं।
4: ये अलग बात है कि किसी को जल्दी मिल सकता है सफलता 1-2 साल, किसी को हो सकता है थोड़ा ज्यादा समय लगे, लेकिन ये कंफर्म है कि अगर आप लगे हैं तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, ऐसा मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है।
6: ओके, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने आर्ट्स ले रखी है 12th में, साइंस ले रखी है 12th में।
4: मैम ये जैसे मैंने डिप्लोमा किया है तो मैं उस पर बता रही हूँ कि 12th आप वैसे इसमें तो 10th अगर आपने साइंस से किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, 12th आपने नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं है, आप 10th हैं साइंस से यानी मैथ से तो आप जो है इसके लिए आप एलिजिबल हैं डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए। फिर आप 3 साल अपने पूरे करें, साथ में तैयारी करें और फिर उसके बाद आप एग्जाम देते रहें, तैयारी करते रहें और एक दिन आपको सक्सेस मिल जाएगी। यही
6: बिल्कुल बहुत ही प्यारी बात कही है आपने कि लगातार मेहनत से ही सक्सेस मिलती है। और ये चीज मेरा भी मानना है कि अगर आप ईमानदारी से किसी चीज में लगे रहते हैं थोड़े स्ट्रगल होते हैं लेकिन आफ्टर ऑल लास्ट में जाकर आपको वही मिलता है जो आपको चाहिए।
4: बिल्कुल मैम, क्यों, क्योंकि मैंने जो है वो मैंने बिहार में 2020 में जॉब ज्वाइन की थी लेकिन जहां आज मैं हूं तो वो 2022 में एग्जाम हुआ है, लेकिन इन 2 सालों में लगातार 2.5 सालों में मैं मतलब पढ़ाई से जुड़ी रही और मुझे लगता है कि उसी का ये नतीजा है उन 2.5 सालों में जॉब करने के बावजूद कि जो मैं आज यहां पे हूं।
6: चलिए, आपकी इस बात से ना मुझे एक और बात याद आई है, लोग जॉब करने के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं ये कहकर कि अब तो जॉब मिल गई अब पढ़ कर क्या करें।
4: जी, ये मेरा कहने का यही मतलब था कि मतलब जॉब देखिए मतलब उनकी अपनी वही दृढ़ इच्छा कि हमें ये करना है। जैसे जॉब करने के बाद लोगों की स्थिति ठीक हो जाती है आर्थिक, तो लोग उतना ध्यान भी नहीं दे पाते हैं।
6: बिल्कुल।
4: लेकिन अगर आपको इससे इतर कुछ इच्छा है कि नहीं मतलब मुझे अपने गृह जनपद जाना है या मुझे और कुछ बड़ा करना है या दिस दैट, तो हमें लगता है कि वो चीज अगर आपके मन में एकदम दृढ़ है तो कोई चीजें आपको रोक नहीं सकती हैं।
6: बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर मुझे लगता है कि आपको कोई नई जॉब नहीं भी चाहिए तो भी आप पढ़ते रहोगे, आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है।
4: अभी भी पढ़ती हूँ, मतलब ये पढ़ाई का लगाव होता है अपना।
6: जी बिल्कुल सही।
4: हाँ, ये मतलब कोई मजबूरी नहीं है, मजबूरी में तो हम बस डर से पढ़ सकते हैं।
6: हाँ बिल्कुल, कि एग्जाम आने वाला है लो अब पढ़ ले,
4: नहीं नहीं तो इससे सफलता नहीं मिलेगी डर से।
6: बिल्कुल सही कहा आपने, इससे सिर्फ हमें नंबर अच्छे आ सकते हैं, सक्सेस नहीं मिलती है। अच्छा, आपने मिट्टी की बात कही थी तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके बचपन की मिट्टी कहाँ पर है।
4: मैम ऐसे बचपन की मिट्टी की बात करें तो मेरा बर्थ तो यही गोंडा से मात्र 30 किलोमीटर पे मेरा जन्म हुआ है, विशेषरगंज ब्लॉक में। और उसके बाद मैम मेरे 1.5 महीने बाद मेरे जीवन भर की मिट्टी अभी तक की कह सकती हैं आप, फिर मेरे अयोध्या माटी में रही है।
6: ओके, और क्योंकि मैं आपके बचपन की बात कर रही हूँ तो आपकी बचपन की कुछ स्पेसिफिक यादें हैं जो आप शेयर करना चाहती हैं?
4: मैम ऐसे तो क्या ही अपने मुंह से मैं कहूँ लेकिन ये है कि मेरे पापा मम्मी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि मैं दूसरे राज्य जाना फिर वहाँ से इधर उधर जाना आना तो उसमें कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं, खास करके जब वो फीमेल हो, उसको समझना, उसका सपोर्ट करना, कई सारी चीजें नेगेटिव भी होती हैं तो उसमें अगर गार्जियन सपोर्ट करते हैं तो मुझे लगता है सारी चीजें संभव और इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती।
6: बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप अपने घर में इकलौती हैं जो सिविल इंजीनियर की तरफ आई हैं या फिर घर में और भी मेंबर्स हैं जो इसी में?
4: मैं इकलौती हूँ अपने खानदान में।
6: ओ माय गॉड, तो ये और भी टफ और थोड़ा अलग लगता है, कॉन्फिडेंस आता है कि मैं कुछ अलग कर रही हूँ।
4: इवन फीमेल ही नहीं, मेल या फीमेल पूरे खानदान में मैं अभी पहली हूँ।
6: अच्छा, मैंने एक चीज नोटिस की है, जब भी हम घर में कुछ अलग करने की बात करते हैं, आपका पूरा फैमिली एक साइड है और हम उनसे इत्र होगी कुछ बात करती कि हम अलग कुछ करेंगे, तो सबसे पहले रिलेटिव्स की तरफ से आता है कि ये करने की क्या जरूरत है, फैमिली की तरफ से भी बहुत रुकावट आ जाती है, बट लगातार आपकी मेहनत आपकी प्रोसेस को देख कर फैमिली सपोर्ट में आ जाती। आपके साथ ऐसा हुआ कि आपके पहले दिन से ही सपोर्ट में थे सब?
4: नहीं मैम, जैसे एक होता है ना कि बचपन से, तो मेरा बचपन से ही ये तो नहीं पता था कि हाँ छोटे में 6 में कि मैं क्या बनूंगी, लेकिन ऐसे कहते कहते एक दूसरे का कि हाँ मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, तो मुझे याद है 5th में मैंने एक बार ये कहा था और शायद माँ सरस्वती मेरे जबान भी विराजमान हो गई और ये कहते हुए मुझे मतलब गूजबम्प्स भी हो रहे हैं कि आज वो मजाक में कही हुई बात आज सत्य हो
6: और वो मुझे दिख भी रहे हैं आपके गूजबम्प्स। और ये बहुत कमाल की बात होती है कि हम बहुत छोटे पर डिसाइड कर लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 12th आने तक डिसाइड नहीं कर पाते हैं, इवन उनके उनके ऊपर भी लग जाता है कि अभी तक तुम डिसाइड नहीं कर पाए हो तो तुम क्या ही कर लोगे
4: मैम। और मुझे लगता है कि मैंने जो इंजीनियरिंग की वो मुझे पता नहीं किसने कहा कि इंजीनियरिंग करना है, मुझे आज तक नहीं पता चला, लेकिन एक बार मैं उस राह पे चल गई तो उसके बाद तो फिर मैं
6: ओके तो मतलब आपको भी इंस्पायर्ड करने वाला कोई ना कोई तो होगा।
4: हाँ मैम, लेकिन वो मुझे नहीं पता है कि किसने मुझे इस पे स्टार्ट कराया।
6: चलिए तो मैम आपसे जानना चाहूंगी कि आपके सुपर हीरो कौन है। सबसे पहले तो आपकी बचपन की बात हो रही है, तो आपकी मम्मी आपके लिए सुपर हीरो है या फादर?
4: मैम ऐसे तो कहें तो, लेकिन अगर ऐसी बात है तो मेरे पापा।
6: पापा
4: क्योंकि मैम माँ है तो माँ थोड़ा कभी कभी अपनी बच्ची के लिए थोड़ा सा वो हो जाती है, लेकिन पापा हमारे अभी आज भी कहते हैं कि मेरी बेटी सब कर लेगी।
6: बिल्कुल, और मुझे लगता है कामयाब बेटियों के पीछे उनके पिता का बहुत बड़ा हाथ होता है। चलिए ये बातें तो थी आपकी अपने बचपन की, अब हम आपके कार्य क्षेत्र की तरफ चलते हैं क्योंकि आप गोंडा में आ चुकी हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मोतिहारी और गोंडा में आपको क्या बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आया है?
4: मैम मोतिहारी गोंडा में बेसिकली जिस कार्य क्षेत्र में मैं हूँ तो वहाँ पे मैं मतलब ब्लॉक में थी, यानी एक ग्राम पंचायत में, वो मैं कुछ ग्राम पंचायतों को देखती थी, और यहाँ मैं नगर पालिका यानी पूरा सिटी सेंटर जिसको आप कह सकती हैं, जिसमें हमारे अभी प्रेजेंट में 27 वार्ड है, तो मैं उनको देखती हूँ। मतलब एरिया की बात कहें तो एक तरीके से शहर क्षेत्र का पूरा एरिया मैं यहाँ देखती हूँ, और वहाँ मैं बस 3-4 पंचायतें देखती थी, 4-5 जो भी।
6: ओके, ये बताइए कि जब आपके फैमिली को पता चला कि आपकी पोस्टिंग गोंडा में होने जा रही है आफ्टर 5 साल जब आपने बिहार में काम किया, तो उनकी फीलिंग क्या थी?
4: मैम अगर सही बताऊं तो जब हमें इसके बारे में ABCD भी नहीं पता था, जिस इस विभाग के बारे में कि कौन सा विभाग मिलेगा, क्योंकि हमारे सिलेक्शन में जब हमारा तो 11-12 डिपार्टमेंट होते हैं, उसमें प्रेफरेंस चूज करनी होती है कि कौन सा, तो मुझे नहीं पता था कि मुझे ये डिपार्टमेंट मिलेगा, और इस वजह से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ब्रॉड जानकारी नहीं थी इसके इस विभाग के बारे में। लेकिन ऐसे ही जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने हमारे और हमने मेरे पापा ने कहा कि यदि प्रेफरेंस भरा जाएगा तो उसके लिए गोंडा भरा जाएगा, और मुझसे और मैंने ये प्रेफरेंस में भरा भी नहीं था, ये भी आप कह सकती हैं कि उस टाइम माँ सरस्वती विराजमान होकर अनचाहे तरीके से मुझे गोंडा मिल गया।
6: क्या बात है, और ये खुशी आपके चेहरे पे दिख रही है, मतलब आप सच में अपने घर वापस आकर एक अलग खुशी होती है, अपने घर वालों के साथ रहने की एक खुशी होती है।
4: हाँ मैम, मैं भी एक बात इस पे कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ा जो डिफरेंस आपने कहा है, 5 साल अपने मिट्टी से, अपनी लैंग्वेज से, अपने कल्चर से मतलब अलग होने के बाद जब यहाँ सिलेक्शन होता है अपने घर के बगल में ही, तो ऐसा लगता है कि हाँ मतलब ये खुशी कुछ अलग होती है कि मैं अपने घर वापस आ गई।
6: बिल्कुल, और क्योंकि मैं भी अपने शहर से बाहर रह चुकी हूँ, मैं भी अपनी मम्मी से दूर रही थी, तो घर आने की एक अलग ही खुशी होती है,
4: खास करके जब वो एक राज्य हो, आपकी संस्कृति बिल्कुल अलग हो वहाँ से।
6: बिल्कुल, भाषा का डिफरेंस होता है, खाने पीने का डिफरेंस होता है, और घर वापस आके एक अलग ही सुकून मिलता है। इवन उस रात जिस रात पता चलता है कि अब घर जाना है, उस रात तो नींद भी नहीं आती है।
4: बिल्कुल बिल्कुल।
6: चलिए फिलहाल लेते एक छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, आपसे बहुत सारी बातें करनी है आपके कार्य क्षेत्र के बारे में। फिलहाल लिसनर एंजॉय करते रहिए, आप सुन रहे हैं गौधली विद आरशुनती और मेरी प्यारी सी को होस्ट, और या फिर कहे तो हमारी प्यारी सी गेस्ट के साथ। स्टे ट्यून्ड। क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
6: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9286 9816 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
6: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
7: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
8: मतलब?
7: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
9: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले शो गौधली में, यानी कि शाम का स्पेशल वाला प्रोग्राम। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आरती उन्नति, और मेरे साथ मौजूद हैं आज गोंडा की एक बेहद ही खास पर्सनालिटी जिनका नाम है निशा त्रिपाठी जी। मैम, वापस से आपका स्वागत करते हैं। तो हमने आपके बचपन के बारे में बहुत सारी बातें कर ली हैं, तो आप बात करते हैं हमारे गोंडा की, क्योंकि हमारे गोंडा की जो लोग हैं, जो आम जनता है, वो आपसे बहुत कुछ जानना चाहती है। तो मैम, मेरा पहला सवाल आपसे बस यही है कि जब आपकी गोंडा में पोस्टिंग हुई थी तो आप किन सपनों के साथ आई थी कि क्या बदलाव लाना है यहाँ पे?
1: मैम, जैसे नगर पालिका की जो बेसिक चीजें हैं जो लोग उनसे यानी आशा करते हैं, वो है हमारी रोड और जल निकासी और पेयजल व्यवस्था, यानी उनकी मूलभूत आवश्यकताएं जो शहर में कोई लोकल बॉडी प्रदान करती है। तो मेरा जैसा कि निर्माण है, तो मेरे में सड़क और आपकी मेनली जल निकासी व्यवस्था आती है। तो मतलब मेरा अभी भी और हमेशा से यही प्रयास रहा है कि मैं गोंडा को सबसे अच्छी सड़क और जल निकासी से मतलब प्रदान कर सकूं, बेहतर से बेहतर इन दो निर्माण मामलों में।
0: ओके, और क्योंकि अभी अभी ही सावन गुजरा है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो गोंडा वाले जगह जगह पे पानी के भराव से बहुत परेशान थे। कहीं कहीं पर तो ऐसा है कि नालियां भी नहीं बनी है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नगर पालिका की तरफ से क्या अभी प्रोग्रेस चल रही है इन कामों को लेकर के?
1: मैम, जैसे बेसिकली हमारे गोंडा में, मतलब हमारी नगर पालिका में, जो भी हमारी सेंट्रल फंड या जो भी राज्य सरकार से या केंद्र सरकार से जो भी हमें धनराशि मिलती है विकास कार्यों के लिए, उसे हम जो है सभी जनप्रतिनिधि जो हमारे सभासद लोग हैं और हमारे जो चेयरमैन मैडम हैं और हमारे जो यानी अधिकारी लोग हैं, उन सभी के सामने जो है सारी चीज़ों को, जो हमारी जल निकासी या जो सबसे समस्याएं हैं, उनका एक जो है हम लोग सेलेक्ट करके उसकी एक जो है मीटिंग रखते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी काम होते हैं धनराशि के अनुसार, उसको हम लोग एकत्र करके फिर उस पर सहमति जैसे सभा के द्वारा, और फिर उसको आगे टेंडर में प्रस्तावित कर देते हैं।
0: ओके, अच्छा मैम, जैसे कि बारिश होती है, लोग कहते हैं अभी अभी सड़क बनी है, एक ही बारिश में ये टूट जाएगी, आप इनकी क्वालिटी चेक करने के लिए कौन कौन से टेस्ट करती हैं?
1: मैम, इनकी क्वालिटी चेक करने के लिए जैसे कि हमारे यहाँ सिविल इंजीनियरिंग में जैसे कुछ अलग अलग टेस्ट हैं, जो आपके लैब टेस्ट जिनको कहते हैं, जैसे आपके मटेरियल जो यूज होते हैं, जैसे कि आपकी स्टोन हो गया, जिनको हम लोग स्टोन ग्रिट या कोर्स एग्रीगेट या फिर फाइन एग्रीगेट बोलते हैं, उनकी क्वालिटी हम जैसे सैंपल ले लिया हमने क्यूब वगैरह और कुछ मसालों का, वो हम लोग लैब टेस्ट करते हैं, जैसे हमारा क्यूब टेस्ट हो गया और यही सब, ये सब करते हैं हम लोग।
0: ओके, तो मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब एक सड़क बनती है तो क्या अनुमान लगाया जाता है कि कितने सालों तक ये सड़क चल सकती है और कितने सालों बाद इसको दोबारा से बनवाना पड़ सकता है?
1: मैम देखिए, हम लोग बेसिकली सीसी, जो सीसी सड़क होती है जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग में जो रिटर्न है, वो तो उसकी एज लगभग 20 साल मानी गई है, लेकिन मान लीजिए हम ये मानते हैं प्रैक्टिकली कि कम से कम 5 से 7-8 सालों तक उस पे मेंटेनेंस की कोई आवश्यकता ना पड़े, अगर वो बेहतर बढ़िया रोड बनी है। उसके बाद हो सकता है कि थोड़ी बहुत मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़े, लेकिन 5 से 8 साल वो हमें एकदम बढ़िया सेवा दे, जो ठीक ठाक रोड बढ़िया।
0: ओके, एंड सीसी रोड और इंटरलॉकिंग रोड में क्या अंतर है?
1: मैम, सीसी रोड बेसिकली देखा जाए तो आपका एक हार्ड सरफेस होता है जो सीमेंट कंक्रीट से बना होता है, और जो है इसकी कॉस्ट अधिक आती है थोड़ा। और इंटरलॉकिंग जो होती है वो हमारी सीसी की ब्रिक्स होती है, कंप्रेसिव ब्रिक्स होती है, तो वो हम जो है एक तरीके से बिछाते हैं और ये थोड़ा हमारी सीसी से सस्ती होती हैं। लेकिन हम जो है कुछ खास पर्पज या कुछ खास जगहों को देखकर डिसाइड करते हैं कि यहाँ कौन सा ज्यादा बेहतर होगा।
0: जैसे किसी बिल्डिंग के अंदर मुझे इंटरलॉकिंग सड़कें ज्यादा नजर आती हैं, अगर हिसाब से देखा जाए तो।
1: एक्चुअली क्या है कि जो हमारे मोहल्ले की गलियां होती हैं, उनमें जैसे लोड बियरिंग जैसे कोई बहुत ज्यादा नहीं है लोगों के, आम जन सुविधाओं के चलने के लिए है, तो वहाँ इंटरलॉकिंग बेस्ट है, या फिर मीडियम वाहन के लिए ये सीसी वगैरह भी हम प्रेफर करते हैं, हैं, लेकिन सीसी वगैरह जो है हम लोग जो है मेन सड़कों पे ज्यादा प्रेफर करते हैं, सीसी या डामर,
0: इवन हाईवेज पर।
1: हाँ, लेकिन इंटरलॉकिंग बेसिकली गलियों में हम ज्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसा कोई ये नहीं है कि कोई जियो है कि नहीं यही होगा, लेकिन जो प्रैक्टिकली है।
0: ओके, यानी कि कॉलोनीज के अंदर जो आपको सड़क नजर आती है वो इंटरलॉकिंग नजर आती है, और जो आपको रोड पर यानी कि हाईवेज की तरफ नजर आती है वो होती है सीसी रोड्स। ऑलराइट, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि बरसात में सबसे पहले रोड कौन सी खराब होती है?
1: मैम, बरसात में रोड खराब होने का कोई ये नहीं है कि सीसी है तो ये खराब हो जाएगी, वो बनाने के उस पर डिपेंड करता है कि आपने कितना कितने बढ़िया से उसका जो है सब बेस सब ग्रेड आपने बेहतर बनाया है। और हम लोग कोई भी चीजें जो है फर्स्ट क्लास या 100% यानी उस पर ही बनाया जाता है कि हमारी 100% सेवा अच्छी से दे सके। लेकिन जो है मुझे ऐसा लगता है कि अगर अच्छे से बनाया जाए तो तीनों सड़क बिना कोई शिकायत के, मतलब डामर रोड आप कह सकते हैं, सीसी रोड कह सकते हैं और इंटरलॉकिंग रोड, ये तीनों आपकी अच्छे से सेवा देंगी, बस वही स्थान और मतलब आपका माध्यम अलग हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, मैंने एक चीज नोटिस की है, सड़कों पर जो गलियों में ब्रेकर बनाए जाते हैं कई लोग उसको बहुत ज्यादा बनवा लेते हैं।
1: मैम देखिए, अगर वो पर्सनली बनवाएंगे तब तो उनका कोई अपना मानक होता नहीं है, वो अपने हिसाब से बनाते हैं। लेकिन यदि हम बनवाते हैं तो हम जो है अपने जियो को देखते हुए, अपने सड़क की स्थिति यानी लोकेशन को देखते हुए बनाते हैं।
0: और कुछ ब्रेकर्स बहुत बड़े होते हैं, ऐसा लगता है कि उस पे बहुत भारी गाड़ी जाने वाली है, कई बार उस पे चढ़ के जाना पड़ता है। एक वो होता है कि आपने दूसरा पैर रखा तो आप ब्रेकर पार कर जाते हो, कुछ इतने भी बड़े होते हैं जो मुझे चल के जाना पड़ता है, उसके ऊपर से निकलना पड़ता है।
1: मैम वैसे ऐसा तो हम जो हमारी नगर पालिकाओं में गली मोहल्ले में ज्यादा काम होता है वैसा तो हम लोग कभी जल्दी नहीं ही बनवाते हैं, ऐसा तो नहीं बनता है। लेकिन हो सकता है आपने कहीं ऐसी जगह देखी हो हाईवेज पे या जो हमारे नगर पालिका में नहीं,
0: हाईवेज के अंदर नहीं, मेनली गलियों के अंदर ये चीज मैंने देखी है कि जो ब्रेकर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं और अक्सर लोग बहुत स्पीड में आते हैं और उसी से टकरा जाते हैं।
1: अब ये मैम कोई स्पेशल ऐसा होगा, हम लोग जो है ऐसा कभी भी प्रोवाइड या फिर सजेस्ट नहीं करते हैं एज जियो।
0: अच्छा मैम, मैंने एक चीज नोटिस की है, क्योंकि आप नगर पालिका से हैं और आपको भी पता है, इवन बाकी लोग भी समझा रहे हैं, सरकार भी समझा रही है, जो समाज की सेवा कर रहे हैं वो भी लोगों को समझाते रहते हैं कि नालियों में पन्नी ना फेंके। इस बात से आई होप आप भी बहुत ज्यादा परेशान रहती होंगी, क्योंकि मेनली जो पानी का भराव होता है।
1: बिल्कुल मैम, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: जब भी मैं पानी पूरी खाने जाती हूं, मैं एक बार उसका डस्टबिन जरूर चेक करती हूँ।
0: हाँ,
1: और मतलब इवन कहीं भी हो, अगर उसने इवन किनारे भी रखा है तो मैं उसको बोलती हूँ सामने रखो, और उसने गंदगी फैला रखी है तो वो चाहे जहाँ कहो मैं उसे एक बार बोलती जरूर हूँ कि पहले इसको साफ करो और इसको। ये मेरा अपना पर्सनल है, इवन मैं मतलब शहर कोई सा भी हो, कोई मुझे देख नहीं रहा है, लेकिन वो होता नहीं है कि मैं अपनी बोतल कहीं भी फेंक दूँ। ये मुझे लगता है कि एक जिम्मेदार नागरिक कह लीजिए या इस सेवा में आने का एक पर्सनल एक्सपीरियंस कह लीजिए।
0: बिल्कुल, और ये चीज मैंने भी बहुत नोटिस की है, जो गोंडा में एक तो नालियां जो बंद हो रही हैं उसके पीछे की वजह है कि उसमें कचरा फंस चुका है।
1: बिल्कुल मैम, देखिए मैं बताऊं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसी बात कहते हुए, लेकिन मैंने जो देखा है गोंडा में, मैं सभी गोंडा वासियों से अपील भी करना चाहूंगी कि आप लोग एक समझदार और जिम्मेदार नागरिक हैं, यदि आपको आपकी लोकल बॉडीज आपको सुविधाएं प्रदान कर रही है तो कृपया उसे सहयोग करें।
0: बिल्कुल,
1: ना कि जो है आप ऐसी जो है अव्यवस्था फैलाएं, कि जैसे मैंने देखा कि जब कूड़ा आपके यहाँ रोज उठाने आते हैं, हालांकि वो हमारे स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की बात है, लेकिन यदि आपने पूछा है तो मैं आपको ये बात कह रही हूँ इसके माध्यम से, ताकि लोग समझें और मेरी इस बात को शायद 50% भी अगर वो
0: बिल्कुल अगर कोई भी मेरी बात मानता है तो शायद जो डस्टबिन रखे हैं तो डस्टबिन के अंदर कूड़ा दिखेगा, बाहर नहीं।
1: हर गली में लोग जो है अपना कूड़ा और कुछ ऐसे जो है खाने की चीजें जो है ऐसे सड़क पे ओपन कर देते, जब वो रोज आता है आपके कूड़े डोर टू डोर कलेक्शन, तो आपको क्या जरूरत है ऐसे करने की, और बहुत ज्यादा बदबू और बहुत ज्यादा वो गंदा लगता है। तो मेरी यही अपील है कि ऐसा ना करें।
0: बिल्कुल, इवन आपने भी देखा होगा सड़क पे चलते फिरते डस्टबिन रखे रहते हैं लोग, उसके अंदर कूड़ा ना डाल के उसके चारों तरफ कूड़ा डाल
1: और
0: के रहते।
1: ये गोंडा में जो है लगभग 70-80% यही समस्या, अच्छे अच्छे गलियों और मोहल्लों में।
0: बिल्कुल, और हर कोई उसी से परेशान है कि स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, बट वही काम है कि हमें डालना वही है, क्यों तो हम क्यों करें,
1: ये हम और आप सुनिश्चित करेंगे ना।
0: बिल्कुल,
1: इसको कैसे बढ़िया, ये हमारा हमारी आपकी जिम्मेदारी है।
0: ये बात आपने बिल्कुल सही कही, ये हमारी जिम्मेदारी है, हर चीज हम सरकार के ऊपर नहीं डाल सकते, हर चीज हम उनके ऊपर नहीं डाल सकते जो समाज की सेवा कर रहे हैं, कि सफाई भी वही करेंगे, कूड़ा भी वही उठाएंगे।
1: सरकार हमें सुविधाएं दे रही है लेकिन उसको मेंटेन और सस्टेन करना हमारी जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए अब बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने आपसे बात की थी नक्शे की और आपने कहा था कि भाई ये आपका नहीं है, बट मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इसका अप्रूवल कैसे होता है।
1: मैम जैसे कि नक्शे में बिल्डिंग के बारे में अगर आप बात करें तो दो प्रकार के बेसिकली, जैसे हमारे नगर पालिका के अंतर्गत जितने भी जर्जर और पुराने भवन है जो कि अभी कभी भी गिर सकते हैं, दुर्घटनाग्रसित हो सकते हैं, उनका जैसे हम लोग सर्वे कराते हैं कि कौन कौन से ऐसे भवन हैं, और फिर उनको नोटिस देते हैं उनके मतलब जो मालिक हैं। उसके बाद यदि हमारे पास कोई ऐसे रिक्वेस्ट आती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि हमें ये भवन गिराना है, तो वो नगर पालिका से परमिशन मांगते हैं, तो हम और जो है PWD हम दोनों मिलकर उस भवन का निरीक्षण करते हैं और अपनी सम्मिलित रिपोर्ट देते हैं या उनको परमिशन देते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि हाँ ये भवन आप गिरा सकते हैं ताकि भविष्य में किसी को जनहानि ना हो।
0: ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कि एक नाली का डिजाइन कैसे किया जाता है, क्योंकि कई गलियों में तो है ही नहीं
1: जी,
0: और कई लोग चाहते तो हैं बट उन्हें लगता है कि नगर पालिका खुद ही आकर बनवाएगी, हम क्यों जाकर बताएं।
1: मैम बिल्कुल बनवाएगी, हमारा काम ही यही है जन सेवा करना उन आपकी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए।
0: बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आप बनवाएंगे लेकिन कहीं ना कहीं इन्फॉर्म करना भी जरूरी होता है। अगर आप कहीं रह रहे हो वहां पर नहीं है तो सड़क पर पानी भर रहा है, कोई किधर भी पानी फेंक रहा है, लेकिन वो इन्फॉर्म करने नहीं जा रहे हैं नगर पालिका को कि यहाँ पर हमें नाली की जरूरत है।
1: नहीं मैम, अभी ऐसा तो आज नहीं कह सकते 100%, क्योंकि नागरिक अब हमारे जागरूक और जिम्मेदार हो गए हैं, तो हमारे पास कई सारी एप्लीकेशन आती है और उनका हम 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ज्यादा से ज्यादा हम
0: कोशिश
1: करने की कोशिश करते हैं भी कि हमसे हो जाए, तो ये एक हमारी ड्यूटी भी है और हमें अच्छा लगेगा कि हम किसी की परेशानी दूर कर पाए।
0: बिल्कुल, और जो नहीं भेज रहे हैं अगर आपकी गली में नहीं है तो एप्लीकेशन भेजिए, मैम इंतजार कर रही है आपका। चलिए मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि एक नाली का डिजाइन कैसे किया जाता
1: है। हाँ मैम, ऐसी भी बात नहीं है, बहुत समाज में हमारे बहुत तरीके के लोग हैं, हमने कई सारे काम करवाए हैं, तो लोग हमारे व्हाट्सएप पे और आ करके लोग थैंक यू भी बोलते हैं, ऐसी बात नहीं, हमारे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मैडम धन्यवाद, इसको आपने मतलब अपने ऐसा जरूरी समझा, नगर पालिका की मतलब जिम्मेदारी फिक्स की, यहाँ पे अच्छा लगा मुझे।
0: बिल्कुल, अच्छा मैम आपसे पहले तो मैं यही सवाल करूंगी कि नाली का डिजाइन कैसे किया जाता है, उसकी लंबाई चौड़ाई ढलान के बारे में, और उसके बाद मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये रोड पर जो लाइट्स लगती हैं इसका जिम्मेदार कौन होता है।
1: मैम देखिए, नाली की डिज़ाइन के बारे में बात करें तो बेसिकली हम जैसे फिजिकली किसी एरिया में जाते हैं तो उसका जो है भौगोलिक स्ट्रक्चर जो होता है, यानी वो ढलान उसकी कैसी है, आसपास उसके जैसे हमारा एग्जिट

0: निकाल दिया वैसे रोड पे बह रहा है, या बहुत लोग उसे गड्ढा टाइप का खोद लेते हैं, यानी जिसमें पक्का वर्क ना हुआ हो, आप ये कह सकते हैं वो आपके कच्चे नाले हैं। और आरसीसी नाले यानी जिसमें आपने जो है गिट्टी के साथ सरिया यानी रेनफोर्समेंट यूज किया हो, यानी बेहतर तरीके से पक्का निर्माण, उसे हम आरसीसी नाला कहते हैं।
1: ओके, चलिए मैम आपसे एक पर्सनल सवाल है कि नगर पालिका का जो बजट होता है वो बहुत सीमित होता है।
0: हाँ जी बिल्कुल मैम।
1: तो आप उसे कैसे मैनेज करते हो?
0: मैम फिर वही, हमारे पास काफ़ी सारी एप्लीकेशंस, काफ़ी सारे जो है सभासदों के भी माध्यम से काफ़ी सारे प्रस्ताव आते हैं जरूरी कामों के। तो मैम हम जैसे सभी साइटों पे जाना पड़ता है, उसमें से देखना पड़ता है कि कौन सा बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, तो प्रेफरेंस तय होती है, उसके आधार पर हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सकते हैं उतने काम हम लेते हैं। और यदि कुछ मान लीजिए बच गए काम, तो उनको हम नोट करके रखते हैं कि आने वाले आगामी बजट में हम इसको जरूर शामिल करेंगे, प्रेफरेंस हम इसी की रखें।
1: ओके, यानी कि जो पहले प्रायोरिटी पर होता है हम उसे कंप्लीट करने की कोशिश करते
0: जी,
1: हैं।
0: जी जी।
1: चलिए मैम, आप फील्ड पे काम करने जाती हैं, तो एक महिला के रूप में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है?
0: मैम जैसे क्या है कि महिला तो आप कह सकती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा जो पहले 5 ईयर का एक्सपीरियंस रहा है उसने मुझे यहाँ न्यूट्रल कर दिया है, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि बाकी देखिए आपके बोल्ड रहने पे सब कुछ डिपेंड करता है।
1: बिल्कुल,
0: आप बोल्ड हैं तो ऑल इज वेल, मतलब आपको जैसे सामने भी जो लोग हैं यदि आप उनको यानी सपोर्ट कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से आप क्वालिटी मेंटेन करवा रहे हैं, तो मुझे लगता है वो भी आपको उतनी ही वैल्यू देंगे जितनी कि कोई मेल को देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपको कभी भी फील नहीं होगा, लोग आपका सपोर्ट करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे और आपके दिए हुए निर्देशों का वो अच्छा सा पालन करेंगे। ऐसा हमारी नगर पालिका में है, इसलिए मैंने कहा।
1: और मुझे लगता है आप किसी भी फील्ड पे हो, अगर आप अपनी बात कॉन्फिडेंस के साथ रखना जानते हो तो लोग आपको सुनते हैं।
0: बिल्कुल मैम, यही मेरा एग्जैक्टली
1: बिल्कुल
0: मतलब है,
1: क्योंकि बहुत सारे लोग इस फील्ड में आने से पहले ही थोड़ा सा झेप जाते हैं सोचकर कि कोई मेरी बात सुनेगा कि नहीं सुनेगा, एज अ फीमेल मैं कितना अच्छा काम कर पाऊंगी। और आपसे यह जान के अच्छा लगा कि अगर आप बात कॉन्फिडेंस के साथ करते हो तो हर कोई आपका सपोर्ट करता है।
0: जी मैम बिल्कुल, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कह सकते हैं आप इसको, और मुझे लगता है कि चीज़ें बढ़िया से आप समझ पाएं। देखिए सीखना तो जीवन भर कुछ ना कुछ रहता है, कोई कोई कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है, वो काम करते करते ही सीख रहा है। इवन मैं भी सीख रही हूँ, ऐसा नहीं कह सकती कि
1: बिल्कुल
0: सभी कुछ पता है, लेकिन बोल्डली आप रहें तो आपको कभी नहीं लगेगा कि यू आर फीमेल।
1: बिल्कुल। अच्छा मैम एक बात पूछना चाहूँगी, आप इस फील्ड में आने से पहले और अब में अपने अंदर क्या फर्क नोटिस करती है?
0: मैम देखिए जब आप किसी चीज़ में पढ़ाई के, देखिए पढ़ाई एक अलग चीज़ है और फील्ड में उतरने के बाद प्रैक्टिकली जो हम महसूस करते हैं, जो हमें काम करना, वो थोड़ा अलग है।
1: बिल्कुल।
0: तो मतलब कुछ चीज़ें तो आपकी पढ़ाई काम आती हैं जो हमने पढ़ा है, और कुछ चीज़ें आपको काम करते करते आपको एक एक्सपीरियंस होता है। तो शुरुआत में हो सकता है थोड़ा आपको कम पता हो या चीज़ें आपको कम समझ में आती हों, या लेकिन काम करते करते जब वो थोड़ा समय बीत जाता है तो आपको लगता है कि हाँ मतलब सब कुछ पॉसिबल है, हाँ मैं सब कुछ कर सकती हूँ।
1: बिल्कुल सही कहा आपने कि पढ़ाई से थोड़ा अलग होता है प्रैक्टिकल लाइफ को देखना, और वो प्रोसेस से ही आता
0: हाँ,
1: है।
0: बिल्कुल।
1: चलिए अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप हमारे गोंडा वालों से ऐसी क्या बात कहना चाहती हैं जिसको अगर वो मान ले, अपनी आदत में डाल ले, तो हमारी सड़क और नाली, उनकी जो जिंदगी है, उनका जो जीवन काल है, वो 50% ज्यादा बढ़ जाएगा।
0: मैम सबसे पहले और दोबारा मैं यही कहना चाहूंगी कि सबसे पहले और सबसे पहले क्या, मैं हमेशा हमेशा यही बात कहूंगी कि जो वो कूड़ा अपने घर के सामने या गली में डालते हैं वो एकदम डालना बंद कर दें। और यदि मतलब जब वो आपका डोर टू डोर कलेक्शन होता है, हमारे नगर पालिका से होता है, इस चीज को मैं इंश्योर भी करती हूँ, हालांकि मेरा सेक्शन नहीं है, फिर भी मैंने देखा है ये सत्य है, तो आपको अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने दरवाजे पे गंदगी करने की क्या जरूरत है?
1: बिल्कुल, अपने घर का कचरा निकाल के बाहर फेंकने की क्या जरूरत है जब हर सुबह नगर पालिका की गाड़ी आती है।
0: बिल्कुल।
1: चलिए, और नालियों में तो बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि ये आप ही को बीमार करते हैं बाद में जाकर के, कहीं ना कहीं पानी रुकता है, पानी में मच्छर होते हैं, फिर आप ही के बच्चों को मलेरिया, डेंगू और ये सारी चीजों का सामना करना पड़ता है।
0: मैम अगर सरकार आपके प्रति इतना इतना उत्तरदायी है, इतना आपके लिए वो सुविधाएं दे रही है, तो इसमें आपको अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि हमें सब कुछ मिल रहा है, तो उस चीज को कम से कम हम सस्टेन करें, बहुत सारी जगह तो ये सुविधाएं भी नहीं पहुंच पाती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए अब मेरा ये आखिरी सवाल है आपसे कि क्या नगर पालिका की तरफ से हमारे गोंडा वालों के लिए कोई योजना चलाई जा रही है?
0: मैम ऐसे तो

0: बहुत सारे विभागों में बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन अभी तो फिलहाल हमारे यहाँ तो हम आपको यही दे सकते हैं कि आप बताएं आपके घर, आपके मोहल्ले, आपके गली में, हम यानी निर्माण विभाग हमारा आपके सड़क और जल निकासी को सुधारने के लिए तत्पर है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत कुछ जानने को मिला, इवन आपकी लाइफ से, आपकी बातों से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली है। अपनी बात को बोल्डली कहना, कॉन्फिडेंशली कहना, अपनी बातों को कह देना बस कॉन्फिडेंस के साथ, ये बहुत ही बखूबी बात कही आपने। थैंक यू सो मच, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो श्रोताओं, ये थी हमारे साथ हमारी आज की बहुत ही स्पेशल गेस्ट, बहुत ही खास पर्सनैलिटी निशा त्रिपाठी जी, जो कि हमारी नगर पालिका से जेई है सिविल से, और मैं थी आपकी अपनी आशीर्वादी। फिलहाल के लिए वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, तो रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं गोंडा का अपना एफएम रेडियो कैनसली 89.6 एफएम। बाय बाय, टेक केयर, फिर मुलाकात होगी।
2: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गोंडा सुनेगा अपना FM।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
6: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
6: आज ही कॉल करें 9281-976-9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
5: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
6: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
7: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
8: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
8: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
9: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
10: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
11: अरे सुना?
12: क्या?
11: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
12: वाओ!
11: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
13: हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियां यानी पानी से होने वाली बीमारियां, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियां हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
14: आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात। Thought of the day and what happened to this day. जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

गणपति का दिवस चल रहा है और आज है एक ऐसा पर्व जिसका इंतज़ार सबको बहुत दिनों से था, यानी कि जन्माष्टमी के बाद से था। आज है राधा अष्टमी और आप सभी को इस पावन पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड यस ऑफ कोर्स, अभी जल्दी दिल्ली में हुए ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में भी आज मैं बात करने वाली हूँ आप लोगों से। कुछ सवाल करूँगी और उनके जवाब जो सबसे पहले देगा उनको मिलेगा मौका डॉक्टर लव से सबसे पहले कॉल पर बात करने का। तो भाई कौन कौन कहाँ कहाँ है, जल्दी जल्दी से उठ जाइए। आरजबीना आपके साथ है बात करने के लिए और यस डॉक्टर लव भी आपके पास कुछ ही देर में होंगे, पर उससे पहले क्यों ना हम सुन लें ये प्यारा सा गाना।

0: सारेगामा कारवां।
1: सो भाई आप लोग के साथ आज करनी है बहुत सारी गुफ्तगू, और भाई इस गाने ने तो ऊर्जा आप लोगों के अंदर भरपूर भर दी होगी, और भरनी भी चाहिए भाई, क्योंकि आज एनर्जी वाला डे है। लेकिन एक ऐसा गाना जिसको एनर्जी का पावर पैक मेरे लिसनर्स बोलते हैं, तो वो गाना मैं आप लोगों को प्ले करके बताती हूँ। लेकिन उससे पहले भाई सवाल ये है कि मैंने कहा था ना ब्रिक्स के बारे में बात करूँगी। ब्रिक्स जो सम्मेलन हुआ है दिल्ली में, हाँ ये तो आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह में देखा ही होगा। अच्छा, इसमें इस बार कितनी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, ज़रा सोच सोच के बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, और फिर इसके बाद में मैं आपके मतलब की बात भी बताऊंगी कि आपके फ़ायदे की कौन सी बात उसमें डिस्कस हुई। तो जो आंसर सबसे पहले देगा उसको डॉक्टर लव से पहले बात करने का मौका मिलेगा। वैसे तो कॉल जिसका पहले आएगा वही बात करेगा, बाकी उसे बात हम करते रहेंगे। चलिए सुनते हैं ये एनर्जी वाला गाना फ्रॉम धुरंधर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी करें 72 34 020 202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
4: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 901-935-5394 और 872-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
5: ये वही मैं हूँ और ये वही तुम हो। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास? क्या तुम्हारे पास?
6: आज मेरे पास डॉक्टर लव है, जिनके पास रिश्तों की हर प्रॉब्लम का सलूशन है। डॉक्टर लव, द मैटर ऑफ हार्ट इज हिज आर्ट।
7: तो भाई हमारे साथ मौजूद हैं आपके अपने और मेरे भी अपने ही हैं, क्योंकि मेरे को सैलरी देते हैं एज अ कंपाउंडर की अपने दुकान पे। फिलहाल तो यहाँ तो मैं ही देती हूँ सर को सैलरी, डॉक्टर साहब को। तो साहब जी कैसे हैं? डॉक्टर साहब जी
8: एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।
7: आपके मरीजों ने आपका नाचते हुए स्वागत किया, ये मुझे देख के अच्छा लगा।
8: मतलब स्वस्थ हो गए होंगे तो नाच रहे होंगे।
7: हाँ ये बात तो है ही, ऐसा नहीं है। मैंने तो सुना है कि मतलब लोग किसी को कहीं भेजना चाहते तब भी बहुत नाचते हैं, जैसे कि गणेश जी की विदाई करते तो नाचते हैं।
8: जब गणेश जी को लाते हैं तब भी तो नाचते हैं।
7: हाँ, तो ये में तो बहुत कम नाचते हैं।
8: अच्छा, जाते जाते में नाचते हुए देखा
7: नहीं, ये बात है ना।
8: नहीं, वो धूम मचा रहे हैं, धूम मचा ले धूम।
7: हाँ,
8: वो विसर्जन इस बात का प्रतीक है कि एक बार आगमन फिर से होगा।
7: विसर्जन क्या मतलब, ये सब त्योहार जो हैं हमें हमारी जो एक रेगुलर वाली जिंदगी उससे थोड़ा सा
8: हाँ अलग करते हैं, यही है वास्तव में त्योहार, यही है।
7: इनफैक्ट दूसरी चीजें अगर ये भी देखें कि अगर हम एक ही काम रोज करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपनी जो संस्कृति है, संस्कृति भी नहीं कहें, अपने जो बहुत दिनों से चलती आ रही है कस्टम्स हैं, अपनी ट्रेडिशंस हैं, वो विलुप्तिकरण का हो जाएगा।
8: मतलब इसलिए बहुत जरूरी है कि एकदम
7: जैसे हमारे यहाँ हमारे दादी वादी थी, वो मिर्चें मतलब घुमा के हमारी नज़र उतारती थी, कोई कुछ करके नज़र उतार, अगर वो चीज़ें हम नहीं करेंगे तो शायद हमारी जनरेशन को पता ही नहीं चलेगा ये भी कुछ होता है।
8: हाँ ये भी कुछ होता है, मतलब चीज़ें विलुप्त हो जाएंगी, जैसे डायनासोर विलुप्त हो गए।
7: हाँ मुझे तो लगता है इंसान भी विलुप्त हो जाएंगे।
8: नहीं आप तो होमो सेपियंस को सबसे कमज़ोर प्राणी बनाया था कुदरत ने, लेकिन देखिए राज कर रहा है।
7: अब होमो सेपियंस जाने भाई, इसके अंदर कुछ तो क्वालिटी थी।
8: ब्रेन था।
7: हाँ, अरे ब्रेन तो इसके पहले वालों के पास भी था, वो रामापिथेकस के पास नहीं था ब्रेन?
8: हाँ नहीं था, लेकिन मतलब वो उतना डेवलप नहीं कर पाए, उतना विकास नहीं कर पाए।
7: अरे रामापिथेकस थोड़ा सा मतलब इधर उधर भागने के चक्कर वो स्थायी नहीं हो पा रहा,
8: स्थायी नहीं हो पा रहा,
7: दिक्कत उसके साथ ये थी। फिलहाल कोई बात नहीं, मैं रामापिथेकस किताबों में है फिलहाल, हम
8: माने
7: राज कर रहे हैं। भला आपको क्या लगता है, हमारे बाद भी कोई आ सकता है?
8: हाँ बिल्कुल, मतलब
7: लेकिन आपका क्या, आप तो मतलब आप तो कह रहे हैं कि आपने पता नहीं कितनी गैलेक्सीज पे विचरण किया,
8: विचरण किया है मतलब। लेकिन
7: गुड इवनिंग धर्मेंद्र जी, हरीश चंद्र जी, नागेश्वर जी, क्या हाल है, कैसे हैं, क्या हाल है सबके? 6393314429 सबका नंबर इंतजार कर रहा है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए
8: जी, पूछिए।
7: एक गाना मैंने सुना बड़ी जल्दी, मतलब बहुत पुराना गाना था लेकिन सुना अभी जल्दी तो बता रही हूँ, वैसे सुना पहले भी था। गाना है कि कर दे मुश्किल जीना, जैसे आप लव डॉक्टर हैं, लव का पर्यायवाची इश्क भी है मैंने सुना है। कर दे मुश्किल जीना इश्क कमीना, मतलब इश्क क्या कोई मतलब एक इंसान है या कुछ है?
8: नहीं,
7: उसको गाली क्यों दी गई?
8: गाली नहीं दी गई, उसने कर दिया गया कर दे मुश्किल जीना, और जब इश्क आता है तो कोई भी कमी नहीं रह जाती है, कमी ना।
7: संधि विच्छेद की यहाँ पे
8: जी बिल्कुल, संधि विच्छेद आप कर लीजिए तो वो गाने, जैसे गुलदार साहब ने गीत लिखा बीड़ी जले ले जिगर से पिया,
7: कर दे मुश्किल जीना इश्क कमी ना,
8: कमी ना, मतलब अगर आपके पास जिंदगी में इश्क है तो आपको किसी चीज की कमी नहीं है।
7: वाह वाह वाह, क्या मतलब संदर्भ सहित व्याख्या आपने की है डॉक्टर लव, आप मानना पड़ेगा कि मतलब कहना पड़ेगा कि आप हैं,
8: हम हैं,
7: दिमाग है आपके पास,
8: दिमाग है। अच्छा चलिए, हाँ हम असलियत में जब सुबह उठते हैं तो अपने घुटने में नूरामेंट और आयोडेक्स दोनों थोड़ा थोड़ा लगा के मिक्स करके मल लेते हैं तो दिमाग बहुत बढ़िया काम करता है।
7: मतलब घुटने में लगाते हैं आप?
8: हाँ घुटने में लगाते हैं, तभी तो दिमाग बढ़िया काम करेगा। अगर आप चाहते हैं आपका दिमाग भी बढ़िया काम करे तो लगाना
7: शुरू करें। नहीं नहीं, मेरा जितना काम करे उतना ही ठीक है, ज़्यादा काम नहीं करवाऊंगी क्योंकि मुझे लंबा चलाना है। आपका क्या है, आप सदियों से चलते आ रहे हैं,
8: आदि पुरुष अभी तक हैं।
7: चलिए
8: चलिए,
7: फिलहाल ये बताइए डॉक्टर साहब
8: जी,
7: हमारे एक श्रोता हैं
8: जी, श्रोता हैं आपके?
7: वैसे तो बहुत सारे श्रोता हैं,
8: वैसे बहुत सारे श्रोता हैं,
7: और उन एक श्रोता को समस्या क्या है?
8: समस्या क्या है
7: उनको? समस्या ये है,
8: ये है
7: कि उनकी पत्नी,
8: पत्नी
7: जब उनसे ऊंची आवाज में बात करती हैं,
8: हाँ,
7: तो इनको बहुत गुस्सा आता है।
8: गुस्सा आता है, हाँ आना भी चाहिए।
7: और जब ये उल्टा गुस्सा कर देते हैं,
8: हाँ,
7: तो इनकी पत्नी इनसे बात नहीं करती है,
8: हाँ,
7: तो ये दुखी हो जाते हैं,
8: तो दुखी हो जाते हैं,
7: तो सोचते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए,
8: नहीं करना चाहिए,
7: लेकिन इनकी पत्नी ऊंची आवाज में बात करती है,
8: हाँ,
7: तो वो क्या करें, गुस्सा करें या पत्नी को चुपचाप रहने दें, या दुखी हो या ना हो?
8: देखिए ऐसा है, एक बार एक शेर और एक गधे में
7: अच्छा
8: बहस हो गई।
7: अच्छा
8: ठीक, सभी
7: मतलब शेर और गधे में?
8: हाँ।
7: Are you gone mad?
8: नहीं मैं बिल्कुल बिल्कुल,
7: शेर को क्या जरूरत पड़ी गधे से?
8: पंचतंत्र की कहानी में लिखा है, मतलब बाघ, बाघ समझते हैं आप, रॉयल बंगाल टाइगर।
7: अच्छा
8: तो दोनों में बहस हो गई। सभी पत्नियों को ये प्रेरक प्रसंग सादर समर्पित, और पतियों को भी। अब इसको आप किस ढंग से लेते हैं आप देखिए, तो शेर और मतलब बाघ और गधे में बहस हो गई।
7: अच्छा,
8: गधे ने कहा कि जो घास है ये काली है, बाघ ने कहा नहीं घास काली नहीं है, घास हरी है। गधे ने कहा नहीं तुम देख नहीं पा रहे हो, घास काली है। बाघ ने कहा नहीं घास हरी है। बहस बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि मामला जो है वो हुआ कि अब भाई अब जो न्याय कर रहा है उसको बुलाया जाए। तो शेर को बुलाया गया, कहा साहब आप देखिए ये कह रहा है, गधा कह रहा है कि घास काली है और मैं कह रहा हूँ घास हरी है, अब आप निर्णय कीजिए। तो जंगल के राजा शेर ने निर्णय दिया कि घास काली है बाघ को 3 महीने की सजा दी जाती है कैदी बामुशक्कत।
7: अच्छा अच्छा।
8: अब घोड़ा चला गया तो बाघ ने पूछा शेर से, महाराज की आप भी जानते हैं कि घास हरी है, फिर आपने मुझको सजा क्यों सुनाई? तो जंगल के राजा शेर ने पूछा कि ये बताओ तुम बहस किससे कर रहे थे? तो उसने कहा जी गधे से। तो जंगल के राजा ने कहा ये जानते हुए भी कि सामने वाला गधा है, अगर आप उससे बहस कर रहे हैं तो सजा आपको मिलनी चाहिए, अतएव पत्नियों के कुछ भी कहने पर अगर पतियों को क्रोध आता है तो गलती पतियों की है, सजा उनको मिलनी चाहिए।
7: अच्छा
8: जी।
7: अच्छा, तो सजा उस हिसाब से पुरुषों को भी मिलनी चाहिए।
8: हाँ, पुरुषों की बात कर रहा हूँ कि अगर पत्नी के गुस्सा होने पर वो भी गुस्सा हो रहे हैं तो इसमें गलती पुरुषों की है, उनको गुस्सा नहीं होना चाहिए। उनको इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि अगर वो गुस्सा होंगे तो उनको भी 3 महीने कैद बामुशक्कत दी जा सकती है। तो पतियों, आपकी पत्नी चाहे जो बोले, ईश्वर ने 2 कान दिए हैं, 1 कान से सुनिए, 2 कान से जी, और ये सोच लीजिए कि मैंने कुछ सुना ही नहीं। ये एकमात्र सीधा विकल्प है जिससे आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल, संपूर्ण, समृद्धमय और मंगलकारी होगा। तथा
7: क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी दी। फिलहाल सवाल मुझे भी चैट रूम में नहीं दिख रहे हैं, तो चलिए हम लोग भी चलते हैं थोड़ा सा अपने, मतलब कहते हैं ना, जर्नी पे, म्यूजिकल जर्नी पे। तो आप लोग कहीं मत जाइए और ये गाना एंजॉय करिए।

0: जो भेजी थी दुआ वो वापस आई कि नहीं आई, लेकिन हाँ कॉल आ गया। चलिए देखते हैं कौन है हमारे साथ जो करना चाहते हैं गुफ्तगू। हेलो,
1: नमस्ते।
0: नमस्कार, शुभ संध्या, आपका शुभ नाम?
1: हमारा नाम पुराना ही है, नया नहीं है।
0: जी आपका नाम पुराना तो अवश्य होगा क्योंकि आप उम्र से मालूम पड़ते हैं 20 से ऊपर ही होंगे, तो 20 साल पुराना तो नाम ही है। जी
1: एक माँ के दो बेटे।
0: एक माँ के दो बेटे, अरे किसी किसी के एक होते हैं, किसी किसी के पांच भी होते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक माँ के दो बेटे हैं।
1: एक माँ के दो बेटे वही नाम है?
0: एक माँ के दो बेटे ये कैसा नाम है?
1: आए? कुछ थोड़ा थोड़ा सोचिए
0: जनाब। देखिए सवाल आपको नहीं, मतलब सवाल आपको ही करना है, लेकिन ये सवाल बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर लव आपके सवाल का जवाब देने के लिए ही है।
1: डॉक्टर लव अब तक समझ चुके होंगे कि उनका पुराना पेशेंट है।
0: हाँ पेशेंट तो पुराना है, लेकिन आवाज पहचानने का काम आरजेएस का होता है, डॉक्टर लव का नहीं।
1: नहीं नहीं डॉक्टर लोग पहचान जाएंगे और इन नब्ज पकड़ते ही जान जाएंगे कि यहाँ पेशेंट।
0: डॉक्टर लोग आप पहचान पा रहे हैं आवाज से ये कौन सा पेशेंट है?
1: बादल गोयल।
0: ओ बादल जी, अच्छा अच्छा अच्छा, काफी दिनों से बादल उड़ते हुए आसमान में ही दिख रहे हैं, बरसे तो है नहीं तो समझ नहीं पाए कि
1: इतना आसान बताए आपको एक माँ के दो बेटे तो आप समझे नहीं पाए।
0: मुझे लगा कोई ऐसे पहेली वहेली बता रहे हैं।
1: नहीं पहेली क्या बताएंगे, पहेली बताएंगे, पहेली नहीं बताएंगे।
0: अच्छा आपकी सहेली भी है, कोई बात नहीं, होनी चाहिए। ये बताइए आपकी माता श्री कैसी हैं?
1: माता श्री हमारी चंगा सी है।
0: एंड आपके भ्राता एंड
1: भ्राता एंड सिस्टर एंड अदर्स,
0: ऐसा तो नहीं है कि आपकी भार्या भी आ गई है?
1: नहीं नहीं अभी कोई नहीं है। वो प्रक्रिया जारी है आप लोगों की तरफ से, ज्ञान स्थली फैमिली की तरफ से।
0: भार्या पहले लाएंगे या अर्धांगनी पहले लाएंगे?
1: जो आप लोग चाहेंगे वही आएगा।
0: फिलहाल हम कुछ नहीं चाह रहे, आप बताइए कि आप सवाल कौन सा करना चाहते हैं डॉक्टर लब से।
1: सवाल यही था कि बिजली और पत्नी में क्या सिमिलरिटी है या क्या अलग है?
0: बिजली और पत्नी में देखिए बिजली देखा जाए तो ये खगोलीय घटना है, और पत्नी तो एक मतलब होमो सैपियंस में से एक प्रजाति है।
1: दोनों के आने जाने में।
2: हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार, हाउ आर यू?
2: जी आई एम फाइन, टोस्ट ब्रेड बिस्कुट एंड ऑल दीज थिंग्स।
1: ओके, चाय एंड फाइन
2: एंड बिस्कुट जलजीरा।
1: तो बताइए बिजली के आने जाने और पत्नी के आने जाने में क्या?
2: जी मैं बताऊं कि बिजली और पत्नी ये कभी भी चमक सकते हैं और कभी भी गरज सकती हैं। मतलब बिजली कब चमक जाएगी और पत्नी कब चमक जाएगी और कब गरज जाएगी ये कोई जानता नहीं है। विधवा नारी हृदय गत जानी, ये ब्रह्मा जी भी नहीं जान पाए। हाँ तो जो है हम तो ये कहेंगे कि अगर आप सुखी हैं तो आप सुखी ही रहिए, विवाह मत कीजिए, आपके हिस्से का एक विवाह मैं और कर लूँगा।
0: वाह वाह, ये दुखी हो जाएं लेकिन किसी और को दुखी नहीं होने देंगे।
2: पर मादत के कहने साधु।
1: और एक और है, बिजली अगर आती है तो सुख देती है, पीली मायके जाती है तो सुख देती है, ऐसा भी है क्या कुछ?
2: बहुत ज्यादा। अब एक बार हम आपको बताएं कि अपने हम एक जो है पत्नी को स्टेशन पर छोड़ने गए, एक वाली को।
1: एक पत्नी को एक स्टेशन पर?
2: हाँ मतलब बिठाने गए।
1: अरे मतलब एक पत्नी को कि एक स्टेशन पर? दोनों।
2: नहीं, एक पत्नी को एक स्टेशन पर, दूसरी पत्नी को हम दूसरे स्टेशन पर ले जाते हैं, तीसरी पत्नी
1: गोंडा जंक्शन है, गोंडा कचहरी,
2: गोंडा जंक्शन
1: जी।
2: तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं जब गया पत्नी को जो है वो लाने के लिए, पत्नी जी गई हुई थी, उनको लाने के लिए गया था। तो जब मैं उनको लाने के लिए गया तो वो स्टेशन से उतरी और मेरा मुंह लटका हुआ था, तो उन्होंने हमको देखा तो कहा सामने देखो, एक पति पत्नी कितना हंस हंस के बात कर रहे हैं, एक आप है कि आपका मुंह लटका हुआ है। हमने पत्नी से कहा, पत्नी जी ध्यान से देखिए, वो पति अपनी पत्नी को छोड़ने आया है, मैं लेने आया हूँ, तो उसके चेहरे पर खुशी और मेरे चेहरे पर गम स्वाभाविक। हाँ,
1: तो आप उसी बिजली से कंपैरिजन कर रहे हैं?
2: बस उसी से कर रहे हैं, कब आई कब गई पता नहीं, कब चमक जाए कब बरस जाए।
1: बिजली आने पे सुख देती
0: है, क्या बात है। और आप देखिए, शादी करिए, आप कब सुख पाएंगे, तो आप शादी करेंगे तभी पाएंगे सुख।
1: अरे तो एक्सपीरियंस है ना डॉक्टर लव से?
0: नहीं तो एक्सपीरियंस लेने के लिए मैं तो कहूँगी कि आप खुद कहते ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें।
1: घड़ी सरफ हो गया ये तो।
0: अब घड़ी सरफ हो या जो, आपने जब बिजली से तुलना कर ही दी है तो घड़ी सरफ भी मान ही दीजिए,
1: पत्नी जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी।
0: हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स।
1: ज्ञान असली परिवार जब ढूंढेगा तभी मिलेगी।
0: नहीं यार, हम लोग यहाँ पे भाई शादी.com नहीं, आपके पास बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जहाँ से आप विवाह अपना कर सकते हैं। और बाकी आपकी कहीं दाल गलते गलते कच्ची रह गई है तो बात अलग है।
1: नहीं नहीं, ज्ञानअसली.com सबसे बेहतर।
0: नहीं आप गलत जगह गलत। हाँ डॉक्टर लव आपके पैचअप करा सकते हैं, टूटे रिश्ते जुड़ा सकते हैं, कोई लड़की पसंद आ गई
1: तो पहले रिश्ता हो तब तो टूटेगा।
0: अरे मैं कंडीशंस बता रही हूँ, आप पहली पूरी बात तो सुना करिए। अगर आपको कोई पसंद आ गई है तो आपका रिश्ता करा सकते हैं, और बाकी तो डॉक्टर लव ही बताएंगे।
2: हाँ। तो आप जो है पहले पसंद कीजिए और फिर जिम्मेदारी भाजिया बनाने की हमारी।
1: अच्छा अच्छा
2: जी,
1: तो वीना जी पसंद करेंगी और डॉक्टर लव जो है क्या?
0: नहीं भाई, मेरी तो पसंद फिलहाल, मैं अपनी पसंद दूसरे पे थोप ही नहीं सकती। मैं चाहूंगी कि आप अपनी पसंद स्वयं ढूंढे, और
1: जो आपकी पसंद वही हम, जैसे आपकी कविताएं हमको पसंद है वैसे आपकी पसंद भी हमको पसंद है।
0: तो बिल्कुल आपकी पसंद के लिए पसंद से हम तैयारी करेंगे। फिलहाल तो अभी अगले कॉलर को मौका देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सो फिलहाल शादी ढूंढने की तैयारी तो ऑन एयर हो नहीं पाएगी, तो मैं चाहूंगी कि बादल जी के लिए हम लोग शादी एकदम इत्मीनान से, क्या डॉक्टर लव ही ढूंढ पाएंगे, इसकी 30 पत्नियां तो एक और ढूंढ के दे ही सकता है। तो डॉक्टर लव जल्दी से जल्दी बादल के लिए एक पत्नी ढूंढ दे, जिससे कि वो भी बिजली को अपने साथ बांध के घूमते फिरें।
2: घूमते
0: बादल मतलब एक बादल ही बिजली के बारे में ज्यादा जान सकता है,
2: वही बात है।
0: तो वो बादल पत्नी बनाए बिजली को, फिर बताएं कि इनका अनुभव कैसा है।
2: हाँ, मतलब एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर।
0: यस यस यस यस, दैट्स ट्रू। तो चलिए हम चलते हैं बादलों के शहर में, ठीक है?
2: अच्छा, बादलों के शहर में।
0: हाँ
2: क्या बात है, मतलब बादल जी ने फूल किया तो शुरुआत हो गई इनकी। तो बादल के शहर में चलते हैं और बादल जी के लिए कुछ ढूंढते हैं।
0: तो फिलहाल एक पुराना गाना मेरे दिमाग में ऋषि कपूर का, तो चलिए बादल पे चल के पता चलेगा कि बादल क्या चाहते हैं।

0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार
1: जी नमस्कार
0: और कहिए कैसे हैं भाई।
1: नहीं ठीक
2: आपको है। सर्दी का सीना लबेरिया हो गया है क्या?
0: नहीं भाई नहीं, सर्दी इस समय कहाँ है।
2: आपकी आवाज में खरखराहट है तो मुझे लगा जुखाम हो गया आपको।
0: अरे जुखाम तो चलता ही रहता है थोड़ा बहुत ऐसे।
2: जुकाम सर्दी से ही होता है, वो वाली सर्दी नहीं क्या?
1: नहीं जुकाम चलता कहाँ है, जुकाम तो स्थिर रहता है। चलते
0: स्थिर नहीं रहता है, वो चलता रहता है, जाता कल जाता।
1: अच्छा आपने किसी जुकाम को चलते हुए देखा?
2: तो जनाब अपना सही नाम बताइए।
0: हमने देखा नहीं, हमने चलाया है बिना मैम।
2: क्या जुकाम?
0: जुकाम को।
2: अच्छा
1: तो आपने मतलब अपने पुत्र का नाम जुकाम रखा।
0: चलता है आता आ जाता कल चला जाता है।
1: हाँ ये बात है।
0: और डॉक्टर साहब सुनाइए क्या हाल चाल
1: है। जी जी आप बताइए कैसे हैं आप।
0: अरे हम तो ठीक है, चोखा बाटी खा लीजिए के बने हैं आज हमारे यहाँ।
1: चोखा बाटी दोनों?
2: देखिए चोखा और बाटी तो हम लोग जब मिलेगा मौका खाते रहेंगे। आज आप सवाल अपना बताइए क्या है।
0: सवाल ये है हमारा कि ये लोग पत्नियों से परेशान रहते हैं, जिनके हैं वो भी परेशान है, नहीं है वो भी परेशान, और हमारे डॉक्टर साहब जो हैं इनके हैं वो भी परेशान हैं, और अभी इसके पहले एक श्रोता ने फोन किया था उनके हैं नहीं वो भी परेशान, तो इसका कारण क्या है?
1: नहीं हम तो एकदम अपनी पत्नियों से परेशान नहीं है।
0: आप हैं, आप हमसे बता रहे थे पर्सनल एक दिन कि हम भैया परेशान हैं। अब आप वहाँ चाहे जो कुछ कहे अनियर, आप परेशान हैं थोड़ा।
1: अच्छा मतलब आपको लगता है आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त हो गई है। मतलब जो हमने ज्ञान आपको दिया वो ज्ञान आप हासिल करके लोगों के हृदय की बात जान रहे हैं।
0: जानने लगे, आपने ही ज्ञान दिया है। आप गुरु भी हैं, डॉक्टर साहब भी हैं।
1: हाँ मतलब तो हम आपके गुरु भी हैं, तो हम आपके आध्यात्मिक गुरु हो जाएंगे।
0: बिल्कुल सही।
1: तो आप अपनी वाली से बताइए कि आप अपनी वाली से खुश हैं कि परेशान हैं?
0: हम तो खुश रहते हैं
1: बस। पत्नी का दूसरा नाम ही खुशी है।
0: हाँ इसका मतलब है वो खुश आप तभी रहेंगे, वो चाहे जो कुछ, बाकी आप चुप रहिए खुश रहेंगे हमेशा।
1: बस बस वही मैंने कहा, भगवान ने दो कान पत्नियों के लिए ही पतियों को दिए हैं कि एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए।
0: निकाल और उसके बाद देखिए आदमी जो है एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है, औरतें दोनों कान से सुनती है और निकालती मुंह से है।
1: यही समस्या है आप वाली के साथ, यही समस्या है। तो हम चाहेंगे कि आप उसका एक कान कटवा दीजिए।
0: अरे हाँ
1: मतलब इससे रहेगा कि वो एक ही कान से सुनेगी और एक ही मुंह से निकालेगी।
0: अच्छा तो ठीक ये भी व्यवस्था करें। नहीं हम तो परेशान नहीं है।
1: अच्छा नहीं परेशान है।
0: हाँ जो परेशान है।
1: हाँ जो परेशान
0: वो लोग ये काम,
1: हाँ जो परेशान है वो लोग अपनी अपनी पत्नी का एक कान काट ले,
0: एक कान कटवा दें, क्योंकि उनकी समस्या दोनों कान से सुनती है निकालती मुंह से
1: है। तो जितना ज्यादा सुनेंगी उतना ज्यादा बोलेंगी।
0: हाँ
1: हमारे जो है वो एक भतीजे ने पूछा कि जैसा चाचू ये बताइए कि पत्नी और रेडियो में क्या अंतर है।
0: अच्छा
1: था तो हमने कहा देखो बेटा रेडियो को तुम अपनी मर्जी से बंद कर सकते हो, किंतु अंतर समझ में आ गया होगा।
0: हाँ समझ आ गया। हाँ, आ गया।
1: तो मतलब रेडियो है जब चाहा आपने तो बंद कर दिया। हाँ अच्छा और पतियों की मार्केट वैल्यू बहुत खराब हो गई। हमारे जो मामा के लड़के हैं उन्होंने अपनी मम्मी से कहा कि हमको कार्टून देखना है, तो उनकी धर्मपत्नी ने उत्तर दिया बेटा अपने पापा को देख लो। हाँ लड़कों ने जो उत्तर दिया उन्होंने कहा एक ही कार्टून देखते देखते जी ऊब गया है, अब दूसरा, अब वो बेचारी दूसरी या तो शादी करे और या तो खुद को कार्टून बना ले। हमको लगता है पत्नियां दूसरी शादी कर लेंगी, ये खुद ये नहीं कहेंगे कि मैं कार्टून हूँ बेटा आप मुझको देख लो। हाँ ये मतलब खूबसूरती के मामले में कंप्रोमाइज नहीं करती है। आपने महसूस किया होगा?
0: हाँ सही बात डॉक्टर साहब आपने बताया है।
1: आपकी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा आपके पत्नी की जो है वो मेकअप में जाता होगा, लैक्मे वाला वो वाइट टोन और फाउंडेशन तो जो है बिको टर्मरिक क्रीम,
0: वो तो हिस्सा सभी का जाता है, लेकिन उनके जो कुछ कमी रह जाए फिर देखिए क्या कहना।
1: नहीं तो हम तो अपनी पत्नियों को समझाते हैं, हमारा एक भी पैसा मेकअप में नहीं जाता है। हमने कहा देखो ये सब कृत्रिम चीजें हैं, इनको लगाओगी 10 साल के बाद बुढ़िया नजर आओगी, जैसी हो वैसी ही रहो, चेहरे पर लिपस्टिक क्रीम पाउडर इन सब का प्रयोग मत करो, हमेशा युवा बनी रहोगी।
0: तो आपने बहुत अच्छी सलाह दी और भाई यही सलाह हमारे जो लोग सुन रहे हैं ये लिसनर भाई वो भी अपनाएं।
2: जी हाँ, डॉक्टर लोग अपने घर में सलाह देते हैं लेकिन खुद जो है वो दिन भर सनस्क्रीन लगा लगा के घूमते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सनस्क्रीन तो खुद लगाएंगे तभी तो 30 से 35 होंगी, 35 से 40 और 40 से पता नहीं कितनी, तो खुद का ध्यान रखना जरूरी है। आए दिन सैलून पे जाके वो महंगे वाले जो क्या होते हैं फेशियल, वो जो रगड़ रगड़ के चेहरे को साफ करते हैं, तो वो सारा काम करते हैं। और ये डॉक्टर लोग सुबह चुकंदर के साथ मतलब और बहुत सारी ऐसी चीजें खाते हैं जिससे चेहरे का ग्लो ना जाए, और महंगी क्रीमों का प्रयोग हमेशा करते हैं। जितने भी इनके दुकान पे वो जो आते हैं MR लोग, उनसे पहले फ्री की क्रीमें ले लेंगे कि भाई सैंपल वाली जो मुँह पे लगाने वाली वो सब दे दो,
1: और ये सारी व्यवस्था हमारे कंपाउंडर साहिबा की जिम्मेदारी है।
2: और क्या भाई, हमको पगार मिलती है तो हम
1: चुकंदर वगैरह सब काट करके सुबह हमको,
2: इनकी 35 पत्नियों का काम है ये, बाकी MR लोगों से आपका कांटेक्ट हम करा देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करेंगे कि आपको अपनी समस्या का समाधान मिल गया होगा।
0: समस्या का समाधान मिल गया।
2: तो चलिए चलते हैं, एक प्यारा सा गाना सुनते हैं जिसको सुन के आपका दिल भी डोल जाएगा। जी हाँ, और हम एक गाना सुनने वाले थे बादल पे चल के, फिलहाल हम लोग बादल पे चलेंगे और देखेंगे बादल चलने में मुलायम है या फिर खुरदुरे।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: भारतीय डाक विभाग लाया है पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र योजना। इस योजना के तहत समस्त पेंशन भोगी अब घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए डाक विभाग के मोबाइल ऐप पोस्ट इन्फो के माध्यम से या वेबसाइट ippbonline.com पर रिक्वेस्ट डालनी होगी और डाकिया आपके घर जाकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना कर देगा। साथ ही 10 वर्ष से कम बच्चियों का सुकन्या समृद्धि खाता डाकघर में अवश्य खुलवाए एवं बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित करे। भारत सरकार ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान प्रमाण पत्र योजना का शुभारंभ किया था, जिसके तहत महिलाएं अधिकतम ब्याज के साथ बचत कर सकती हैं। ये सूचना अधीक्षक डाकघर गोंडा मंडल द्वारा जनहित में जारी।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891446 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: अरे सुना?
4: क्या?
5: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
4: वाओ!
5: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
6: हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियां यानी पानी से होने वाली बीमारियां, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियां हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हाइपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हाइपेटाइटिस ए, हाइपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
7: आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात। Thought of the day and what happened to this day. जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: सो वापस से मेरे सभी लिसनर्स का स्वागत है। और कौन कौन कहाँ कहाँ से सुन रहा है जरा फटाफट से अपने बारे में बता दो। हमारे साथ अकबर नवाबगंज से हैं, विजय जी हमारे साथ हैं और इन्होंने तो बात भी कर ली। पर्चा बना ले, आज गाड़ी लेट है, देर से आ पाऊंगा। वो क्या बात है पर्चा, आपका शाम को क्या सुबह ही लग गया था। खुद तो जवान हो रहे हैं और सबको सलाह दे रहे हैं। डॉक्टर लव क्या बताएं, क्या चाह रहे हैं ये तो यही जाने। और आप लोग बताइए आपको क्या लगता है, डॉक्टर लव को इतनी सारी शादियां करनी चाहिए या फिर आप लोग का भी मतलब दुखी होने देना चाहिए? अकेले दुखी होके क्या करेंगे, जब दुख में साथी मिलता है ना तो फिर अच्छा लगता है। वैसे गाना था बचपन में सुना था, दुख में सब साथी नहीं, सुख में सब साथी, दुख में रहा ना कोई। तो फिलहाल मैं चाहती हूँ कि उनको भी अपने दुख के साथ साथी ढूंढने चाहिए, क्यों डॉक्टर लव?
1: जी बिल्कुल ढूंढना चाहिए मतलब।
0: तो औरों को भी घर बसाइए, शादी होने दीजिए अपनी 30-35 से, किसी की दो करा दीजिए।
1: हाँ दो करा दे मतलब वो संभालने की क्षमता रखे, तुम 20 करा दे।
0: हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। आप क्या समझते हैं, आप ही एक ठो मतलब तीरंदाज हैं।
1: नहीं ऐसा हमने कहा
0: तो मेरे श्रोता लोग एक से बढ़कर एक हैं। मैंने तो ऐसे भी मेरे एक श्रोता को सुना है जिनकी शादी हुई एक बार, एक और पसंद आ गई उससे भी शादी कर ली, बढ़िया दो मकान, पता चला एक ठो और पसंद आ गई तीन मकान, तीन जगह मस्त खेलते घूमते, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट एक जगह, लंच दूसरी जगह, डिनर दूसरी जगह।
1: क्या बात है,
0: ऐसी जिंदगी हो जाए तो लाइफ झिंगा लाला।
1: हाँ इसको लग रहा है तो लाइफ झिंगा लाला।
0: और जैसे आपकी 30 हैं तो 30 में एक एक दिन आपने बांट रखा है, एक दिन एक क्या जाते हैं उसके यहाँ मार, मतलब जो भी मटन बिरयानी जो भी खाना होता है
1: नहीं।
0: काटते हैं, फिर उसके बाद किसी के यहाँ गए तो 56 भोग खा लिए।
1: हाँ।
0: ऐसे इनका मतलब 30 दिन में 56 भोग क्या 5600 भोग चलता
1: है, 5600 भोग चलता रहता है। अब ये वो 56 भोग,
0: तो डॉक्टर लव सबको सलाह दीजिए कि सब अपना आप में मोटिवेट हों और दुनिया में आप जैसे सुखी कम दुखी लोग की संख्या बढ़े।
1: नहीं हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि मोटी का वेट बढ़े, क्योंकि भाई मोटापा बहुत अच्छी चीज नहीं है।
0: अच्छा?
1: तो हाँ तो मोटी भाई वो उसका वेट बढ़ जाए तो समझिए वो एकदम खतरनाक हो जाएगी। अब जो कोई पहले से मोटी है उसका वेट बढ़ जाए तो क्या होगा? हाँ मतलब उसको देखकर लगेगा कि बस गई भैंस।
0: मोटी वेट मतलब कि मोटी को वेट अपना लॉस करना चाहिए।
1: अच्छा हाँ वही कह रहे हैं,
0: मतलब क्यों इतना उल्टा?
1: मोटी को मोटी का वेट बढ़े ना बल्कि मोटी का वेट लॉस हो। तो अगर आप लोग मोटे हैं तो अपना वेट लॉस कीजिए, अगर नहीं मोटे हैं पतले हैं तो
0: वेट गेन कीजिए।
1: वेट गेन कीजिए बिल्कुल। वेट गेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा इन लोगों को,
0: ये तो आप सोच के बताइए।
1: हमको लगता है कि अगर गोबर में चीनी मिलाकर खाई जाए तो इंसान का वजन बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। हाँ मतलब थोड़ा इसी प्रकार से जो है वो आप चाहें तो वजन अपना बढ़ा सकते हैं। तो गोबर के साथ और अगर आप चीनी की जगह गुड़ का प्रयोग करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि तब आप शुगर से भी बचे रहेंगे।
0: क्या बात है, आपके पास जानकारी अच्छी है।
1: हाँ बहुत, हमने बहुत दुबले पतले लोगों को स्वस्थ किया है। मतलब हमारे पास जिम वाले आए थे, कहते ट्रेनर हो जाइए आप हमारे यहाँ, क्योंकि आपकी जैसी औषधि और किसी के पास है नहीं। हाँ तो हम कम दाम में और बढ़िया इलाज कर देते हैं। हाँ तो अगर आप भी चाहती हैं कोई इलाज तो बताइए, नहीं तो क्लिनिक से फोन आ रहा है हमारे। क्या लगता है आपको?
0: अभी तो हमारे पास बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो आपसे बात करना चाहते हैं। चलिए सबसे पहले एक और गाना आपको सुना देते हैं और जिनकी जिनकी जो जो समस्या है वो सुन लेते हैं। और कौन चैट रूम में कुछ कहना चाह रहा है? अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, डॉक्टर लव उद्देश्य है। हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही मालूम पड़ रहा है फिलहाल। चलिए डॉक्टर लव ऐसा तो नहीं सोच के आते, इनकी सोच काफ़ी ऊंची टाइप की है, मतलब ऊंची टाइप की है, आप लोग गलत ना समझिएगा। तो फिलहाल चलिए देखते हैं आगे क्या हो रहा है। अभी तो हम लोग चलते हैं अपनी वाली मूवी, यानी कि आपके फेवरेट और मेरे फेवरेट हीरो की मूवी, इमरान हाशमी की मूवी, इनका गाना सुनने की बारी आ चुकी है। डॉक्टर लव मुस्कुरा रहे हैं, इनको लगता है हमारे इमरान हाशमी जी पसंद नहीं है, क्यों?
1: नहीं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ही है, बहुत।
0: आपको पता है इमरान हाशमी को भले आप लोगों ने बदनाम कर दिया हो, आप जैसे डॉक्टरों ने, किंतु आपको बताएं उन्होंने जितनी भी फिल्में की उन सभी के गाने जो हैं,
1: हाँ, गाने
0: हमेशा से सुपर डुपर हिट रहे हैं। किसी भी मौसम में, किसी भी मुहूर्त में आप अगर उनका गाना सुन लेंगे तो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो
2: हेलो वीना जी, शुभ संध्या, कैसे हैं?
0: बिल्कुल शुभ संध्या, आप कैसे हैं? आपका नाम जानना चाहूंगी।
2: अरविंद नाम है जी।
0: ओ अरविंद जी, चैटरूम से आप यहाँ आ गए, क्या बात है।
2: अरे मैम इसलिए आ गए कि आप लोगों की बातचीत सुनते सुनते हमें ये समझ में आ रहा है कि एक कहावत होता है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, डॉक्टर लव सबको गलत सलाह दे रहे, खुद तो 34-35 शादियां कर ली रहे हैं, हम लोगों को कह रहे हैं
0: तैयारी में भी है,
1: तीस बदनाम।
2: डॉक्टर लव सर हमें भी लबेरिया हो गया, वो भी आप बताओ कैसे दूर होगा ये।
1: आप चले आइए क्लिनिक पे तुरंत,
0: डॉक्टर लव से बात हुई आपको?
2: हाँ अब और किसी से कर नहीं सकते ना, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ।
0: आपने और मैं तो कहती हूँ कि आदमी से प्यार करना बिल्कुल जायज है, और आप करके तो देखिए आपको भी जिंदगी का वो सुख मिलेगा जो किसी को नहीं मिला।
2: तभी कहूँ आजकल तादाद क्यों बढ़ते जा रहे हैं।
0: तो बिल्कुल आप जब चाहें तब गुलाब का फूल, गुलाब का दस्ता लेके आ सकते हैं डॉक्टर लव के पास। ये भी
2: गुलाब,
0: मतलब
2: देखो जी गुलाब गुलाब लाएंगे, दो मिनट इको थोड़ा हो सकता है, मतलब किसी
0: तो
2: चीज के लिए रखते
0: हैं पैकेट,
2: उसके जगह पे गोभी का फूल दे देंगे, पत्ता गोभी दे देंगे, कम से कम सब्जी बनाने के काम आएगा।
0: मैं तो कह रही थी जयमाल ले आइए।
1: नहीं
2: जयमाल नहीं लाऊंगा, जयमाल घोटा ला सकता हूँ।
1: जयमाल
2: ये सही रहेगा।
0: हाँ ये ज्यादा सही रहेगा।
2: क्या हुआ डॉक्टर साहब को हिचकी आ रही है, कुछ कोई याद कर रहा है क्या? बात बात नहीं कर रहे हैं,
1: याद कर रहे हैं, मतलब
0: उनको इतना चाहने वाला लड़का आज तक नहीं मिला ना, नहीं तो एक शादी तो इन्होंने आपसे भी कर ली होगी।
2: अरे एक हमसे भी कर लेंगे।
1: आदमी हूँ, आदमी
2: हम रेडी हो जाए या खुद रेडी होंगे ये पूछ लीजिए।
0: आप रेडी हैं?
1: हाँ हाँ, मतलब बारात हमको कहाँ लेकर आनी है आप पता बता दीजिए।
2: अब बारात कहाँ लेके आना है ये बताइए।
1: नहीं आप बताइए, लेकर तो हम आएंगे बारात।
2: तो आ जाइए, हमारा एड्रेस आपको पता ही, हमने आपको बता ही रखा, वहीं आ जाइए फिर।
1: मनकापुर सीधे पहुँच जाए।
2: हाँ ये हुई ना बात सर। और यहाँ पे तो देख दो कृष्णा मैरिज हॉल है, या और भी दो तीन मैरिज हॉल है, कहीं कहीं तो एडजस्ट कर ही लेंगे।
0: इंद्रलोक
2: है, इंद्रलोक पिक्चर पैलेस,
0: उसी के पास भी कोई मैरिज हॉल है ना?
2: हाँ हाँ वही है, वही है, मतलब पहले वो पिक्चर पैलेस था, अब वो मैरिज हॉल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि अब पिक्चर पैलेस चलता नहीं है, क्योंकि अब वो पैलेस में कन्वर्ट हो गया है, और शांति मैरिज हॉल है, और भी है दो तीन है, एक एक और बन रहा है, अब दो तीन और बन रहे हैं।
1: हाँ तो कहीं तो एडजस्टमेंट। आप अपने लिए लहंगा चुनरी की व्यवस्था कीजिए।
2: चुनरी का हम पटियाला सूट पहन के आएंगे, आप तैयार तो होइए।
0: ये क्या बात हुई लहंगा चुनरी, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, एक्सेप्ट एज अ मैन, व्हाई यू आर कन्वर्टिंग हिम?
1: नहीं नहीं ऐसा नहीं, मतलब मैं कर रहा हूँ एक एक्सपेरिमेंट,
0: मतलब मैं अपने श्रोता की तरफ हूँ, आपकी तरफ तो बिल्कुल भी
1: नहीं।
2: अब आप ही बताइए वीना जी कौन इनका साथ देगा, खुद तो सबको इतना अच्छा सा सलाह दिए कि क्रीम पाउडर लाली लिपस्टिक मत लगाएं, और खुद 35 नारियों से संबंध बना रखे हैं।
1: सोचिए, और अब तो एक पुरुष भी जुड़ने वाला है।
0: क्या बात है,
1: अब तो एक पुरुष भी उस लिस्ट में जुड़ने वाला है।
2: हाँ अब आजकल लोग सब ब्यूटी क्वीन होना चाहते हैं, आप ब्यूटी क्वीन से उनको कुछ और क्वीन बनाना चाहते हैं, तो ये आपकी गलती है ना, तो आपका साथ कौन देगा आप ही बताइए।
0: तो अरविंद जी मुझे लगता है कि आपको आपकी समस्या का हल मिल गया, आपने जिसे चाहा वो आपको मिल गया।
2: हाँ ये बात है, अब आज ही सपने उपने देखना स्टार्ट कर दे उस सब, और गाना भी प्ले कर दिया सपने साजन के, जरा ये प्ले कर दीजिएगा इस बार।
0: हाँ बिल्कुल सपने साजन के, क्या पहले तो मैं आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, लोगों को बता तो दूँ कि
2: नहीं नहीं करता हूँ, देखो आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, ये तो एक हमारा और इनका संबंध हो गया, अब जो लोगों को दिखाना है ना, अब मैं सपने देख रहा हूँ शादी के या जो भी वगैरह वगैरह, तो अब आपको सॉन्ग प्ले करना है सपने साजन के।
0: सपने साजन के क्या?
2: हाँ
0: तो बस आप फोन रखिए, मैं आपको पहले ये गाना ही सुना देती हूँ, और आप बिल्कुल तैयारी कीजिए, डेट्स बता दीजिएगा, उस दिन हम लोग सीधे आपके यहाँ से सीधा प्रसारण करेंगे ऑन एयर।
2: 32 फर्स्ट
0: 32 फर्स्ट
1: पहले महीने की 32 तारीख
0: नहीं, 23 को 32 मान लेते हैं क्योंकि यहाँ सब उल्टा कर रहे हैं, तो 23 तारीख को हम
2: सब यहाँ उल्टा पुल्टा हो रहा है, तो इसी को उल्टा पुल्टा समझना है ना।
0: तो आज है 19 तारीख और 19 के बाद हम 23 तारीख को मिलते हैं समारोह में मनकापुर शांति पैलेस।
2: ओके जी, ओके, आपका स्वागत रहेगा।
0: थैंक यू सो मच अरविंद जी, बहुत अच्छा लगा। तो भाई अरविंद जी ने अपने दिल की बात कह दी है और आज पता चला कि डॉक्टर लव जो दुनिया में प्यार लुटा रहे हैं, मोहब्बतें लुटा रहे हैं, उनसे चाहने वालों की भी कमी नहीं है। ना सिर्फ स्त्रियां बल्कि पुरुष भी इनके दीवाने होते जा रहे हैं। जो दुनिया में प्यार जोड़ रहा है, जो दुनिया में रिश्तों को बना रहा है, उसके रिश्ते खुद के इतनी तेजी से बढ़ेंगे, ये मैंने आज देखा। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर लव, आपकी शादी ऑन एयर तय हो गई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 23 तारीख को सीधे मिलेंगे आपके और मैं सेलिब्रेट भी करूंगी ऑन एयर आपकी
1: शादी।
0: क्यों आप इतना ब्लश कर रहे हैं?
1: नहीं, क्यों न करें, मतलब विवाह की खुशी तो होती है।
0: अरे आपकी 36 शादियां हो चुकी है,
1: कॉन्फिडेंट है? 30 हो चुकी है।
0: अच्छा, अभी ये लोग 36
1: नहीं, 36 नहीं।
0: तो भाई मुबारक मुबारक मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो, ये दुआ है हमारी। और इसी के साथ चलिए सपने साजन के सजा दिए जाएं और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अरविंद जी को और डॉक्टर लिव को अपनी शादी की बहुत सारी अग्रिम शुभकामनाएं, मिलेंगे। डॉक्टर लोग कुछ कह के जाइए अपनी शादी के बारे में।
1: मिलेंगे अब 23 तारीख के बाद आपसे, यहीं पर आसमान जाने।
0: बिल्कुल, 23 को सीधे चैट रूम में मिलेगा, आप लोग के लिए निमंत्रण पत्र पहुंच जाएंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन, स्टे ट्यून। आपके साथ लाइव थी आपके अपने आरजे बीना, आपके शो गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला के साथ। आप सुन रहे थे शो डॉक्टर लव, डॉक्टर लव के साथ। बजाते रहो अपनी फ्रिक्वेंसी
1: 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की
0: धड़कन।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: भारतीय डाक विभाग लाया है पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र योजना। इस योजना के तहत समस्त पेंशन भोगी अब घर बैठे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए डाक विभाग के मोबाइल ऐप पोस्ट इन्फो के माध्यम से या वेबसाइट ippbonline.com पर रिक्वेस्ट डालनी होगी और डाकिया आपके घर जाकर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र बना कर देगा। साथ ही 10 वर्ष से कम बच्चियों का सुकन्या समृद्धि खाता डाकघर में अवश्य खुलवाए एवं बच्चियों के भविष्य को सुरक्षित करे। भारत सरकार ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान प्रमाण पत्र योजना का शुभारंभ किया था, जिसके तहत महिलाएं अधिकतम ब्याज के साथ बचत कर सकती हैं। ये सूचना अधीक्षक डाकघर गोंडा मंडल द्वारा जनहित में जारी।
2: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब
3: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
5: अरे सुना
4: क्या,
5: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
4: वाओ,
5: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता

0: दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जलजनित बीमारियां हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
1: आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात। Thought of the day and what happened to this day. जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर सुपर माइशी विद यू आर जस्ट सिंपल हु इज नॉट सो सिंपल और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

सो नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। क्या हाल चाल है पब्लिक? हर तरफ गणेश उत्सव की बहुत सारी धूम मची हुई है, अपनी चरम सीमा पे शबाब है। और आप लोग का क्या हाल है आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। लेकिन उसके पहले जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली, ओ माय गॉड, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए। उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने बोला के मरी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए। और डेफिनेटली लगा दीजिए हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत चांद, क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके, और ये आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा हमेशा के लिए आपके है दोस्तों। आप लोगों का मतलब धर्मेंद्र मोहन का आवाज विकास गोंडा से कहना है कि आज हमें आपने भक्ति सागर में पहुंचा दिया, सिंपल जी नमस्ते। तो धर्मेंद्र मोहन जी, आपको मैंने आज पहुंचाया है, लेकिन जब से गणपत पप्पा आए हुए हैं तब से शायद मैं भक्ति सागर में ही एकदम लीन हूँ। मतलब पूरा, मतलब अगर आप मुझे सामने से देखेंगे तब भी लाइक, मतलब मैं हमेशा झोला छाप कपड़े पहनने वाली लड़की, कम से कम मेरे अंदर दो तीन सिंपल और आ जाए, इतना मतलब लूज टी शर्ट, इतना लूज लोअर मैं पहनने वाली लड़की। लेकिन आपको पता है क्या, जब से गणपत पप्पा आए हुए हैं मैं इतनी भाई इतनी धार्मिक हो रखी हूँ कि मैं रोज सूट सलवार पहनती हूँ। मुझे अंदर से ही वो पॉजिटिव वाइब आ रही है। मुझे नहीं पता कि कल से क्या होने वाला है, कल विसर्जन के बाद से मेरा क्या हाल होने वाला है। कल डैम श्योर मेरा मूड अपसेट ही रहेगा, लेकिन परसों से लेट्स सी पप्पा जाते जाते भी कुछ ना कुछ अच्छा ही करके जाएंगे मेरे लिए, आई नो। तो मतलब मुझे तो बहुत खुशी है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत खुशी है। आप लोग के अंदर क्या जज्बात चल रहे हैं, उमड़ उमड़ के कैसी बातें आ रही हैं चैट बॉक्स में लिखने के लिए, मुझे चैट बॉक्स में लिख के फटाफट से बता दीजिए, क्योंकि दिल की बात सुनने वाले बहुत कम होते हैं और उन कम में से आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा आती है ना दोस्तों। सो इस्तकबाल है आपका जग्गू दादा जी एमपी से, मुस्तफा साउदी से, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, के गुप्ता जी तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से आपका तो दिल से स्वागत है, सोनिया तिवारी जी गोंडा से, धर्मेश त्रिपाठी गोंडा से, राजेश कुमार सिंह जी मालवे नगर गोंडा से, राजू सीतापुर से, मोहित मालवे नगर गोंडा से, निधि सीतापुर से, अरविंद राजेश कुमार सिंचाई विभाग से, नागेश्वर धाकड़ इंडिया से, उषा कश्यप गोंडा से, कार्तिक कश्यप गोंडा से, महेंद्र राजस्थान से, सुरेश कुमार जी चौक से, धर्मेंद्र मोहन जी आवास विकास गोंडा से, और सबीहा गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल है आपके अपने शो में। निब्बर जीरानी बाजार सुनार गली गोंडा से, स्टे ट्यून एंड वेलकम इन योर शो। अब एंजॉय कर लेते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश। वैसे पहली फरमाइश तो नो डाउट मेरी ही होती है, आई नो, मैं आती हूँ और अपना बढ़िया अपना पसंदीदा गीत सुनाती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों आजकल गणपत बप्पा के मतलब गीत के आगे मुझे कुछ दिखता ही नहीं है, और आई लव दिस सॉन्ग, डोंट नो व्हाई। देवाश्री गणेशा सुनने से ही एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है, गूज बम्स आ जाते हैं, ऐसा लगता है कि गणपत बप्पा तो आ चुके हैं, बगल में बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता भी है दोस्तों कि सच में गणपत बप्पा बगल में बैठे हुए हैं मेरे, और फरमाइशी की महफिल का मेरे साथ में आनंद लेते रहते हैं। सो चले एंजॉय कर लेते हैं आपकी पहली फरमाइश को बिना किसी देरी के, मेरी बकबको करते हैं यहीं पे फुल स्टॉप। और पहली फरमाइश है जग्गू दादा की एमपी से, उनको सुनना है गाना जीनी जिन्हें चाहिए दौलत रब्बा। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा अनुराधा जी की, शब्बीर कुमार जी की आवाज में, सिर्फ और सिर्फ हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजी सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी लेकिन रियलिटी चेक करवाने वाली बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, गणपत बप्पा मौर्या।

रही है दौलत रब्बा। अनुराधा जी की शब्बीर कुमार की आवाज ने हमें एंजॉय किया है। जग्गू दादा मींस जुगल किशोर वर्मा जी की फरमाइश में ये बहुत ही खूबसूरत सनगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन उसके पहले गणपत बप्पा के लिए नागेश्वर धाकड़ का कहना है कि हमारे इधर तो गणपत बाबा की बड़ी धूम चल रही है, हर घर में विराजमान हुए हैं, विघ्नहर्ता हमारे सभी विघ्न हरण करने आए हैं। सुना है कि स्टूडियो में भी गणपत बप्पा की स्थापना हुई है। अरे नहीं जी, स्टूडियो में गणपत बप्पा की स्थापना नहीं हुई है नागेश्वर धाकड़, वो क्या है ना कि मेरे घर के पास में, मतलब एक हिसाब से समझ लीजिए मेरे ही घर पे गणपत बप्पा की स्थापना हुई है। तो गणपत बप्पा ना मेरे साथ चले आते हैं यहाँ पे आप लोगों से मिलने के लिए, वहाँ वो दिन भर बोर होते रहते हैं। फिर उसके बाद में जब आरती का टाइम होता है, 9 बजे आरती का टाइम होता है ना, तो वो 9 बजे पटाख से यहाँ से चले जाते हैं और फिर आरती का आनंद लेते हैं वहाँ पे, फिर वहाँ की पूजा का आनंद लेते हैं। स्थापना नहीं हुई है, वो तो मेरे साथ हंसते खेलते चले आते, मैं अकेली आती हूँ ना इसलिए। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है मुस्तफा जी की सऊदी से, उनको सुनना है गाना हमने खामोशी से। सो एंजॉय करते हैं ये मझधार पिक्चर का गाना पंकज उदास जी की आवाज में, सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। हरीश चंद्र सविता जी आपका स्वागत है।

खामोशी सितमे दिल में बसाया है, हमने एंजॉय किया है। ये मजेदार पिक्चर का गाना पंकज उदास जी की आवाज में मुस्तफा जी की फरमाइश पर चुकी है साउदी से। बढ़ते हैं अगली फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन इसके पहले दोस्तों मैं कुछ कहना चाहूंगी। मेरा कहना है कि कहानी मेरी है इसलिए कमाल लिखूंगी, लोगों के लिए नहीं अपने लिए किरदार लिखूंगी। जो कोई ना पढ़ पाए ऐसे कई सवाल लिखूंगी, ये जो मेरे बारे में कहते फिरते हैं उनके हर एक भ्रम का हिसाब लिखूंगी। यूं ही आसान नहीं है मुझसे उलझना, अगर किस्मत मेरी है तो देखना, उसकी हर एक पन्ने बेमिसाल लिखूंगी। सो एंजॉय करते हैं अब अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से, उनको सुनना है गाना काहे गए परदेश किया पिक्चर का। तो एंजॉय करते हैं ये नगमा से पौसित धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

चाहिए। कहे गए परदेस, पिया पिक्चर का ये गाना हमने एंजॉय किया है दोस्तों, हमारे धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पर जुटती हैं गोंडा से। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है के गुप्ता जी की तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से। और तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से के गुप्ता जी को सुनना है गाना दिल तेरा आशिक। सो एंजॉय करते हैं दिल तेरा आशिक पिक्चर का ये गाना कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में हमारे के गुप्ता जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

कई बार ओई मेरा दिल तेरा आशिक, ओ माय गॉड, हमने एंजॉय किया ये गाना कुमार सानू अलका यानी की आवाज में। हमारे केके गुप्ता जी की फरमाइश पर जो कि है तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से, इसी बात पे मैं केके गुप्ता जी के लिए कुछ कहना चाहूंगी कि चाहने वालों की भीड़ लगी है, चाहने वालों की भीड़ लगी है, आजकल आपका दीदार बहुत महंगा है, आज तक आपने खिलौने ही खरीदे होंगे, दिल है ये दिल सरकार बहुत महंगा है, खरीद सको तो खरीद लो हमें इस दौर में, बाद में हमारा एक एक ख्याल बहुत महंगा है, इश्क का वादा करना बहुत आसान है, इश्क का वादा करना बहुत आसान है, करके पछताओगे निभाना बहुत महंगा है। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश हमारे पास में सोनिया तिवारी की गोंडा से, उनको सुनना है गाना ये तेरी प्यारी प्यारी बातें। सो एंजॉय करते हैं जमाई राजा पिक्चर का ये गाना सोनिया तिवारी की फरमाइश पे जो की है गोंडा से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

काते मुझे अच्छी लगती है। हमने एंजॉय किया जमाई राजा पिक्चर का ये बहुत ही अतरंगी सा गाना हमारी सोनिया तिवारी की फरमाइश पे। थैंक यू सो मच, ये गाना बहुत ही कमाल का था, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा था। सो एंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश दोस्तों। अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेश त्रिपाठी की गोंडा से। धर्मेश त्रिपाठी को गोंडा से सुनना है बहुत ही अतरंगी सा गाना। जी हाँ दोस्तों, दिल थाम के बैठ जाइएगा क्योंकि अगली फरमाइश है यो यो हनी सिंह के गाने की, वो भी 90s वर्जन में। जी हाँ दोस्तों, हम एना वी ना डो पुशअप मारे या करो, सानू एंड कहना ना पिछाड़े या करो, और साडे लिखे खता नू ना फाड़े या करो, ना ही दूजे मुंडे आनू ऐता ताड़े या करो। इस गाने को भाई हम 90s के वर्जन में एंजॉय करने जा रहे हैं। सो नाउ लेट्स गो एंड एंजॉय द सॉन्ग ऑफ धर्मेश त्रिपाठी। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। वाह बहुत ही अतरंगी फरमाइश है, इसको सुन के मुझे या तो बहुत मजा आने वाला है धर्मेश त्रिपाठी जी, या तो फिर आप फिर सोच लो। स्टे ट्यून्ड।

था ना दोस्तों, हमने एंजॉय किया है 90s वर्जन में। यो हनी सिंह का है ना बिना डोप शोप मारिया करो, सिर्फ और सिर्फ धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर। आप लोग को ये 90s वर्जन वाला गाना कैसा लगा मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। फिलहाल धर्मेश त्रिपाठी का कहना है कि मेरी फरमाइश पूरी करके दिल को कर दिया गुलजार, आए हाय। मेरी फरमाइश पूरी करके दिल को कर दिया गुलजार, अपनी मीठी आवाज से बढ़ा दिया गीतों का प्यार। आरजू सिंपल जी आपका दिल से करते हैं शुक्रगुजार, यूं ही फरमाइशें बजाते रहिए, मिलता रहे आपका प्यार। थैंक यू सो मच धर्मेश त्रिपाठी। इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की, उनको दूध का कर्ज पिक्चर का गाना सुनना है शब्बीर कुमार जी की आवाज में। सो एंजॉय करते हैं रास्ता तो मिल गया, सिर्फ और सिर्फ मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड रहते हैं।

भी गया तो साहिल को ढूंढ लूंगा। शबीर कुमार की आवाज में दूध का कर्ज पिक्चर का ये गाना हमने एंजॉय किया है मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। और मैं कुछ कहना चाहूंगी इस फरमाइशी गीत को सुनने के बाद में, जब कहीं से भी कुछ दुख दर्द वाला आता है ना गाना दोस्तों, तो मेरे दिल में भी कुछ ना कुछ ऐसे उमड़ उमड़ के आने लगता है। तो मैं कहना चाहूंगी कि जो हारा जिंदगी से हो सफाई कुछ नहीं देता, जो हारा जिंदगी से हो सफाई कुछ नहीं देता, उसे तो शोरगुल में भी सुनाई कुछ नहीं देता। यही कहने का मकसद है कि हर एक चीज की हद है, यही कहने का मकसद है कि हर एक चीज की हद है, कि ज्यादा रोशनी में भी दिखाई कुछ नहीं देता, ज्यादा रोशनी में भी दिखाई कुछ नहीं देता। उसे एंजॉय करते हैं राजू की फरमाइश जो की है सीतापुर से, उनको सुनना है गाना तुम पे दिल आ गया। सो एंजॉय करते हैं ये गाना और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो राजेश मीना जी, आपका स्वागत है आपकी अपनी फरमाइशी की महफिल में। स्टे ट्यून्ड।

दिल में पहले कुछ कुछ होता ही है, फिर किसी और के ख्यालों में खोता ही है, फिर दिल गार्डन गार्डन होता ही है। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि असली लोचा तो इन सब के बाद ही शुरू होता है ना। स्टार्टिंग में सब कुछ मीठा मीठा प्यारा प्यारा लगता है, लेकिन यही मीठा मीठा प्यारा प्यारा कब दर्द बन जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। दर्द भी मीठा मीठा प्यारा प्यारा ही होता है, लेकिन वो दर्द ना जिंदगी जीना मुहाल कर देता है। क्यों, सही कहा ना मैंने? तो ये तो फरमाइश हमारे पास में आई हुई थी राजू की सीतापुर से। एंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों मोहित की मालवे नगर गोंडा से। मोहित को मालवे नगर गोंडा से

जब भी बनोगी सीताराम बनूंगा। सो एंजॉय करते हैं ये गाना आज राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में। जी हाँ दोस्तों, और मोहित ने राधा अष्टमी की हम सभी को शुभकामनाएं दी है, और मोहित को भी हम सबकी तरफ से और उनके परिवार को भी राधा अष्टमी की बहुत बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। एंजॉय करते हैं ये बचपन से पचपन तक फेवरेट वाला गाना, सिर्फ और सिर्फ मोहित की फरमाइश पर, जो कि है मालवीय नगर गोंडा से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, ओहो रॉक द फ्लोर एवरीवन, राधे राधे ना मिसिंग राधे।

गॉड दोस्तों, ये गाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत बहुत बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो थैंक यू सो मच मोहित फ्रॉम मालवीय नगर गोंडा, और राधा अष्टमी की एक बार फिर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। सो दोस्तों, एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में निधि की सीतापुर से, उनको सुनना है गाना तुझसे पूछूं एक सवाल। एंजॉय करेंगे ये गाना हम, और इसी के साथ में हम लोग चलेंगे हमारे इस फरमाइशी गीत के बाद में हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल के साथ में। जिन लोगों ने पेट पूजा नहीं की है, फटाफट से जाके पेट पूजा कर लेना, और फटाफट से पेट पूजा करके आना, और आज एक रोटी एक्स्ट्रा खाना, क्योंकि दोस्तों आज है सैटरडे नाइट स्पेशल वाला प्रोग्राम, और फिर आपकी आरजे सिंपल को आप कल करेंगे बहुत सारा मिस, क्योंकि कल है विसर्जन, और मैं कल विसर्जन में सत्ताबड़तोड़ धमाल करने वाली हूँ। दो चार आंसू भी बहाऊंगी, पक्का बहेंगे, इमोशनल फूल तो मैं हूँ ही। सो आप लोग भी जरूर आना, और कल की मस्ती आज ही हम करेंगे। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना, मिलेंगे सीधे 9 बजे। स्टे ट्यून्ड, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन, अपनी खट्टी मीठी आरजे सिंपल के साथ में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। पश्चिमी रेलवे के उधना उकाई सोंगाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवरब्रिज के निर्माण को भी मंजूरी। 2 दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में संपन्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया गया। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरलम महाराष्ट्र तमिलनाडु और तेलंगाना में कल तेज बारिश की संभावना। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्य भारतीय दल की अगुवाई की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने आज 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है।
1: आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। मैं आप सभी युवा साथियों को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी एक ऐसे समय में भारत सरकार से जुड़े हैं जब देश एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है और ये लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनाने का।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है।
1: भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और भारत की स्टार्टअप स्टोरी अब केवल बड़े शहरों की कहानी नहीं है। आज करीब आधे रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप Tier 2 और Tier 3 शहरों में है। यानी आज गांव, कस्बे और छोटे शहर का युवा भी भारत की नई इकोनॉमी में अपनी भूमिका बड़ी बना रहा है।
0: इस अवसर पर देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोलकाता में शिक्षा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने विशाखापट्टनम में आयोजित 20वें रोजगार मेले में 200 नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुंबई में युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे ने नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। रेलवे ने उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ खंड में 600 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्रालय ने बताया कि स्वीकृत परियोजना खंड के चिन्हित शेष हिस्सों में कवच 4.0 का विस्तार करेगी। एक रिपोर्ट।
2: इस परियोजना की लागत 250 करोड़ रुपए से अधिक है। इसके साथ ही पश्चिम रेलवे के उधना उकाई सोनगढ़ खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 133 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने बताया कि पुल के हिस्से में 91 करोड़ से अधिक रुपए की अनुमानित लागत वाले ओपन वेब गर्डर सम्मिलित होगा। 4 लेन रोड ओवर ब्रिज सड़क यातायात की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दक्षिण तट रेलवे के 73 किलोमीटर लंबे सावल्यापुरम गुंटूर खंड पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के उन्नयन के लिए 142

0: कवच के कार्यान्वयन को सुगम बनाएगी। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नागालैंड के चुमाओ के दीमा में नागा यूनाइटेड विलेज में दो दिन का पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन आज संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर क्षेत्रों के नीति निर्माता, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने पर चर्चा की।
3: यह सम्मेलन नागालैंड सरकार ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसका विषय था NEP 2020 को लागू करना, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए परिकल्पना, चुनौतियां और अवसर। समापन समारोह में आज त्रिपुरा के उच्च शिक्षा, पंचायत और सामान्य प्रशासन मंत्री किशोर बर्मन ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में शिक्षा को अधिक कौशल उन्मुख और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। सम्मेलन में ये भी प्रस्ताव रखा गया कि पूर्वोत्तर राज्यों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद के लिए प्रधानमंत्री के विशेष वित्तीय पैकेज पर विचार किया जा सकता है। कोहिमा से असुनियों की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज की इस कड़ी में आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे प्रगति प्लेटफॉर्म के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में प्रगति प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य विकास परियोजनाओं, सरकारी योजनाओं और लोगों की शिकायतों का तेजी से समाधान करना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री खुद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्यों के साथ सीधे समीक्षा करते हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रगति ने कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी की वजह से होने वाली समस्याओं को दूर करने और तेजी से फैसले लेने में मदद की है। इससे अधिकारियों में जवाबदेही की भावना भी मजबूत हुई है। इस साल फरवरी में राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि प्रधानमंत्री स्तर पर विस्तृत निगरानी के कारण 85 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और उनमें तेजी लाने में मदद मिली है।
5: हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया, हर महीने बैठा और लगातार उस काम करते करते और संबंधित राज्यों को भी बिठाया, हर एक की बारीकी से देखा और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इस प्रगति के इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से प्रधानमंत्री के स्तर पर देखे जाने के कारण 85 लाख करोड़ रुपीज का काम को गति मिली। देश की कितनी बड़ी शक्ति को अनलॉक किया हमने, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये हमने करके देखा है।
4: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बीबी नगर हैदराबाद की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अमिता अग्रवाल ने बताया कि प्रगति तंत्र की मदद से एम्स से जुड़े पानी और बिजली की आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने में मदद मिली।
6: हमारे पास दो मेजर इश्यूज थे, एक पावर सप्लाई का और एक वाटर सप्लाई, जो कि दोनों बहुत अहम होते हैं अस्पताल के लिए। और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इंटरवेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का हेल्प से ये प्रॉब्लम्स दोनों धीरे धीरे करके सॉल्व हो गए।
4: प्रगति प्लेटफॉर्म सहकारी संघवाद का भी एक उदाहरण है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र के विभिन्न मंत्रालय एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम करते हैं। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति की 53 बैठकों की अध्यक्षता कर चुके हैं। आनंद कुमार के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने कहा है कि भारत और नेपाल के पास मजबूत संबंधों के आधार पर अपनी साझेदारी को नया रूप देने का अवसर है। आज नई दिल्ली में भारत नेपाल संबंधों पर एक सेमिनार में डॉक्टर वागले ने संपर्क सुविधा और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने तथा दोनों देशों द्वारा मिलकर हासिल की जा सकने वाली बड़ी संभावनाओं को साकार करने पर बल दिया। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने नेपाल में हाल ही में बाढ़ के बाद भारत से त्वरित राहत और बचाव सहायता की भी सराहना की।
7: I think close to 8 cargo planes have arrived.
8: अब तक लगभग 8 कार्गो विमान 130 टन राहत सामग्री लेकर आ चुके हैं।

0: 80 से अधिक भारतीय कर्मी आज भी बचाव और राहत कार्यों में मदद कर रहे हैं, खासकर उन लोगों की जान बचाने और उन्हें निकालने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो शायद अभी भी इन पनबिजली सुरंगों में फंसे हो सकते हैं। मुझे लगता है कि भारत सरकार मदद के मुद्दे को बहुत सकारात्मक रूप से देख रही है।
1: इस बीच भारत ने नेपाल को 11 टन राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाई, फॉरेंसिक का सामान, टेंट, हाइजीन किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल को बाढ़ आपदा में सहायता के लिए राहत सामग्री ले गया ये वायुसेना का 9वां विमान था। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत नेपाल की सहायता जारी रखेगा। नेपाल सरकार ने पिछले महीने विनाशकारी बाढ़ के कारणों की जांच के लिए 7 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 पद जीत लिए हैं। परिषद के यश डबास अध्यक्ष, रिया छावड़ी सचिव और लक्ष्य राज सिंह संयुक्त सचिव चुने गए। निर्दलीय उम्मीदवार दीपांशु शौकीन ने उपाध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने छात्र संघ चुनावों में परिषद की जीत पर बधाई दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू को आज पंजाब पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वे लुधियाना में पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के पास उस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जब मुख्यमंत्री भगवंत मान का काफिला वहां से गुजर रहा था। श्री बिट्टू ने बताया कि भाजपा पंजाब से जुड़े मुद्दे उठाती रहेगी और जब भी जरूरत होगी मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों और कार्यालयों के बाहर शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन करेगी। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में कल तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मराठवाड़ा, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, कोंकण, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कल गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आज जापान के आइची नागोया में हुआ। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने 501 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की। टेक बॉल स्पर्धा के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की क्विंसी डिसूजा को इंडोनेशिया की सुमाया से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। क्विंसी कल कांस्य पदक मुकाबला खेलेंगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी कल सेमीफाइनल खेलेगी। सेमीफाइनल में भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। एक अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के भारतीय दल को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे और खेलों में शानदार सफलता हासिल करेंगे। राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर आज मंदिरों में श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव के साथ राधा अष्टमी मनाई। उत्तर प्रदेश के बरसाना, मथुरा, वृंदावन और ब्रज क्षेत्र के अन्य हिस्सों में श्री राधा रानी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपे। रेलवे ने लखनऊ डिवीजन के 607 किलोमीटर से अधिक रूट पर कवच 4.0 लगाने को मंजूरी दी। 2-दिवसीय पूर्वोत्तर शिक्षा सम्मेलन नागालैंड में संपन्न। नेपाल के वित्त मंत्री डॉक्टर स्वर्णिम वागले ने भारत नेपाल साझेदारी के नवीनीकरण का आह्वान किया। और 20वें एशियाई खेलों का जापान में आधिकारिक रूप से शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: रूप रंग में है जादू।
1: शिमारू फिल्मी गाने के नए वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें।
2: So, एक बार फिर से इस्तकबाल है आप सभी का आपकी अपनी फरमाइशी की महफिल में आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट से सिंपल के साथ में, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। सो दोस्तों, हमने एंजॉय किया है अभी जो गाना, वो फरमाइश हमारे पास में आई हुई थी राजेश कुमार की तरफ से, जो कि है सिंचाई विभाग गोंडा से। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ, और अगली फरमाइश जानते हैं किसकी है। अगली फरमाइश है उषा कश्यप की गोंडा से, उनको सुनना है गाना वादों से नहीं बातों से नहीं प्यार मिलता। सो एंजॉय करते हैं ये वादों और बातों वाली गाना जीत पिक्चर का कुमार सानू साधना सरगम की आवाज में हमारी उषा कश्यप की फरमाइश पर, जो की है गोंडा से। एंजॉय करेंगे ये फरमाइश, लेकिन उसके पहले बड़ी गुस्ताख है तुम्हारी याद उसे तमीज सिखा दो। बड़ी गुस्ताख है तुम्हारी याद उसे तमीज सिखा दो, दस्तक भी नहीं देती और दिल में उतर आती है। सो एंजॉय करते हैं अभी फरमाइश। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, आप सुन रहे हैं आपका अपना फरमाइशी का महफिल, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में, और ये है आपका फेवरेट रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

वाओ दोस्तों, हमने इंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा साधना सरगम, और कुमार सानू की आवाज में बढ़ेंगे हमारी आज के लिए फरमाइशी गीत की तरफ। ये तो फरमाइश थी उषा कश्यप की गोंडा से। अगली फरमाइश हमारे पास में है महेंद्र की राजस्थान से। महेंद्र को राजस्थान से सुनना है गाना मितवा। सो चांदनी पिक्चर का ये गाना इंजॉय करेंगे हम बाबला मेहता और लता मंगेशकर जी की आवाज में, सिर्फ और सिर्फ महेंद्र की फरमाइश पर। इसी के साथ में हमारे लिसनर का कहना है कि ये घर नहीं हमारा जो हर बार दस्तक देकर आना पड़े, ये घर नहीं हमारा जो हर बार दस्तक देकर आना पड़े, ये मंदिर है हमारा हर बार सर झुकाकर अंदर आना पड़ता है। अच्छा जी, सो एंजॉय कर लेते हैं महेंद्र की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

पीछे गीत में तो हमने एंजॉय किया लता मंगेशकर बाबला मेहता की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सनगमा हमारे महेंद्र की फरमाइश पर जो की है राजस्थान से। बढ़ेंगे अगली फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन उसके पहले महेंद्र का राजस्थान से कहना है कि नमस्कार आरजे सिंपल मैम जी, मेरा गाना बजाने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज में जब पसंद का गाना सुनाई देता है तो रेडियो से जुड़ाव और भी खास हो जाता है। आपका आज का प्रोग्राम हमेशा की तरह शानदार है, चार लाइनें कहना चाहूंगा तो महेंद्र का कहना है कि कुछ धुनें दिल के बहुत करीब होती हैं, कुछ आवाजें यादों की तस्वीर होती हैं। सिंपल मैम जब गाना बजाती हैं प्यार से तो रेडियो की शाम भी खास होती है। थैंक यू सो मच महेंद्र फ्रॉम राजस्थान। इंजॉय करते हैं अगली फरमाइश जो कि है नागेश्वर धाकड़ की, उनको सुनना है गाना लाल गराड़ा। तो इंजॉय करते हैं सपना बस्ती जसपिंदर नरोला का ये गाना नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

अस्थी और जसपिंदर नरूला और अनु मलिक का ये गाना हमने एंजॉय किया है हमारे नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पर। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है हरीश चंद सविता की और उनको सुनना है गाना ये गोटेदार लहंगा निकलूं मैं डाल के। सो एंजॉय करते हैं मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में धर्म कांता का ये पिक्चर से गाना सिर्फ और सिर्फ हरीश चंद सविता जी की फरमाइश।

फरमाइश हमारे पास में आई हुई थी हरीश चंद्र सविता जी की। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइशी गीत की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली और आखिरी फरमाइशी गीत हमारे पास में जो है वो है कार्तिक कश्यप की। और कार्तिक कश्यप को सुनना है गाना जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती। सो एंजॉय करेंगे ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना हनुमान अंश का। और इसी के साथ में आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल लेना चाहेगी आप सभी से अलविदा। तो दोस्तों कहना चाहूंगी कि शाम होने को है घर जाते हैं अब बुलंदी से उतर जाते हैं। जिंदगी सामने मत आया कर हम तुझे देख के डर जाते हैं। ख्वाब क्या देखे थके हारे लोग ऐसे सोते हैं कि मर जाते हैं। फूल भी रहता नहीं टहनी पर शाम तक हम भी बिखर जाते हैं। एक दिन लड़ते हुए दुनिया से लोग दुनिया से गुजर जाते हैं। अब ना वो है ना गली है उसकी क्या बताएं कि किधर जाते हैं। बंद है या खुली है वो खिड़की अब बिना देखे गुजर जाते हैं। रात मरहम लिए आती है और हम जख्म से भर जाते हैं। सो दोस्तों हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइस हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना। आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है। और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को बहुत सारा मिस करना है क्योंकि मैं कल नहीं मिलूंगी। तो मिलेंगे फिर से परसों। तब तक के लिए लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए। आप सबकी तरफ से बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून। मिलते हैं मंडे को, एंजॉय करते हैं कार्तिक कश्यप की फरमाइश। स्टे ट्यून एवरीवन।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
2: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर, किचन के लिए चिमनी, HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर वन प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 901-935-5394 और 872-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
3: अरे सुना
4: क्या,
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
4: वाओ,
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
6: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
6: आज ही कॉल करें 9260-981-9786। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
5: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
6: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVO द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है। इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी। आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
4: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। आप सुन रहे हैं रेडियो गणसलेट 9.6 एफएम। यह है गोंडा शहर की धड़कन। कार्यक्रम है बहारे गजल और आज तो भाई शनिवार की रात है और शनिवार यानी सैटरडे के इस प्यारे से सेगमेंट में आपका स्वागत है जिसका शीर्षक है गजलें हमारी गीत आपके। तो भाई अभी तक हमने आपको गजल सुना दी है और अब प्रारंभ होता है आपका समय। तो गजलें हमारी हो चुकी हैं और अब गीत होने हैं आपके। मेरे साथ धर्मेंद्र मोहन जी हैं, आवास विकास कॉलोनी से मनुष्य जी, गुड इवनिंग। गजलों की प्यारी दुनिया में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया आपका जनाब, और आपका भी स्वागत है। खैर मकदम है, इस्तकबाल है आपके ही अपने कार्यक्रम बहारे गजल में। और आइए अब भाई हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमने तो अपना कर्तव्य पूरा कर दिया अर्थात आपको गजल सुना दी। अब जो गीत है क्या बात है भाई। अनिल शास्त्री जी दादा चरण स्पर्श कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत शानदार होंगे। और क्या बात है आपने डीपी चेंज कर ली है और माशाल्लाह बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, मतलब नज़र न लगे आपको। और उम्मीद की जाती है कि आज पहला गीत जो है हमको दादा से ही सुनने को मिल सकता है। भाई धर्मेंद्र मोहन जी हमारे साथ हैं आप और बड़ी प्यारी सी आवाज़ आपकी भी है, तो क्यों गजलें हमारी और गीत आपके। तो अब गजल हमारी हो चुकी है, अब गीत आपका बनता है। तो जी दूरभाष क्रमांक वही है आपका 63-93-31-64-29 63-93-31-64-29। प्रतीक्षा करेंगे कि भाई अब आपका आगमन हो, आपकी महफिल है और जब आपकी महफिल होती है तो फिर आप ही की महफिल होती है। और जब ऐसी महफिल हो और ऐसे हमारे प्यारे प्यारे श्रोता हो तो नगमा तो ये भी बन सकता है कि आप सभी का स्वागत। और देखते हैं कि आज के इस कार्यक्रम की आधारशिला यानी इस कार्यक्रम की नींव कौन रखता है। गजलें हमारी

0: आपको आवाज देते हैं। और जी हाँ, आवाज देने की अवस्था नहीं, मेरे साथ देखिए कौन जुड़ चुके हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ।
1: नमस्कार।
0: अरे दादा चरण स्पर्श,
1: और कैसे हैं सर?
0: मतलब एकदम ये आवाज गोरखपुर की है।
1: या।
0: कैसे हैं आप?
1: हेलो
0: हेलो दादा, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, आप बताएं सर कैसे हैं?
0: जी जी, आपका आशीर्वाद।
1: भाई आपने कहा तो हमने कहा पहले मैं ही शुरू कर
0: दूं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम बनता है।
1: मैं कोशिश करूंगा।
0: और आपकी कोशिश हमेशा कामयाब होती है।
1: हेलो
0: जी दादा, मैं जानता हूँ आपकी कोशिश हमेशा कामयाब होती है।
1: राजकुमार पिक्चर का गाना है।
0: हाँ क्या बात है।
1: तो इस रंग बदलती दुनिया।
0: आय हाय हाय हाय हाय, क्या गीत चुना आपने। जी
1: ठीक है सर।
0: जी जी दादा, बहुत प्यारा गीत।
1: शुरू करो सर।
0: जी निसंदेह।
1: इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं निकला, न करो तुम सज सज कर इन मान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं निकला, न करो तुम सज धज कर इंसान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में

खेला न करो इस पागल को, तुमसे मैं शरारत कर बैठे नादान की नीयत ठीक नहीं, इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, निकला न करो तुम सज धज कर इंसान की नीयत ठीक नहीं, इस रंग बदलती दुनिया में, कांधे से हटा लो सर अपना

अपना ये प्यार मोहब्बत रहने दो, कैसी को संभालो मौजों से तूफान की नीयत ठीक नहीं, इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, निकला न करो तुम सज धज कर, ईमान की नीयत ठीक नहीं, इस रंग बदलती दुनिया में मैं कैसे खुदा हाफिज कह दूं, मुझ

0: इस रंग बदलती दुनिया में। थैंक यू सर।
1: क्या बात है दादा। अच्छा, इतने हाई पिच पर अगर मुझे गाना हो तो मेरा तो एकदम से क्या हाल होगा, ये तो भगवान जानता है या तो मैं जानता
0: हूँ। एक्चुअल क्या है कि मैंने सही ढंग से उठाया नहीं।
1: नहीं नहीं, आपने मतलब जहाँ पर जो आपने खींचा है वो इतना खिंचाव लाना बड़े मतलब बहुत मुश्किल काम है। मतलब वहाँ पर
0: तो मैं आया हूँ, सो गया था, अभी उठा हूँ तो मैंने सीधे गा दिया जब आपका प्रोग्राम चालू।
1: क्या बात, लेकिन बहुत ही शानदार गाया।
0: नहीं शानदार तो नहीं गाया, हमें कमी खुद लगी।
1: नहीं नहीं, आपने जो जिस हाई पिच पर आप गए हैं उस हाई पिच पर जाना मतलब कम से कम मेरे बस की बात तो नहीं है।
0: नहीं बिल्कुल नहीं है सर,
1: लेकिन आप
0: कोशिश से कामयाब होती है।
1: जी जी जी, सरंग बदलती दुनिया में और भगवान की नीयत भी गड़बड़ हो जाती है।
0: बिल्कुल।
1: क्या बात है, क्या बात है, यही है मोहब्बत की इंतहा, जहाँ पर इंसान कह देता है कि हम आपको ऊपर वाले पर भी नहीं छोड़ सकते, पता नहीं उनकी नीयत न खराब हो जाए। मतलब यही कहा जाता है, जहाँ न पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि। और धर्मेंद्र मोहन जी लिखते हैं कि आज आपने बहुत बेहतरीन गाया है। अब देखिए ये आपके श्रोता बोल रहे
0: हैं, उनको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी दादा,
0: ओके सर,
1: चलो स्पष्ट सर,
0: खुश रहिए।
1: जी तो ये आवाज़ हमारे साथ जो आपको सुनाई पड़ी वो गोरखपुर से अनिल दादा की आवाज़, बड़ी प्यारी सी आवाज़ है भाई। और अब चलते हैं, देखते हैं भाई, हमने महफिल सजा ली है और आपको बुलाया है, तो चलिए थोड़ी सी महफिल सजाते हैं। हमारी एक गज़ल हो गई, आपका एक गीत हो गया, फिर हमारी एक गज़ल और फिर आपका एक गीत। लेकिन अब की बार हम अपने इस नगमे से आपको आवाज़ दे रहे हैं। दिल के सब राज दे रहा हूँ तुम्हें, दिल के सब राज दे रहा हूँ तुम्हें, दर्द का सांस दे रहा हूँ तुम्हें, ये गज़ल गीत सब बहाने हैं, मैं तो आवाज़ दे रहा हूँ तुम्हें। तो जी हाँ, मैंने आवाज़ आपको दी है बड़े नाज के साथ, अब आप भी अपनी आवाज़ मिला दीजिए मेरी आवाज़ के साथ। फिलहाल आपको इस महफिल में शरीक करते हैं, शामिल करते हैं इस प्यारे से नगमे के माध्यम से, और आपसे फिर मिलते हैं इस संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो गणेश 89.6 FM, ये है गोंडा ही नहीं, हम सभी के दिलों की धड़कन।

जी हाँ, गजलों के बाद अब गीत की दुनिया में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन है हमारे साथ भाई, कौन जुड़ चुके हैं इस गजल के बाद गीत के। हेलो हेलो जी, आप तक अगर मेरी आवाज जा रही हो तो दोबारा फोन मिला ले। स्वतः आपका फोन कट गया जी। सर जी, आपकी चॉइस से जो हमारी चॉइस मिल जाती है तो गुलिस्ता खिल जाता है, वैसे ही हम अकेले पैदा हुए हैं। क्या बात है भाई। और श्रोताओं से आपने कहा है कि आइए गोंडवालों, अपनी गुणगान की प्रतिभा दिखाइए। जी हाँ, और बिल्कुल यही चीज हम आपसे भी चाहेंगे धर्मेंद्र जी, कि आप अगर सुन रहे हो कि मैं जब बचपन में था तो ऑर्केस्ट्रा में गाने के लिए तरसता था, आज तुम्हें गाने का असली स्टेज मिला है। जी हाँ, क्या बात है। और ये स्टेज भाई धर्मेंद्र मोहन जी, गुलशन आज भी जिंदा है जो सबको मौका देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सही है। और अब देखते हैं भाई हमारे साथ कौन जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो हेलो जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, एक बार पुनः फ़ोन काट के मिला लें आप।

0: रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। बहुत ही प्यारी सी गजल है भाई ये। और धर्मेंद्र मोहन जी, जहाँ तक मैं जानता हूँ भाई, आपकी आवाज़, आपके गीतों का चयन, आपकी गजलों का चयन बहुत शानदार होता है। और जी, इसी के साथ भाई हमारी महफिल में कोई शरीक हो चुका है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो,
1: चुप कर
0: जी। ये लगता है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। और जी, देखते हैं कौन हमारे साथ।
2: हेलो
0: हेलो,
2: हाँ नमस्कार भैया।
0: क्या बात है भाई, दर्द कुमार जी, प्रणाम, कैसे हैं आप?
2: हाँ ठीक भैया, नंबर लगा रहे थे, उठ नहीं रहा था, वो आवाज ही नहीं आ रहा था उधर से।
0: जी आवाज नहीं आ रही थी और आपकी भी आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि हम दोनों की आवाज अब आ रही है। तो मैंने आपको बड़े नाज के साथ, अब आप भी आवाज मिला दीजिए मेरी आवाज के साथ।
2: और अनुज जी गा चुके?
0: अभी तो नहीं गाया उन्होंने,
2: कह रहे थे बहराइच से लौट जाऊंगा, आ जाऊंगा टाइम से, 9 बजे आ जाऊंगा।
0: जी तो आप उनको बता दीजिए कौन गाए।
2: अच्छा चलो फिर सुना देते हैं। मेरे इश्क का सितारा, सह कर जिसको मेरा रिदम, मेरे इश्क का सितारा, कभी तक मगाए कश्ती, कहीं खो गया किनारा, सागर जिसमें हरदम, कोई दिल से खेल देखे के मोहब्बतों की बाजी, कोई दिल से खेल देखे के मोहब्बतों की बाजी, वो कदम कदम से जीते, मैं कदम कदम से हारा, रहा कर जिसो मैं हरदम, ये हमारी बदनसीबी, जो नहीं तो और क्या है, ये हमारी बदनसीबी, जो नहीं तो और क्या है, जिसे मौत ने न पूछा उसे जिंदगी में मारा, रहा कर जिसो में हरदम, मेरे इश्क का सितारा, कभी डगमगाई कश्ती, कहीं खो गया किनारा, रहा कर जिसो में हरदम। थैंक यू सर।
0: क्या बात है भाई, रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा गीत और उसी प्यारे से अंदाज में आपने गाया।
2: हाँ, ऐसे हमने मतलब जल्दबाजी में हल्का फुल्का सुना दिया आज। हाँ, और
0: जी, और आशीर्वाद आपका, आप कैसे हैं? तो भाई आज तो हम चाहेंगे कि कुछ देर के बाद आपसे लोरी भी सुन ली जाए।
2: अच्छा, कुछ देर के बाद
0: या भी
2: अच्छा अच्छा
0: या भी आप चाहें तो भी सुना दे।
2: अगर कोई है तो कह दे, कहो।
0: नहीं, कोई है तो नहीं।
2: ठीक है, अच्छा। आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम। आज कल में ढल गया दिन हुआ तमाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम।

चमन सो गई गली गली, सो गए हैं सब नगर, सो गई गली गली, सो गया चमन चमन, सो गई गली गली, सो गए हैं सब नगर, सो गई कली कली, नींद कह रही है चल, मेरी बाह तो तू भी सो जा, सो गई रंग भरी सो, आज कल मिठल गया दिन वातमा, है बुझा बुझा सद बोझ सांस सांस पल, जी रहे हम सिर्फ कल की आस पर, है बुझा बुझा सदी बोझ सांस सांस पर, जी रहे हैं फिर भी हम सिर्फ कल की आस पर, कह रही है चांदनी देख तेरा नाम, तू भी सो जा, सो गई रंग भरी शाम, आज कल मिठल गया दिन वातमा, कौन आएगा इधर किस किराह देख हम, जिनकी आते सुनी जान किसके थे कट,

सुनी जाने की सुनते थे कदम अपना कोई नहीं अपने तो हैरान तू भी सो जा सो गई रंग भरी शाम आज कल में ढल गया

0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई दर्द कुमार जी, वास्तव में ये जो गुदगुदी है वो आपके कंठ से एकदम लगते हैं कि एकदम रफी साहब ही गा रहे हैं, या तो उन्होंने ही गाया या तो आप ही गाते हैं इस लोरी को।
0: अरे मेरे भाई, अभी किसी तरह मुल्ला पर निकल गया एक बैग, जब याद वही कुछ गले का प्रॉब्लम, लेकिन अब ईश्वर है जो साथ दे देता है, जो दर्द को दर्द से चल जाता है बस, और हम लोग
1: लेकिन मतलब
0: आबादी आप लोग,
1: लेकिन जो ये आपके गले से ये जो लोरी निकलती है बहुत शानदार निकलती है, बहुत खूबसूरत, जितनी तारीफ
0: कुछ आया, कुछ दर्द महसूस हो जाता है
1: बहुत ज्यादा, हम तो एकदम खुश हो जाते हैं।
0: वाह मेरे भाई, थैंक यू मेरे मनु भाई,
1: बहुत
0: चलो हमारा सैटरडे
1: भाई अब
0: हमारा खाली रह गया।
1: अनूप मिश्रा का लिख दिया है, बहुत खूब सुरेश जी मजा आ गया। हरिश्चंद शंकर भी है क्या भाई, उन्होंने गा दिया है स्वीट सॉन्ग। देखिए अनूप जी ने कहा गाने के लिए, लेकिन फिलहाल आपको आपका गीत उन्होंने सुन लिया है।
0: वाह थैंक यू भैया। अनूप भाई नमस्कार, आपको भगवान ईश्वर खुश रखे, आ गए हो तो बहुत बहुत
1: आ गए, बिल्कुल और आपकी तारीफ की है।
0: भाई अब आ जाए नो भाई, आप भी कोई प्रोग्राम दे दीजिए भाई, अब आपका इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं।
1: जी जी जी
0: ठीक है, अच्छा नमस्कार
1: जी, नमस्कार। हेलो
2: हेलो
1: जी
2: सर जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।
1: अच्छा ये तीन बार नमस्कार तो शायद मेरे हिसाब से धर्मेंद्र मोहन जी ही करते हैं।
2: यस सर।
1: कैसे हैं आप?
2: बस मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, आप बताइए कैसे हैं?
1: जी जी आशीर्वाद आपका,
2: बस सुनिए बस
1: जी।
2: कसम बातें प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या, कसम वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं, झूठे हैं ना तो का क्या, कसम वादे प्यार वफा।

वाले मिट्टी में मिल जाएगा, कसम वादे प्यार वफा, बातें हैं बातों क्या क्या।

0: देखें बातों का क्या। सर जी गुड नाइट।
1: क्या बात है भाई, बहुत ही शानदार गीत। मन्ना डे की आवाज में फिल्म उपकार का ये गीत वास्तव में दिल को छूता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस गीत को चुनने के लिए।
0: थैंक यू सर
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको। जी हाँ, और अब घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि भाई आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। तो शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल रविवार को ठीक 1 बजे आपसे मुलाकात होगी आपके ही कार्यक्रम ओपन माइक अपना टैलेंट अपना FM में। ये महफिल आपकी है, अगर आपके पास वक्त है और आप उसे एक बेहतरीन पास टाइम बताना चाहते हैं तो 89.6 FM के दरवाजे खुले हैं आपके लिए। आइए कल 12:30 बजे मिलिए हमसे और लाइव हम और आप एक दूसरे को रूबरू देखें, बहुत अच्छी सी बात होगी। जी हाँ, आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर आपसे मुलाकात होती है ठीक 1 बजे आप ही के कार्यक्रम ओपन माइक अपना टैलेंट अपना FM में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।

नमस्कार दोस्तों, रात काफी आगे बढ़ चुकी है, सड़कें खामोश हैं और अगर आप अभी भी जाग रहे हैं तो शायद ये कहानी आपको ही ढूंढ रही थी। आप सुन रहे हैं 89.6 FM और मैं हूँ आपकी लेट नाइट आरजे। आज की कहानी कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नोबेल पुरस्कार विजेता महान लेखक रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी एक रहस्यमयी रचना, हंग्री स्टोन्स यानी भूखा पत्थर। क्या आपने कभी सोचा है कि पत्थरों को भी भूख लग सकती है, कि कोई इमारत इंसान की सांसों, उसकी यादों और उसके वजूद से जिंदा रह सकती है? आज की कहानी इसी सवाल से शुरू होती है, तो लाइट धीमी कीजिए और सुनिए भूखा पत्थर। रविंद्रनाथ टैगोर जी बताते हैं कि मैं और मेरा रिश्तेदार पूजा यात्रा से कलकत्ता लौट रहे थे, तभी ट्रेन में हमारी मुलाकात उस आदमी से हुई। उसका नाम सत्यचरण था। उसके पहनावे और हाव भाव से हमने उसे पहले तो बेहद देहाती समझा, लेकिन उसकी बातें सुनकर हम हैरान रह गए। वो सभी विषयों पे इतने आत्मविश्वास से बात करता था कि मानो सर्वशक्तिमान ईश्वर अपने हर काम में उससे सलाह लेता हो। हम इससे पहले कभी अपने घरों से बाहर नहीं निकले थे, इसलिए उस व्यक्ति का व्यवहार देखकर हम अचंभित रह गए। विषय चाहे कितना भी मामूली क्यों ना हो, वो विज्ञान के उदाहरण देता, वेदों पर टिप्पणी करता या किसी फारसी कवि की चौपाइयां सुनाता। और चूंकि हमें विज्ञान, वेदों या फारसी का कोई ज्ञान नहीं था, इसलिए उसके प्रति हमारी प्रशंसा बढ़ती ही चली गई। मेरे रिश्तेदार को पूरा विश्वास हो गया कि हमारे सहयात्री को किसी रहस्यमय शक्ति से प्रेरणा मिली होगी। वो हमारे असाधारण साथी के मुख से निकले सबसे साधारण कथन को भी श्रद्धा पूर्वक सुनते थे और चुपचाप उसकी बातचीत के नोट्स लिखते थे। जब ट्रेन जंक्शन पर पहुंची, तो हम सब अगली ट्रेन के इंतजार में वेटिंग रूम में इकट्ठा हो गए। रात के 10 बज रहे थे और जैसा कि हमने सुना था कि रेल की पटरी में कुछ खराबी के कारण ट्रेन बहुत देर से आएगी, मैंने अपने बिस्तर मेज पर बिछाया और आराम से सोने के लिए लेट ही रहा था, तभी उस व्यक्ति ने, सत्यचरण जी ने यानी, कहानी सुनाना शुरू कर दिया। क्योंकि यात्रियों के आने जाने की वजह से नींद किसी को भी नहीं आ रही थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने जूनागढ़ में अपना पद त्याग दिया और उसके बाद उन्हें बारिश में कर वसूलने वाले सरकारी अफसर के रूप में नियुक्ति मिली। बारिश एक बेहद रमणीय स्थान है। सुस्ता नदी पथरीले रास्तों पर कल कल करती और कंकड़ों पर बहती है। नदी से 150 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती है और उस सीढ़ी के ऊपर नदी के किनारे और पहाड़ियों की तलहटी में एक अकेला संगमरमर का महल खड़ा है। इसके आसपास कोई मानव बस्ती नहीं है। बारिश, गांव और कपास का बाजार बहुत दूर स्थित है। लगभग 250 वर्ष पूर्व सम्राट महमूद शाह द्वितीय ने अपनी सुख सुविधाओं के लिए इस एकांत महल का निर्माण करवाया था। उनके समय में इसके फव्वारों से गुलाब जल की फुहारें फूटती थी और ठंडे संगमरमर के फर्श पर स्नान से पहले बाल सवारे हुए युवा फारसी युवतियां बैठती थी और स्वच्छ जल में अपने कोमल पैरों को डुबोते हुए गिटार के धुन पर अपने क्षेत्र की गजलें गाती थी। अब फव्वारे नहीं चलते, गाने बंद हो गए और वो महल सत्यनारायण जी को निवास के लिए दिया गया। सत्यनारायण जी आगे बताते हैं कि मेरे दफ्तर के पुराने क्लर्क करीम खान ने मुझे बार बार चेतावनी दी कि मैं वहाँ ना रहूं। उन्होंने कहा, अगर चाहो तो दिन वहाँ बिता लो, लेकिन रात में कभी मत रुकना। मैंने हल्की हंसी के साथ उनकी बात टाल दी। नौकरों ने कहा कि वे शाम तक काम करेंगे और रात को चले जाएंगे। मैंने तुरंत सहमति दे दी।
उस घर की इतनी बदनामी थी कि अंधेरा होने के बाद चोर भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करते थे। शुरू में उस सुनसान महल का अकेलापन मुझ पर किसी बुरे सपने की तरह हावी था। मैं बाहर रहता, जितना हो सके उतनी देर तक कड़ी मेहनत करता, फिर रात को थका हारा घर लौटता, बिस्तर पर जाता और सो जाता। एक सप्ताह बीतने से पहले ही वो स्थान मुझे एक अजीब सा आकर्षण डालने लगा। उसका वर्णन करना या लोगों को इस बात पे विश्वास दिलाना कठिन है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो पूरा घर एक जीवित जीव हो और मुझे धीरे धीरे मदहोश कर रहा हो। शायद ये प्रक्रिया घर में कदम रखते ही शुरू हो गई थी, लेकिन मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब मुझे पहली बार इसका एहसास हुआ था। ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत थी और बाजार में बेहद सन्नाटा पसरा होने के कारण मेरे पास कोई काम नहीं था, इसलिए मैं उस दिन ऑफिस से जल्दी घर आ गया। सूर्यास्त से पहले मैं सीढ़ियों के नीचे पानी के किनारे कुर्सी पर बैठ गया। नदी सिकुड़कर नीचे धस गई थी, दूसरी ओर रेत का एक चौड़ा हिस्सा शाम के रंगों से जगमगा रहा था। इस तरफ साफ उथले पानी की तलहटी में पड़े कंकड़ चमक रहे थे, कहीं भी हवा का झोंका नहीं था और शांत हवा में पास की पहाड़ियों पर उगने वाली सुगंधित झाड़ियों की घुटन भरी गंध फैली हुई थी। मैंने बाहर घूमने जाने को सोचा और उठने ही वाला था कि मुझे पीछे सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़ के देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब मैं ये सोच के दोबारा बैठ गया कि ये मेरा भ्रम है, तभी मुझे कई कदमों की आहट सुनाई दी, मानो बहुत सारे लोग सीढ़ियों से नीचे भाग रहे हों। मेरे शरीर में खुशी की एक अजीब सी सहरन दौड़ गई, जिसमें थोड़ा सा डर भी मिला हुआ था। हालांकि मेरे आंखों के सामने कोई नहीं था, फिर भी मुझे लगा कि गर्मियों की इस शाम में खुश युवतियों का एक समूह नदी में स्नान करने के लिए सीढ़ी से नीचे आ रहा था। घाटी में, नदी में या महल में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन मुझे उन युवतियों की हंसी बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी, मानो किसी झरने से 100 झरनों की कल कल आवाज आ रही हो। वे मेरे पास से दौड़ती हुई, एक दूसरे का पीछा करते हुए नदी की ओर जा रही थी। उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं देखा। जैसे वे मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, वैसे ही मैं भी मानो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। नदी एकदम शांत, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इसके स्थिर और साफ पानी में अचानक कई हाथों की झंझनाहट से हलचल मच गई हो, जिनमें कंगन खनक रहे थे। लड़कियां हंस रही थी, दौड़ रही थी और एक दूसरे पर पानी उछाल रही थी, और सुंदर तैराकों के पैरों से छोटी छोटी लहरें मोतियों की बौछार की तरह ऊपर उठ रही। मेरे दिल में एक अजीब सी सहरन दौड़ गई। मेरे सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा कि अगर मैं ध्यान से सुनूं तो उनकी सारी बातें समझ जाऊंगा, लेकिन मैंने कितना भी ध्यान से सुना, मुझे जंगल में झिंगरों की चहचहाट के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दिया। ऐसा लगा मानो मेरे सामने 250 वर्षों का एक काला पर्दा लटक ऐसा लगा मानो मेरे सामने 250 वर्षों का एक काला पर्दा लटका हुआ हो और मैं कांपते हुए उसका एक कोना उठाकर दूसरी तरफ देखना चाहता था। हालांकि दूसरी तरफ बिल्कुल अंधेरा था। फिर मुझे तीव्र भय सताने लगा कि कहीं देवी ने मेरे एकांत का फायदा उठाकर मुझ पे कब्जा तो नहीं कर लिया। मैंने अपने रसोइयों को बुलाया और मसाले और घी से भरपूर लजीज और स्वादिष्ट मुगलई भोजन बनाने का आदेश दिया। अगली सुबह सारा मामला एक कल्पना जैसा प्रतीत हुआ। हल्के मन से मैंने साहबों की तरह टोपी पहनी
और काम पे निकल पड़ा। मुझे उस दिन अपनी तिमाही रिपोर्ट लिखनी थी और देर से लौटने की उम्मीद थी, लेकिन अंधेरा होने से पहले ही मैं अजीब तरह से अपने घर की ओर खिंचा चला गया। मुझे लगा कि वे सब मेरा इंतजार कर रहे हैं और मुझे अब देर नहीं करनी चाहिए। अपनी रिपोर्ट छोड़कर मैं उठा और उस विशाल शांत महल तक पहुंच गया। मंजिल पर सीढ़ियां एक विशाल हॉल की ओर जाती थी। दिन अभी ढला ही था, दीपक अभी तक जलाए नहीं गए थे। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अंदर एक हलचल मच गई, मानो लोगों का एक समूह हड़बड़ी में बिखर गया हो और दरवाजों, खिड़कियों, गलियारों, बरामदों और कमरों से होता हुआ जल्दबाजी में बाहर निकल रहा हो। मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैं स्तब्ध खड़ा रहा। एक तरह की आनंद भरी अनुभूति से मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं संगमरमर के फर्श पर फव्वारों की कलकल, गिटार की एक विचित्र धुन, गहनों की झंकार और पायर की खनक को सुन सकता था। ये सब मिलकर मेरे चारों ओर एक विचित्र अलौकिक संगीत रच रहे थे। फिर मैं एक सम्मोहन में आ गया। लगा यही तो सच है, यह अलौकिक दृष्टि ही संसार की एकमात्र वास्तविकता है। और उस शांत हॉल के अंधेरे में मैं खड़ा जोर जोर से हंसने लगा। उसी क्षण मेरा नौकर हाथ में जलता हुआ मिट्टी के तेल का दीपक लेकर अंदर आया और मैं दोबारा होश में आ गया और अपने इस जीते जागते सपने को सोचकर मुस्कुरा पड़ा। अपना काम समाप्त करके खाना खाकर मैंने दीपक बुझा दिया और एक छोटे से कमरे में अपने पलंग पर लेट गया। पता ही नहीं चला मैं कब सो गया था या कितनी देर सोया, लेकिन मैं अचानक चौंक कर जाग गया। हालांकि मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दी और ना ही कोई दिखाई दिया, केवल पहाड़ी की चोटी पर एक तारा अस्त होता हुआ दिख रहा था और नए चांद की धुंधली रोशनी खिड़की से अंदर धीरे धीरे आ रही हो। मुझे कोई दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई मुझे धीरे से धक्का दे रहा हो। और जब मैं जागा तो उसने एक भी शब्द नहीं कहा, लेकिन अंगूठियों से सजी अपनी पांचों उंगलियों से इशारा किया कि मैं चुपचाप उसके पीछे आऊं। मैं चुपचाप उठा, सब कुछ सुनसान था। महल के अनगिनत कमरों में जहां सन्नाटा पसरा था और गूंजती हुई आवाजें गूंज रही थी, मेरे सिवा कोई नहीं था। फिर भी मुझे हर कदम पर डर लग रहा था कि कहीं कोई जाग ना जाए। महल के ज्यादातर कमरे हमेशा बंद रहते थे और पहले मैं उनमें कभी नहीं गया था। मैं सांस रोके चुपचाप अपने अदृश्य मार्गदर्शक के पीछे पीछे चला। अब मैं नहीं बता सकता कि वो कहाँ थी, मैंने कितने अंतहीन अंधेरे और संकरे रास्ते, कितने लंबे गलियारे, कितने शांत और गंभीर सभाकक्ष और कितनी गुप्त कोठरियां पार की। हालांकि मैं अपनी सुंदर मार्गदर्शक को देख नहीं पा रहा था, फिर भी उसका रूप मेरी कल्पना में स्पष्ट था। एक अरब लड़की जिसकी भुजाएं संगमरमर की तरह कठोर और चिकनी थी और उसकी ढीली आस्तीनों से दिखाई दे रही थी। टोपी के किनारे से उसके चेहरे पे एक पतला सा घूंघट गिर रहा था। उसकी कमर पर एक कटार थी। मुझे लगा मानो हजारों अरब रात्रियों में से एक कहानी मेरे पास भी आ गई है। अंत में मेरी मार्गदर्शक गहरे नीले पर्दे के सामने अचानक रुक गई और नीचे किसी चीज की ओर इशारा करती हुई प्रतीक हुई। वहाँ कुछ भी नहीं था। अचानक भय से मेरा हृदय जम गया। मुझे लगा जैसे मैंने पर्दे के नीचे जमीन पर एक भयानक नीग्रो हिंजड़ा देखा, जो कीमती जटाओं से लिपटा हुआ था, पैर फैलाकर बैठा ऊंग रहा था और उसकी गोद में एक नंगी तलवार थी। मेरी सुंदर मार्गदर्शक हल्के से उसके पैरों से टकराई और पर्दे का एक किनारा ऊपर उठ गया। मुझे कमरे के इस हिस्से की एक झलक मिली जिसपे फारसी कालीन बिछा था। अंदर कोई बिस्तर पर बैठा था
मैं उसे देख नहीं सका, बस सुनहरे कढ़ाई वाले चप्पलों में लिपटे दो सुंदर पैर दिखाई दिए। अंदर जल रही एक विचित्र प्रकार की अगरबत्ती की सुगंध ने मेरी सारी इंद्रियों को वश में कर लिया। मैंने डरते हुए हिंजड़े के फैले हुए पैरों के ऊपर से कदम रखने की कोशिश की, तभी वो अचानक चौंक के जाग गया और तलवार उसकी गोद से संगमरमर की फर्श पर जोरदार आवाज के साथ गिरी। एक भयानक चीख सुनकर मैं चौंक गया और देखा पसीने से तर बदर बैठा था और सुबह की रोशनी में चांद किसी थके हारे नींद से वंचित रोगी की तरह पीला दिख रहा था। हमारा एक पागल मेहर अली अपनी रोज की आदत के अनुसार पीछे हटो चिल्लाते हुए सुनसान सड़क पर भाग रहा था। इस तरह मेरी अरेबियन नाइट में से एक का अचानक अंत हुआ, लेकिन अभी तो हजारों रातें बाकी थी। मेरे प्यारे श्रोतागण, सांस थाम कर बैठिए और आगे की कहानी आपको सुनाते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

फिर मेरे दिन और रात के बीच एक गहरा विरोधाभास पैदा हो गया। दिन में मैं थका हारा काम पे जाता, रात के मोहक

कभी ऊंचे गद्दीदार कुर्सी पर बैठता, कई बार रात का अंधेरा जैसे गहराता वैसे ही अद्भुत घटनाएं घटित होने लगती और मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में भटकता रहता। मुझे उस सुंदर व्यक्ति की झलक चारों तरफ दिखाई देती। इन स्वप्न भंवर के बीच मेहंदी की खुशबू और गिटार की झंकार सुनाई देती। उस स्त्री ने मुझे पागल कर दिया था, उसकी तलाश में मेरी नींद चैन सब खो गया था। उस रहस्यमय स्वप्न लोक में, गलियों के उस भ्रामक भूल भुलैया में, मैं एक कमरे से दूसरे कमरे, एक रास्ते से दूसरे रास्ते, कभी कभी शाम के समय जब मैं किसी शाही खानदान के राजकुमार की तरह बड़े से दर्पण के सामने सज धज कर खड़ा होता था, जिसके दोनों ओर मोमबत्तियां जल रही होती थी, तो अचानक मुझे अपने बगल में एक फारसी सुंदरी का प्रतिबिंब दिखाई देता था। उसके गर्दन का एक तेज घुमाव, उसकी काली आंखों में तीव्र जुनून और पीड़ा की एक झलक, उसके कोमल लाल होठों पर वाणी का हल्का सा आभास, उसका कोरा और पतला शरीर खिलती हुई लता की तरह यौवन से परिपूर्ण था। वो थोड़ी देर के लिए दिखाई देती और फिर गायब हो जाती। पहाड़ियों और जंगलों की सुगंध से लती हवा का एक तेज झोंका मेरी रोशनी बुझा देता और मैं अपने बिस्तर पर लेट जाता, आंखें बंद कर लेता और मेरा शरीर आनंद से सिहर उठता।

कानों में हल्की फुसफुसाहट और मेरे माथे पर सुगंधित सांसें तैरने लगती या एक मीठी सुगंध से भरा रुमाल बार बार मेरे गालों पर लहराता, फिर धीरे धीरे एक रहस्यमयी नाग अपने स्तब्ध करने वाले कुंडल मेरे चारों ओर लपेट लेता और एक गहरी आह भर के मैं बेहोश हो जाता और फिर गहरी नींद में सो जाता। उसमें पीड़ा थी, लालसा थी, आकर्षण था और उसके आकर्षण में मैं अपने आप को बिल्कुल ही भूलता जा रहा था, काम में भी मन नहीं लग रहा था। धीरे धीरे मैं बदलने लगा, इतना धीरे कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब पहले जैसा नहीं रहा। मुझे भूख लगनी बंद हो गई, नींद आँखों से चली गई, दिन और रात का फर्क मिटने लगा। महल अब बाहर नहीं था, वो मेरे भीतर उतर चुका था। मेरे बचपन की बातें, माँ की आवाज, पिता की परछाई, पहली खुशी, पहला डर, सब जैसे किसी ने धुंध में लपेट लिया हो। मैं सोचता तो दीवारें सोचती, मैं डरता तो फर्श ठंडी सांस लेती। दिन में मैं थका हारा काम पे जाता और रात में मैं फिर से उसी जाल में फंस जाता। एक शाम मैंने बाहर जाने का फैसला कर लिया। पता नहीं किसने मुझे रुकने के लिए कहा। उस दिन मैंने किसी की बात नहीं मानी। मेरी अंग्रेजी टोपी और कोट रैक पे रखे थे और मैं उन्हें उतारने ही वाला था कि अचानक नदी की रेत, पहाड़ियों के सूखे पत्तों से भरी एक तेज बवंडर ने उन्हें उठा लिया और गोल गोल घुमाने लगा। हंसी की एक जोरदार गूंज ऊंची होती चली गई, जो आनंद के सभी सुरों को झंझोरती हुई सूर्यास्त की भूमि में विलीन हो गई। पर मैं आगे बढ़ता रहा। सब चिल्ला रहे थे, प्लीज मत जाओ, मत जाओ, यहाँ रहो। मैंने पीछे नहीं देखा क्योंकि मुझे पता था अगर देखा तो रुक जाऊंगा। हवा अचानक ठंडी हो गई, मेरी सांसें भारी होने लगी। किसी ने मेरी कलाई पकड़ी, किसी ने कपड़े खींचे, किसी ने मेरा नाम पुकारा। मैंने यादों को पकड़ लिया जबरदस्ती। मैंने अपने बचपन का नाम जोर जोर से लेना शुरू किया, अपनी माँ की आवाज याद की और दौड़ा। महल चीखा, पहली बार दीवारें फटने लगी जैसे पत्थर रो रहे हो, और फिर अचानक सब हिलने लगा। थोड़ी देर के लिए मेरे पैर जम गए। उस दिन मैंने किसी के दिल दहलाने वाले सिसकने की दबी हुई आवाज सुनी, जैसे बिस्तर के नीचे, जमीन के

की पथरीली नींव के नीचे किसी कब्र की गहराई से कोई आवाज करुणता से मुझसे विनती कर रही हो, हे भगवान मुझे बचाओ। कठोर भ्रम, मृत्यु जैसी नींद और व्यर्थ सपनों के इस दरवाजे को तोड़ दो, मुझे अपने पास बैठाओ, अपने दिल से लगा लो, मुझे छोड़ के मत जाओ। और पहाड़ियों, जंगलों और नदी के पार से गुजरते हुए मुझे अपने ऊपर के धूप से जगमगाते कमरों के गर्म रोशनी में ले जाओ। मेरे ऊपर आंसू टपकने लगे, बाहर तूफान चीख पुकार कर रहा था। मैंने कहा, अगर मैं आज नहीं जाऊंगा तो फिर कभी नहीं जा पाऊंगा। तूफान और बारिश के बावजूद मैं महल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और तभी मुझे एक सकरा सा रास्ता दिखाई दिया। मैं बाहर निकला, बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। मैं रुका नहीं, दौड़ता गया, भागता गया और अंत में अपने कार्यालय पहुँचा। वहाँ बूढ़ा करीम खान बैठा हुआ था। मैंने कहा, करीम खान मुझे प्लीज इन सब का मतलब समझाओ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहता हूँ। उस बूढ़े क्लर्क ने धीरे धीरे मुझसे बहुत सारी बातें किया। मुझे जो समझ में आया वो ये था कि एक समय उस महल में अनगिनत अधूरी इच्छाएं, असंतुष्ट लालसाएं और प्रचंड आनंद की ज्वालाएं धधक रही थी और उन सभी दिल के दर्द और चकनाचूर आशाओं के अभिशाप ने उसके हर पत्थर को प्यासा और भूखा बना दिया था। मानो वो किसी भी जीवित व्यक्ति को जो संयोगवश पास आ जाए, एक भूखी राक्षसी की तरह निगलने को बेताब हो। वहाँ लगातार 3 रात बिताने वालों में से कोई भी इन क्रूर चंगुलों से नहीं बच सका, सिवाय एक मेहर अली के, जो अपनी बुद्धि खोकर बच निकला था। उसी क्षण कुलियों ने घोषणा कर दी कि ट्रेन आ रही है। टैगोर जी कहते हैं कि मैं घबरा गया। मैंने कहा, अरे इतनी जल्दी? जैसे ही ट्राम अंदर आई, हमने जल्दी से जल्दी अपना सामान लपेटा। एक अंग्रेज सज्जन जो शायद अभी अभी नींद से जागे थे, फर्स्ट क्लास के डिब्बे से बाहर स्टेशन का नाम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही उनकी नजर हमारे सहयात्री पर पड़ी, उन्होंने उनको हेलो कहा। वो उनको पहचानते थे और उन्हें अपने डिब्बे में ले गए। चूंकि हम सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ गए थे, इसलिए हमें ये जानने का मौका ही नहीं मिला कि वो व्यक्ति कौन था और इस कहानी का क्या अंत हुआ। प्यारे श्रोतागण, रविन्द्रनाथ टैगोर की ये कहानी हमें डराने के लिए नहीं लिखी गई है, ये चेताने के लिए लिखी गई है। हर वीरान जगह खाली नहीं होती, कुछ जगह यादों से भरी होती है, इतनी भरी कि और यादों की भूखी हो जाती है। वो प्रेम की भूखी होती है, उनमें आहे कैद होती है और कुछ पत्थर भूखे रह जाते हैं और चुपचाप तुम्हें खा जाते हैं। प्यारे श्रोतागण, पुराना महल और कोई सुनी इमारत अगर देर तक आपको देखने लगे तो समझ जाइएगा कि वो आपको नहीं देख रही, वो आपको याद कर रही है। आप सुन रहे थे 89.6 FM लेट नाइट हॉरर सीरीज में रविंद्रनाथ टैगोर की अमर कहानी हंग्री स्टोन्स। मैं हूँ आपकी लेट नाइट आरजे। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। गुड नाइट। और अगर नींद ना आए तो डरिए मत, कभी कभी पत्थर बस याद दिलाने आते।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: काले काले बादलों का अंबर पर डेरा है, ठंडी ठंडी हवाओं ने हर तरफ से घेरा है, रिमझिम बरसती बूंदों ने सुर ऐसा छेड़ा है, इस सुहाने मौसम ने हम सब का मन मोहा है। कागज की कश्तियों का पानी में बह जाना, भीगी भीगी मिट्टी की खुशबू का महक जाना, चाय की चुस्कियों के साथ यादों का आ जाना, बड़ा ही हसीन है बारिश का ये तराना।
1: पत्तों पर थिरकती है मोती जैसी बूंदें, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति आंखें मूंदे, हर दिल में जग रही है एक नई उमंग। चलो आज बिखरेंगे हम भी सुरों के नए रंग। संगीत की महफिल है सावन की यह रात, सुर से सुर मिलाएंगे होगी सुरों की बरसात। हो जाइए थामिए एक दूसरे का हाथ, शुरू करते हैं आज का बीबीजी यानी कि भूले बिसरे गीत। मैं हूँ आरजे ख्वाहिश।
0: मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: तो रात के सफर को आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारे से नाम के साथ। हाँ जी दोस्तों, नाम हमारा होने वाला है आज बारिश, और बारिश हो और प्यारे प्यारे गीत ना हो ये कहाँ मुमकिन है। तो आइए आज का सफर शुरू करते हैं प्यारी सी बूंदों के साथ। सुनाती हूँ एक प्यारा सा नगमा।

जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब कोई भी गाना होता है, जब कोई भी फिल्म होती है, तो उस शूटिंग के दौरान कोई ना कोई एक ऐसी कहानी उस गाने के पीछे की होती है। आज एक बहुत ही प्यारा सा गाना और उसके पीछे की कहानी, जो कि बारिश में फिल्माया गया है राज कपूर और नरगिस पर, भारतीय सिनेमा का सबसे आइकॉनिक रेन सॉन्ग है। इस गाने की शूटिंग के दौरान इस एक मज़ेदार वाक्या हुआ था जो आज मैं आपको बताऊंगी। गाने में तीन छोटे बच्चे रेनकोट पहनकर सड़क पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। वे बच्चे कोई और नहीं बल्कि राज कपूर के ही बच्चे रणधीर कपूर, रीमा कपूर और ऋषि कपूर थे। ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में बताया भी है कि शूटिंग के दौरान रो रहे थे, तब नरगिस ने उन्हें चॉकलेट का लालच देकर चुप कराया और शॉट के लिए राजी किया गया। ये गाना आज भी सच्चे प्यार की एक बहुत बड़ी मिसाल है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, इस गाने को सुनेंगे, लेकिन एक और गाना है जिसे हम और बताएंगे।

अब आती है बारी उस गाने की जो आज भी हम सुनते हैं तो बस कुछ याद आ जाता है। कुछ यादें वो बारिश के दिनों वाली फिर से ताज़ा हो जाती हैं। गाना है एक लड़की भीगी भीगी सी। किशोर कुमार और मधुबाला का ये गाना आज भी इतना मशहूर है कि जो भी इसे सुनता है और गुनगुनाता है वो सावन की बूंदों के साथ कुछ खो सा जाता है। मधुबाला का चुलबुला अंदाज और उसी के साथ किशोर कुमार की मस्ती, क्या ही कहना है इस गाने का। बता दें कि संगीत निर्देशक SD बर्मन कुछ ऐसा संगीत चाहते थे जो रोज़मर्रा की आवाज़ों से मेल खाए। किशोर कुमार इस गाने की जो सिचुएशन थी उसे ऐसे बनाना चाहते थे कि लगे कि वो बिल्कुल असली है। इसे बिल्कुल असली और एक्चुअल में दिखाने के लिए गैराज के टूल्स का इस्तेमाल किया गया। गाने की शुरुआत में जो कार के नेटबोर्ड कसने और पानी की बाल्टी पलटने जैसी आवाज़ें आती हैं वो पूरी तरीके से सिचुएशनल थी। गाने में किशोर कुमार की असली मस्ती और मधुबाला की बेमिसाल खूबसूरती का ऐसा फ्यूजन हुआ कि ये गाना एवरग्रीन बन गया। आज भी ये गाना लोगों की जुबान पर उतना ही कहीं ना कहीं आता है और उतनी ही मदहोशी और मस्ती से बारिश के दिनों में गुनगुनाया जाता है। तो आइए लिसनर, चलते हैं, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं जो कि है एक लड़की भीगी भागी सी।

0: हाँ जी
1: कोई
0: दोस्तों,
1: बात
0: जब हम कभी किसी से मिलते हैं लाइक समवन स्पेशल, तो अगर बारिश हो जाए और हम बाइक पे हों, गाड़ी पे हों, तो वो जो माहौल हो बन जाता है ना, बेहद खुशनुमा बन जाता है। और उसी खुशनुमा मौसम में अगर ये गाना चल जाए, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, ये मूवी है काला बाजार। और इस कहानी के पीछे भी, इस गाने के पीछे भी एक बहुत प्यारी सी कहानी है, जो कि देव आनंद और वहीदा रहमान का एक बेहद खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग है। इसकी शूटिंग मुंबई में असली बारिश में की गई थी। और आपको तो पता ही है कि मुंबई की बारिश, वाओ, मतलब कहा जाता है कि एक मुंबई की बारिश हो और लड़की भीगी भागी हो, और रात की जो सड़कें होती हैं वहाँ की सड़कें कभी भी सोती नहीं हैं। तो मुंबई में ये गाना फिल्माया गया, वो भी असली बारिश में। निर्देशक विजय आनंद पर्दे पर असली मॉनसून का जादू दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोई नकली वाटर टैंक इस्तेमाल नहीं किया। देव आनंद और वहीदा रहमान एक ही छाते के नीचे मुंबई की सड़कों पर चल रहे थे। उस दौरान में ये भी कहा जाता है कि उस दौर में भारी कैमरों के साथ असली बारिश में शूट करना बेहद मुश्किल था, लेकिन देव साहब की बेफिक्री और वहीदा जी की सादगी ने इस गाने को एक टाइमलेस क्लासिक बना दिया। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को, रिमझिम के तराने लेके आई बारात।

अब आते हैं, बात करते हैं उस गीत की जो कि है फिल्म ए लव स्टोरी का, जो कि है रिमझिम रिमझिम। संगीत सम्राट आर डी बर्मन का ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा एल्बम था। पंचम दा इस गाने को लेकर बेहद भावुक थे, क्योंकि एक लंबे समय के बाद वो इसी गाने से बॉलीवुड में वापसी कर रहे थे। उन्होंने इस गाने को बारिश की बूंदों के साथ पिरोया, और ऐसा पिरोया कि आज भी ये हर किसी की जुबान पर कहीं ना कहीं सुनाई दे जाता है। अनिल कपूर और मनीषा कोहराला पर फिल्माए गए इस गाने की रिलीज से ठीक पहले पंचम दा ने इसके धुनों को फाइनल किया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई भी काम वक्त से बहुत पहले या वक्त के कुछ पहले होता है तो बात ही कुछ अलग होती है। आखिरी टाइम पर फाइनल हुई धुनों ने ही इस गाने को इतना खूबसूरत बना दिया कि ये आज भी कहीं ना कहीं बारिश की जब भी बात आती है तो इसे ज़रूर गुनगुनाया जाता है। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत जो कि है रिमझिम रिमझिम।

गाना सुनाने से पहले मैं बताऊं, एक बहुत ही प्यारा सा गीत है जो कि है जिंदगी भर नहीं भूलेगी ये बरसात की रात। अब इस गाने के पीछे की बहुत ही प्यारी सी कहानी है। गीतकार साहिर लुधियानवी ने इस गाने को एक गहरी कविता के रूप में लिखा था। कहानी के अनुसार गायक को बारिश की एक रात में एक अनजान लड़की यानी मधुबाला से प्यार हो जाता है। इस गाने को बारिश के बैकड्रॉप के साथ इस तरह कंपोज किया गया था कि ये केवल एक गाना नहीं बल्कि फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने का एक मुख्य जरिया बना। इस प्यारी सी कहानी के साथ आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को जिसमें है हमारी हम सब की प्यारी मधुबाला।

0: आइए अब बात करते हैं उस गीत की जो बरसात के दिनों में कहीं ना कहीं सभी की जुबान पर होता है, ओ सजना बरखा बहार आई। इसे गाया था लता मंगेशकर जी ने और ये फिल्माया गया था साधना जी पर। संगीतकार सलिल चौधरी एक दिन तेज बारिश के दौरान अपने घर की खिड़की के पास बैठे थे। खिड़की पर गिरती पानी की बूंदों की रिदम से उन्हें एक धुन सूझी। उन्होंने सबसे पहले इसे बंगाली गाने ना मोन लागे रे के रूप में रिकॉर्ड किया था। बाद में विमल राय की फिल्म के लिए इसी धुन को हिंदी में बदल दिया गया, जो हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत और शांत मानसून के गानों में से एक बन गया। तो आइए सुनते हैं ये बेहद ही प्यारा सा गीत।
1: ओ सजना

आवाज से ही इस गाने की पहचान है और आवाज ही हर किसी के एक व्यक्तित्व की पहचान भी होती है। जी हाँ दोस्तों, अगला गाना इस क्लासिक गाने को मन्ना डे ने और लता मंगेशकर ने गाया था। संगीत सलिल चौधरी का था और ये गाना था हरियाला सावन ढोल बजाता आया। विमल रॉय की इस फिल्म का यह गाना किसी प्रेमी प्रेमिका के रोमांस पे नहीं बल्कि भारतीय किसानों और धरती के जुड़ाव पर आधारित है। कहानी के अनुसार सूखे से परेशान गांव वाले जब आसमान में काले बादल देखते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि बारिश का मतलब उनके लिए नई जिंदगी और फसलों का उगना है। गीतकार शैलेन ने बादलों की गड़गड़ाहट की तुलना ढोल की आवाज से की है, इसीलिए इस गाने का नाम भी कुछ ऐसा दिया, हरियाला सावन ढोल बजाता आया। आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।

0: लगन लगी,
1: मन मगन हुआ
0: फिर लगन लगी।
2: आइए अब बात करते हैं उस गीत की जिसने बारिश के रोमांटिक पहलू को दिखाने की बजाय आम आदमी की खुशियों को दिखाया है, जो कि है दम दम डीगा डीगा। इसे मुकेश ने गाया था और अभिनेता राज कपूर जी पर यह फिल्माया गया था। संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। इस गाने में जब राज कपूर जी आम आदमी की खुशी को दिखाते हैं, मुंबई की सड़कों पर भरे पानी में थिरकते हैं, तो वो गर्मी के बाद आई हुई पहली बरसात और राहत का जश्न मना रहे होते हैं। इस गाने की शूटिंग के दौरान सड़कों पर असली जैसा माहौल बनाने के लिए भारी मात्रा में टैंकरों का इस्तेमाल किया गया था। बहुत ही प्यारे धुनों के साथ इसे शूट भी किया गया था। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: बरसात की बूंदों ने आज फिर यादों का जहां आबाद किया, सुरमई नगमों ने गुजरे दौर के हर लम्हे को याद किया। अब ठहरने लगी है बारिश और महफिल समेटने का वक्त है। मौसम की हर बूंद ने आज एक नया तराना गाया है, पुराने गीतों ने हर दिल में एक नया एहसास जगाया है। हवाओं में घुली है आज भी इन सुरों की भीनी सी खुशबू। जाने का वक्त तो है पर दिल यहीं कुछ छूट गया है।
1: जैसे भीग कर थम जाती है सावन की यह हसी बरसात, वैसे ही अब मोड़ पर आ पहुंची है सुरों की ये प्यारी।

0: रात दिलों में समेट कर ले जा रहे हैं इन गीतों की गर्माहट, अलविदा करते हैं आज थाम कर यादों की हसीन सौगात। फिर लौट कर आएगी ये रिमझिम, फिर सजेगी ये महफिल, पुराने गानों के सहारे फिर आसान होगी हर राह और मंजिल। भूले बिसरे गीत के इस सफर को आज हम यहीं रोकते हैं, अगली बारिश में फिर मिलने का वादा करके जाते हैं इस दिल से। तो मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश,
1: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
0: रात के सफर में भूले बिसरे गीतों का सफर हम यहीं पर करते हैं आज एंड। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए शुभ रात्रि।
1: शुभ रात्रि।

0: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराएं नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और कीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन ना करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
1: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन, और जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह। तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा। संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 72 34 020 202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।

0: अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं,
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9186 9276, 9260 9817 9766। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी?
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: मगर मगर
1: क्या?

0: आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: पशु में बुखार, मुंह या नाक से बहाव, दूध में कमी या खाल के नीचे गांठें जैसे लक्षण दिखें तो घबराए नहीं। सही देखभाल और नजदीकी पशु चिकित्सालय से इलाज कराने पर पशु 10 से 15 दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। बचाव के लिए इन मुख्य बातों का पालन करें। बीमार पशु को तुरंत स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। बाड़े में मक्खी, मच्छर और चीचड़ रोधी दवाओं का प्रयोग करें। पशुओं का दूध हमेशा उबाल कर ही प्रयोग करें। संक्रमण रोकने के लिए पशु मेलों या बाजारों में पशुओं का आवागमन न करें। ध्यान रहे, ये रोग पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलता है। सरकार द्वारा पशुपालकों के द्वार पर निःशुल्क टीकाकरण कराया जा रहा है, इसका लाभ अवश्य उठाएं एवं आर्थिक हानि से बचें। गोवंश को लंपी स्किन डिजीज यानी लंपी त्वचा रोग से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। सतर्क रहे, पशुओं को सुरक्षित रखें। पशुपालन विभाग जनपद गोंडा द्वारा जनहित में जारी।
2: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC वर्ड डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड फायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर 1 प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है एनवी ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 901-935-5394 और 872-661-8000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
3: अरे सुना
4: क्या,
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
4: वाओ,
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 92-981-976-9260-981-976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
5: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं NVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें।